FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 16 तारीख, तदनुसार 7 सितंबर सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 और 40 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की सभा आरंभ होती है। सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है।

0: FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हम समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये फैसला घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने और हादसे के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा बताया गया है कि इस गंभीर घटना के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसकी पूरी जवाबदेही तय की जाएगी और कानून के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच कल देर रात एक और शव मिलने के बाद हादसे में मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी है। NDRF, अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाघी ने कहा है कि 4 से अधिक मंजिल वाली सभी अवैध निर्माण वाली इमारतों को तत्काल सील किया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश्वर कॉलेज आज इमारत हादसे के मद्देनजर बंद रहेगा। आर्यभट्ट कॉलेज ने भी आज शिक्षण कार्य स्थगित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कहा कि प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा से लेकर अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन तक दोनों देश नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष इस वर्ष को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है।
2: BAPS के माध्यम से जब अलग अलग देशों में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहाँ भारत के प्राचीन विचार और मानवीय मूल्य भी साथ साथ ही जाते हैं। और भारत का विचार कहता है समानम मनः सह चित्तमेषां, अर्थात हमारे मन समान हो, हमारे हृदय साथ जुड़े। इसलिए आज जब फ्रांस में इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये फ्रांस की विविधता को तो समृद्ध करेगा ही, इससे भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों को भी ऊर्जा मिलेगी।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल संयुक्त अरब अमीरात के 3 दिन की यात्रा पर दुबई पहुंचे। वो दुबई में वार्षिक निवेश बैठक कांग्रेस में भाग लेंगे और निवेशकों के समक्ष मध्य प्रदेश को एक आकर्षक निवेश स्थल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। यात्रा का लक्ष्य रसद, खनन, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित सभी क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के

0: प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि न तो उसका निजीकरण और न ही उसका महत्व कम किया जाएगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का उद्देश्य अंतरिक्ष कार्यक्रम को सक्षम बनाना है। ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि आने वाले दिनों में हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बाहर एक नया प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ समन्वय के बिना इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी जहाज को ईरान की प्रतिबंध सूची में डाल दिया जाएगा। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मेजर जनरल मोहसिन रिजाई ने कहा है कि यह प्रतिबंधित क्षेत्र अमरीकी नौसेना की नाकाबंदी वाली सीमा से शुरू होकर फारस की खाड़ी के कुछ हिस्सों तक फैलेगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने कल चीन के खिलाड़ियों को हराया। ये इस प्रतियोगिता में भारत का पहला तथा इस जोड़ी का इस सत्र का दूसरा खिताब है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती
2: वंदनवार।

आज का चिंतन। विश्व को महान बनाने का एकमात्र मार्ग है अपने चरित्र को महान बनाना। स्वामी विवेकानंद। ये था आज का चिंतन। लीजिए अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

0: इसी देशगान के साथ कार्यक्रम वंदनवार अब यहीं संपन्न होता है।
1: ये है विविध भारती।

पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए प्रस्तुत है झरोखा, हमारे आज रात तक प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

अब से कुछ ही देर बाद 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस की अगली कड़ी। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम संगीत सरिता में सुबह 6:45 पर सुनिए श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा, किराना घराना का सातवां भाग। आमंत्रित कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। पुराने फिल्मी गीत सुनिए भूले बिसरे गीत प्रोग्राम में सुबह 7:00। 7:30 पर सुनिए कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। कार्यक्रम त्रिवेणी प्रसारित किया जाएगा सुबह पहले 8:15 पर और फिर दिन में 2:00।

नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक होगा पहले 8:30 पर और रात 8:15 पर। जानकारियों और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम आज का अखबार पेश किया जाएगा 9:30 पर।

लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ होगा सुबह 10:05 पर। आज इस कार्यक्रम का विषय होगा साक्षर हैं तो सशक्त हैं। 11 बजे आप सुनेंगे नेत्रदान के बारे में डॉक्टर सुदेश आर्य से अनिल पुंज की विशेष बातचीत।

11:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम शेरो नगमा। दोपहर 12:05 पर सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे दोपहर 1:05 पर हिंदी में और 1:10 पर पंजाबी में। प्रादेशिक समाचार आप शाम को भी सुन सकते हैं 6:10 पर हिंदी में और 6:20 पर पंजाबी में।

कुछ फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे दोपहर 1:15 पर और शाम 5:05 पर। कार्यक्रम सुरीला सफर आप सुनेंगे दोपहर 1:30 पर। दिन में 2:30 पर सुनिए कार्यक्रम सदा बहार नगमे। कार्यक्रम सखी सहेली का प्रसारित समय रहेगा दोपहर 3:00।

शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत आप सुनेंगे कार्यक्रम सेहत नामा। पोषण विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत। 5:30 पर प्रसारित किया जाएगा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। छह बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे हिंदी समाचार समीक्षा। पंजाबी गीतों का आप आनंद लेंगे 6:35 पर। शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम जयमाला। कुछ पंजाबी गीत हम आपको सुनवाएंगे रात 7:47 पर और फिर सुरसांझ कार्यक्रम में रात 10:32 पर। रात 8 बजे हवा महल कार्यक्रम में सुनिए झलकी सेल्फी।

कार्यक्रम चित्रलोक होगा रात 8:15 पर। रात 9 बजे सुनिए कार्यक्रम आपके लिए। रात 9:30 पर कार्यक्रम होगा आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम संगीतकार पीएल संतोषी पर केंद्रित होगा। रात 10 बजे सुनिए कार्यक्रम छाया गीत। झरोखा में आप सुन रहे थे हमारे आज रात तक प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

0: अब आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस पाठ, जो रिले किया जाएगा विविध भारती के मुंबई केंद्र से।
1: कार्यक्रमों की रूपरेखा आप सुन रहे थे झरोखा। लीजिए अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान लंका कांड, आज भाग 304।

मंदोदरी के लाख समझाने पर भी रावण को सद्बुद्धि नहीं आती। श्री राम की शरण में न जाकर वो अपनी प्रभुता और पराक्रम का गान करने लगता है। मंदोदरी को अपना सुहाग अचल रखने की चिंता है, किंतु रावण की मदांधता बहुत अधिक हो गई है। वो सोचता है कि जब मैंने वरुण, कुबेर, पवन और यमराज को ही नहीं बल्कि काल को भी जीत लिया है तो मेरा अहित अब भला कौन कर सकता है। मंदोदरी को विश्वास हो जाता है कि उसके पति पर अब काल सवार है, अन्यथा इतना अभिमान उसे क्यों कर होता। सभा में मंत्रणा के नाम पर मंत्रीगण उसकी ठकुर सुहाती करते हैं। ये देख रावण का विवेकवान पुत्र प्रहस्त पिता को एक बार फिर समझाने का प्रयास करता है। कहता है, एक ही वानर आकर सोने की लंका जला गया। हे प्रभु, इन मंत्रियों की सम्मति सुनने में तो बहुत प्रिय लग रही है, किंतु इनकी बात मानकर चलने में आगे दुख उठाना पड़ेगा। जगत में ऐसे लोगों की संख्या अधिक है जो सुहाने वाली बातें कहते हैं, सत्य और प्रिय कहने वालों की संख्या कम होती है। मुझे कायर और भीरु न समझ, मैं जो कहता हूँ उस पर ध्यान दीजिए और नीति के अनुसार दूत भेजकर श्री राम से सद्भाव स्थापित कर लीजिए।

0: श्रोताओं नमस्कार। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। आइए अब सुनते हैं इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी।
1: नमस्कार। संगीत सरिता के सभी संगीत प्रेमी सुनने वालों का स्वागत है। श्रृंखला जारी है स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। किराना घराने की गायकी के बारे में बताने के लिए, इसकी विशेषताओं पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित है जानी मानी शास्त्रीय गायिका डॉक्टर शकुंतला जी। शकुंतला जी, किराना घराने की कौन सी वो बात है जिस पर हम आज चर्चा करेंगे?
2: हमारा जो सूक्ष्म स्वर लगाव होता है
1: जी,
2: उसके बारे में हम आज थोड़ा विस्तृत स्वरूप से जानकारी ले लेंगे। सूक्ष्म यानी एकदम बारीक, बीच बीच में जो हम स्वर लगाते हैं, स्वर लगाव, ये भी किराना घराने की एक महत्वपूर्ण विशेषता है
1: जी।
2: इस घराने में प्रत्येक स्वर को अत्यंत सावधानी, शुद्धता और संवेदनशीलता के साथ लगाया जाता है, जिससे राग का वास्तविक स्वरूप उभर कर सामने आता है
1: जी।
2: वो उस पर ही राग का स्वरूप होता है ज्यादा, यानी उस राग का जो स्वभाव है, भाव है। श्रुतियों का अत्यंत सूक्ष्म प्रयोग किराना घराने की गायकी में स्वरों के बीच स्थित सूक्ष्म श्रुतियों का सुंदर प्रयोग किया जाता है
1: जी, जी।
2: इससे गायन में कोमलता, गहराई और मधुरता आती है। प्रत्येक स्वर को पूरा महत्व दिया जाता है
1: जी।
2: यहाँ पे किसी भी स्वर को जल्दबाजी में नहीं गाया जाता है, बल्कि उसे पर्याप्त समय देकर उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति की जाती है
1: जी।
2: यही कारण है कि राना घराने को स्वर प्रधान घराना कहा जाता है। मिंड और स्वर लगाव का जो सुंदर समन्वय इसमें है, मिंड के माध्यम से एक स्वर से दूसरे स्वर तक अत्यंत सहज और अखंड रूप से पहुंचा जाता है
1: जी।
2: इससे स्वरों का प्रवाह स्वाभाविक और अत्यंत मधुर प्रतीत होता है। राग का भाव अधिक प्रभावी बनता है। सूक्ष्म स्वर लगाव के कारण राग का रस, भाव और सौंदर्य श्रोताओं तक अधिक प्रभावशाली ढंग से पहुंचता है
1: जी।
2: और राग की पहचान एकदम स्पष्ट हो जाती है। जयन जी, गहन रियाज की जो आवश्यकता है,
1: हाँ जी,
2: ऐसा सूक्ष्म स्वर लगाव प्राप्त करने के लिए वर्षों की नियमित स्वर साधना, श्रुति की समझ और स्वर पर पूर्ण नियंत्रण आवश्यक होता है। इसका अनुभव दिखाने के लिए
1: जी, जी, जी।
2: मैं बहुत ही एक वजनदार,
1: वही आपसे जानना चाह रहा था कि ये जो सूक्ष्म लगाव आप कह रही हैं,
2: हाँ,
1: तो उसका अनुभव हमें किस राग के माध्यम से मिलने वाला?
2: कौन सा राग हो सकता है वजनदार राग?
1: आप राग दरबारी की बात करना चाह रहे हैं? वाह वाह।
2: ऐसा कहते हैं कि ये राग सिर्फ गले में बिठाने के लिए एक तप लगता है,
1: 12 साल लग जाते हैं इसे सिद्ध करने में।
2: हाँ, इसीलिए बड़े बड़े कलाकार जो है वही वो राग चुनते।

0: इतना आसान नहीं।
1: उसका जो डेप्थ है, उसका जो स्वर पर जो रहने का जो तरीका है
0: जी,
1: वो बहुत ही गहरा है। प्रयास करेंगे, मैं थोड़ा गा के सुनाती हूँ।
0: स्वागत है।

0: आगे जाने से पहले एक थोड़ा द्रुत बंदिश दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा बोलती हूँ, क्योंकि उस्ताद आमिर खान ने ये सुंदर बंदिश बनाई, और ये जो मैं द्रुत बंदिश गाने वाली हूँ, ये बंदिश का महत्व क्या है? अनोखा लाडला रीमा खेलन को मांगे चांद।
1: अच्छा,
0: राम मांग रहा है खेलने के लिए चांद, लेकिन ये लिखने वाला जो है वो खान साहब है।
1: ओहो, क्या बात।
0: हमारे भारत में जो सर्वधर्म समभाव का जो भाव है, वो भी हमारे शास्त्रीय संगीत में इतना प्रस्तापित हुआ है, और हम एक दूसरे को कलाकार के नाते देखते हैं।
1: जी।

0: वाह वाह वाह वाह, अति सुंदर। शकुंतला जी, राग दरबारी की इस बंदिश को सुनकर के जो फिल्मी गाना गूंज रहा है मन में, वो बैजू बावरा फिल्म का गीत है।
1: वाह वाह, क्या बात है।

स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने, तबला संगत रोहिदास परब, हारमोनियम पर संगत दी ऋषित होनावरकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाटिल।

0: आप सुन रहे हैं देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हम थोड़ी ही देर में हाजिर होंगे।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: इको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

लीजिए श्रोताओं, हम हाजिर हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर। आप सभी सुनने वालों का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करती हूं। मैं पूजा नरानिया, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। और आगाज कर रहे हैं कार्यक्रम के पहले गीत की। पोस्ट बॉक्स नंबर 999 फिल्म के इस गीत के साथ हेमंत कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में पीएल संतोषी का लिखा गीत, कल्याण जी वीर जी शाह का संगीत। आज है पीएल संतोषी फिल्मकार की पुण्यतिथि, तो हम उन्हीं के गाने आज आपको सुनवा रहे हैं।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं पीएल संतोषी द्वारा लिखे संगीतबद्ध किए गीत। पीएल संतोषी फिल्मकार हैं और उन्हीं के द्वारा लिखे गीत हमने आपको सुनवा रहे हैं। साथ ही आपको सुनवाते हैं शहनाई फिल्म का गीत। अमीर बाई कर्नाटकी की आवाज़ में पीएल संतोषी का लिखा गीत है और सी रामचंद्र का संगीत।

0: सुनहरे खाबों वाली एक लड़की।
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
0: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
0: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
0: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।

जानी मानी गायिका दीपाली सहाय बॉम्बे टॉकीज 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे।

0: कहिए
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: श्रोताओं आप सुन रहे हैं विविध भारती से इस वक्त कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। इन संदेशों से पहले हमने आपको गीत सुनवाया था फिल्म शहनाई से, अमीर बाई कर्नाटकी की आवाज में, पीएल संतोषी का लिखा गीत था और सी रामचंद्र का संगीत। और अब आपको सुनवा रहे हैं नई माँ फिल्म का ये गीत, इसे गाया है सुमन कल्याणपुर ने। पीएल संतोषी का ही लिखा गीत है और रवि का संगीत।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आपको अब सुनवा रहे हैं अगला गीत छोटे बाबू फिल्म से। लता मंगेशकर और मन्ना डे के युगल स्वर हैं। पीएल संतोषी का लिखा गीत, मदन मोहन का संगीत।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम, जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ, वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर।

0: और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। अब आपको सुनवा रहे हैं हम पंछी एक डाल के फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी और साथियों के स्वरों में। पीएल संतोषी का लिखा गीत है, संगीतकार है एन दत्ता।

शिन शिना की बबलाबू, इस फिल्म का गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर के स्वर में। पीएल संतोषी का ही लिखा गीत है, सी रामचंद्र का संगीत, और ये है कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

0: शिनशिना की बुबलाबू इस फिल्म का गीत आप लता मंगेशकर के स्वर में सुन रहे थे। आज फिल्म निर्देशक पीएल संतोषी की पुण्यतिथि पर हमने उन्हीं के लिखे गीत आपको सुनवाए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में। और अब कार्यक्रम का वक्त हो गया है, दीजिए आज्ञा।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रतंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: टर्मरिक

अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

लीजिए श्रोताओं, हम हाजिर हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के लेकर। आप सभी सुनने वालों का स्वागत करती हूं, मैं पूजा नारायणिया, कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार। पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं बरसात की रात फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वरों में, साहिल लुधियानवी के बोल रोशन का संगीत।

हम हेरा ही प्यार के कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और अगला गीत अब आपको सुनवाते हैं मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज में, दिल ही तो है इस फिल्म का। साहिल लुधियानवी ने ही इस गीत को लिखा है और संगीत पर किया है रोशन ने।

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
3: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
2: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
3: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
4: सखी सहेली।
5: इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के, हॉलीडे इन बॉम्बे। इस फिल्म का गीत आप

0: टेलीविजन के जाने माने नाम, जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ, वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे, मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
3: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
4: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
2: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
5: मेरा साया साथ होगा।
6: श्रोताओं, कार्यक्रम हम है राही प्यार के में अब वक्त है एक अंतराल का।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: प्यार के आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से, और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अगला गीत। लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वरों में मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा है। बासु मनोहारी का संगीत है, फिल्म का नाम है सबसे बड़ा रुपया।

अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं, इसे संगीतबद्ध किया है चित्रगुप्त ने, लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने। फिल्म का नाम ओपेरा हाउस।

अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं, इसे संगीतबद्ध किया है चित्रगुप्त ने, लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने। फिल्म का नाम ओपेरा हाउस।

0: दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर।

0: संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: अब आपको सुनवाने जा रहे हैं ये वादा रहा फिल्म का गीत। किशोर कुमार और आशा भोसले ने इसे गाया है। गुलशन बावरा के बोल, धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

0: हम
1: दीवाने हैं।
2: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
3: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
2: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम

0: अभी आप सुन रहे थे हमारे मुंबई केंद्र से ये कार्यक्रम हम है रही प्यार की FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आठ बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से समाचार रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार

0: प्रभात के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर आधारित होने के कारण खास बताया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए। इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। इसरो ने कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, इसे निजीकरण के बजाय पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार और क्षमता वृद्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोवा के पणजी में आज पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ओपेक प्लस समूह ने अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया और भारत ने ताशकंद में बांग्लादेश को 30-3 से हराकर 20 वर्ष बाद AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री मोदी ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है।
1: बीते वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे। टेक्नोलॉजी, AI और डिफेंस से लेकर स्पेस और क्लाइमेट एक्शन तक हम एक नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि इतिहास फ्रांस में भारतीय सैनिकों के बलिदानों का गवाह है। श्री मोदी ने कहा कि आज योग भारत और फ्रांस के बीच आपसी जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दिनों भारत फ्रांस संयुक्त उद्यमों की संभावनाओं पर काफी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि स्वामी नारायण मंदिर ने इस संभावना को भी एक नया आयाम दिया है।
1: भारत फ्रांस ज्वाइंट वेंचर्स की संभावनाओं पर बातें होती है। स्वामीनारायण मंदिर ने इस संभावना में भी एक नया आयाम जोड़ा है। ये मंदिर मेड इन इंडिया है और बिल्ट इन फ्रांस है। इसके काफी पत्थरों को भारत में तराशा गया है। भारत की प्राचीन प्रतिभा यहाँ फ्रांस में आधुनिक इंजीनियरिंग से आकर जुड़ चुकी है। पेरिस में इस भव्य मंदिर ने आकार लिया है, इसलिए मैं आशा करता हूँ ये मंदिर सदियों तक भारत और फ्रांस के बीच सहयोग और संभावनाओं का भी प्रतीक बनकर उभरेगा।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए।
2: जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। PG के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा।
0: मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये फैसला घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने और हादसे के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा बताया गया कि इस गंभीर घटना के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसकी पूरी जवाबदेही तय की जाएगी और कानून के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कल देर रात एक और शव मिलने के बाद हादसे में मृतकों की संख्या 6 हो गई है। घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी है। NDRF, अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें घटना घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर घटनास्थल की स्थिति का जायजा लिया। श्री शाह ने कहा कि घायलों को सभी जरूरी चिकित्सा सहायता दी जा रही है। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि 4 से अधिक मंजिल वाली सभी अवैध इमारतें तत्काल सील की जाएंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश कॉलेज आज इस हादसे के मद्देनजर बंद रहे।

0: रहेगा। वहीं आर्यभट्ट कॉलेज ने भी आज शिक्षण कार्य स्थगित कर दिया है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि ना तो उसका निजीकरण और ना ही उसका महत्व कम किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का उद्देश्य अंतरिक्ष कार्यक्रम को सक्षम बनाना है। इसरो ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। इसलिए इन सुधारों को निजीकरण के बजाय पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार और क्षमता वृद्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। इसरो ने कहा कि परिपक्व और विस्तार योग्य तकनीकी क्षमताओं को भारतीय उद्योग द्वारा तेजी से विकसित किया जा सकता है। इससे बड़े पैमाने पर उत्पादन, व्यवसायीकरण, नवाचार और वैश्विक बाजारों तक पहुंच संभव होगी। जबकि इसरो के वैज्ञानिक और तकनीकी मानव संसाधन को उन्नत अनुसंधान, अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों और जटिल राष्ट्रीय मिशनों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलेगी। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: ये समाचार हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये बैठक गृह मंत्रालय के अंतर राज्य परिषद सचिवालय द्वारा आयोजित की जा रही है।
6: इस बैठक में गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ मंत्री शामिल होंगे। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के प्रतिनिधि भी बैठक में हिस्सा लेंगे। परिषद का यह मंच आपसी सहयोग को बढ़ाने और साझा हितों से जुड़े मामलों पर मिलकर आगे बढ़ने का अवसर देता है। बैठक में केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद अमित शाह गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल संयुक्त अरब अमीरात के 3 दिन की यात्रा पर दुबई पहुंचे। वे दुबई में वार्षिक निवेश बैठक कांग्रेस में भाग लेंगे और निवेशकों के समक्ष मध्य प्रदेश को एक आकर्षक निवेश स्थल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। श्री यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के साथ जुड़कर कई देशों ने अपना व्यापार बढ़ाया है।
7: प्रदेश से जुड़ करके कई सारे देशों ने भी अपना व्यापार व्यवसाय बढ़ाया है और यही कारण है कि पिछले साल ही हमारा 76,000 करोड़ का निर्यात मध्यप्रदेश से हुआ। ऐसे में हम अपने इस व्यापार व्यवसाय के साथ राज्य के युवाओं के लिए रोजगार, सभी के लिए समृद्धि और परस्पर द्विपक्षीय संबंधों में एक दूसरे के आधार पर व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए हम दोनों कटिबद्ध है।
1: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने 2 यात्रियों के पास से 484 चांदी के सिक्के और 1 सोने का सिक्का जब्त किया है। इनमें 134 चांदी के सिक्के पुरातात्विक महत्व के हैं। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 110 के अंतर्गत सिक्कों को जब्त कर लिया गया है। मामले में आगे की जाँच जारी है। ओपेक प्लस समूह के 7 प्रमुख देशों सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। बैठक में वैश्विक

0: तेल बाजार की स्थिति और संभावनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
1: इन देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। ओपेक प्लस ने सितंबर में प्रतिदिन करीब 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाया था। इसके साथ ही वर्ष 2023 में की गई प्रतिदिन करीब 16,50,000 बैरल की स्वैच्छिक उत्पादन कटौती को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी हो गई। यह बैठक ईरान से जुड़े संघर्ष और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास जारी व्यवधानों सहित तेल निर्यात में रुकावटों की पृष्ठभूमि में हुई। इन व्यवधानों के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर ओपेक प्लस के उत्पादन संबंधी फैसलों का असर सीमित रहा है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: भारत ने AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्षों में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। AFC अंडर 20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में 2 दिन के भव्य लोक महोत्सव का समापन कल शाम रामबन जिले में हुआ। महोत्सव में पहाड़ी समुदाय की समृद्ध लोक परंपराओं, सांस्कृतिक विरासत और जातीय पहचान का प्रदर्शन किया गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लोक अदालत, त्वरित, किफायती और सुलभ न्याय विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता हमारे टेलीफोन नंबर 0112331048, 0112371717 और 0112331444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद सरफिरोजी। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान को दिया है, नक्सलवाद खत्म किया, देश को अब ड्रग्स मुक्त बनाएंगे। ड्रग्स मुक्त युवाओं से 2047 में विकसित भारत का नेतृत्व करने का आह्वान। नवभारत टाइम्स ने विदेश मंत्रालय के इस कथन को सुर्खी बनाया है, पूरा जम्मू कश्मीर हमारा, नक्शे में यही दिखे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, भारत की अखंडता और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं। हिंदुस्तान के अनुसार भारत ने बाल विवाह और जबरन विवाह रोकने के लिए 27 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का भी समर्थन किया। दैनिक भास्कर ने अपने आर्थिक पन्ने पर लिखा है, महिलाओं के काम पर जाने से घरों में बराबरी बढ़ी। एक शोध के अनुसार महिलाओं के नौकरी करने का असर सिर्फ परिवार की आय पर नहीं पड़ता, घर में उनकी स्थिति भी बदलती है। 2025 की एक श्रम सेवा रिपोर्ट के अनुसार भारत में 100 में से 39 महिलाएं काम कर रही हैं। दिल्ली में 10,000 स्टार्टअप से 4,00,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार, पंजाब केसरी की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप और इंक्यूबेशन नीति की घोषणा की। दैनिक भास्कर लिखता है, नए विचारों और उद्यमशीलता को गति देने के लिए सरकार की बड़ी पहल, स्टार्टअप पॉलिसी के लिए 400 करोड़ का बजट। कई अखबारों ने अपने खेल पृष्ठ पर सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पहली चाइना बैडमिंटन टूर्नामेंट खिताबी जीत को सचित्र प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर आधारित होने के कारण खास बताया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए, इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। इसरो ने कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र बनाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोवा के पणजी में आज पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और भारत ने ताशकंद में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। अब सुनिए कार्यक्रम त्रिवेणी विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

आज की त्रिवेणी पनघट पर आधारित है। पनघट गांव के जीवन का धड़कता हुआ हृदय, जहां घड़ों में जल भरना, मन की बातें छलकती, खुशी के गीत गाती सखियों की टोली, हंसी की फुहारों, चूड़ियों की खनक, पायलों की रुंझन, लंबा घूंघट तो कभी दांतों तले दबा, उसमें से झांकती कजरारी अखियां, लोक गीतों की मधुर तान से पनघट का सौंदर्य और भी निखर जाता। भोर होते ही जब पनिहारी ने अपनी खाली घड़ी लेकर पनघट की ओर बढ़ती तो लगता मानो गांव की पगडंडी पर रंग बिरंगे फूल चल पड़े हों। सखियों की दुनिया बदल जाती, घर की जिम्मेदारियों से कुछ पल दूर वे अपने सुख दुख बांटती, एक दूसरे की चुटकी लेती और खिलखिलाकर हंस पड़ती। किसी की आंखों में सपने होते, किसी के मन में विरह और किसी के हृदय में किसी अनकहे प्रेम की हल्की सी दस्तक।

ब्रज में राधा कृष्ण की प्रेम भरी हंसी टिटोली, कहीं राह रोकने की शरारत, कहीं सखियों की हंसी और कहीं आंखों ही आंखों में कहे गए प्रेम के संदेश। पनघट के आसपास के वृक्ष झूम झूम कर हर्षित होकर हवा के संग नृत्य करते, हरे पत्तों की छटा आनंद के रस में सराबोर होते, मन को आकर्षित कर जाते। पनघट के रास्ते प्रेम का सुंदर पड़ाव बन जाते और मटकी भी अपने भीतर एक प्रतीक समेट लेती। वो केवल जल से भरा पात्र नहीं, स्त्री के जीवन की जिम्मेदारियों का मानो रूपक बन जाती। सिर पर धरी मटकी संभालते हुए पनिहारिन जिस सहजता से चलती, उसमें नारी के धैर्य, संतुलन और आत्मविश्वास की झलक दिखाई देती।

समय बदला, गांव बदले और जीवन की सुविधाएं बढ़ी। घर घर नल और जल की व्यवस्था ने पनघट की आवश्यकता को कम कर दिया, लेकिन वो उस समय की याद दिलाता है जब जीवन थोड़ा धीमा था, रिश्तों में ठहराव था और छोटी छोटी मुलाकातों में आत्मीयता हुआ करती थी। लेकिन आज कुएं सूने हो गए, पनघट की चहल पहल खो सी गई, गांव की पगडंडियां भी सूनी पड़ गईं। पनघट से भरी गगरी में भरा जल शीतल मीठा किसी पथिक की प्यास बुझाने में सक्षम हुआ करता था। पनघट भी एक ऐसी स्मृति है जहाँ कभी मटकी में पानी भरता था और लौटते हुए मन में पूरा संसार भर आता था।

0: रक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका, जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी और 1000 प्लस विनर्स, 2 लीटर एमिस्टा टॉप प्लस 1 किलो चेस, यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। आज ही खरीदे, 25 सितंबर को लकी ड्रॉ है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: चमड़ी पर फीका, लाल या पीला दाग, जिसमें सुन्नपन हो, हाथों पैरों में झुनझुनी, शरीर की किसी नस का मोटा हो जाना कुष्ठ रोग के लक्षण हैं। 2 सितंबर से 15 सितंबर

तक हरियाणा के गुरुग्राम पानीपत जिलों में मकानों झोंपड़ियों फैक्ट्रियों और घर घर जाकर कुष्ठ के मरीजों को ढूंढने के लिए जांच की जाएगी। घबराए नहीं, कुष्ठ छूत का रोग नहीं है। हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए MDT की मुफ्त सुविधा उपलब्ध है। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी

लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम चित्रलोक लेकर हम हाजिर हो गए हैं। एक बेहद खूबसूरत सुबह का स्वागत हो ऐसी फिजा के साथ, जहां हवा में ताजगी हो, मन में सुकून हो और हर एक एहसास में एक साफ सुथरी सकारात्मकता घुली हो। यही खूबसूरत फिजा और यही शुद्ध हवा यूं ही बनी रहे, क्योंकि ऐसी ही सुबहें दिन को एक अच्छी शुरुआत देती हैं। तो आइए इस खूबसूरत एहसास को सुरों के साथ और भी खास बनाते हैं। नई धुनें, नए अंदाज और नए संगीत की नई रंगत से सजा ये चित्रलोक कार्यक्रम से। और आज के सफर की शुरुआत होगी एक ऐसे देशभक्ति गीत से जिसमें जोश भी है, जुनून भी है और देश के नाम एक बेहद सकारात्मक ऊर्जा भी। ऐसा गीत जो सुनते ही दिल में अपने देश के लिए गर्व और उमंग की भावना जगा दी। तो चलिए सुनते हैं इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस गीत को, आज का पहला खूबसूरत सा गीत देश के नाम। मैं हूं आपके साथ पूजा नारानिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार, अ वेरी गुड मॉर्निंग।

0: दिल बोले हड़िप्पा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आपको बता दें कि आज है 7 सितंबर और आज है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज, यानी स्वच्छ वायु और नीले आकाश का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। यह दिन हमें याद दिलाता है कि साफ हवा सिर्फ नीले आसमान की खूबसूरती नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन की सबसे जरूरी जरूरतों में से एक है। वायु प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण और जलवायु को भी प्रभावित करता है। ऐसे में छोटी छोटी आदतों में बदलाव करके हम भी इस दिशा में अपना योगदान दे सकते हैं। मसलन, अगर कहीं अकेले ही जाना हो तो हर बार अपनी कार निकालने की बजाय क्यों ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाए। इससे सड़कों पर वाहनों की संख्या और प्रदूषण दोनों को कम करने में मदद मिलती है। और अगर दूरी कम हो तो साइकिल भी एक बेहतरीन विकल्प है। न ईंधन का खर्च, न हवा में प्रदूषण और साथ में शरीर के लिए अच्छी कसरत भी। तो आइए अपनी सुविधा के साथ साथ अपनी हवा, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। मिलकर ऐसी हवा के लिए प्रयास करें जिसमें हर सांस सेहत और सुकून लेकर आए। और साथ ही सुनिए ये गीत मिशन कश्मीर फिल्म से उदित नारायण अलका याग्निक और साथ

0: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा दा लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तमका जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम दो थार 6 बाइक 12 स्कूटी 1000 प्लस विनर्स 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन 25 सितंबर नू लकी ड्रॉ होवेगा आज ही खरीदो TNC अप्लाई
1: जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गटले
1: जो संगीत की साधना में बीता एक विराट जीवन की कहानी
3: दिल तो पागल है दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ
5: चिट्ठी ना कोई संदेश
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: श्रोताओं कार्यक्रम चित्रलोक में अब वक्त है एक अंतराल का।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती से इस वक्त कार्यक्रम चित्रलोक। किस्मत कनेक्शन फिल्म का ये गीत सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाजों में, शब्बीर अहमद के बोल, प्रीतम का संगीत।

हर साल 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कॉपरेशन। अब सवाल ये है श्रोताओं कि आखिर इसको मनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। दरअसल आज अपराध सिर्फ किसी एक शहर या देश तक सीमित नहीं रह गए हैं, अब अपराध की सीमाएं देश की सीमाओं से आगे बढ़ती ही जा रही हैं। तो उनसे निपटने के लिए अलग अलग देशों की पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों का मिलकर काम करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। यही इस दिवस का मूल संदेश है, सुरक्षा के लिए सहयोग, अपराध के खिलाफ साझा प्रयास और एक दूसरे के साथ जानकारी व अनुभव साझा करना। इस दिन पुलिस के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, उनकी भूमिका और जनता की सुरक्षा के लिए किए जा रहे सामूहिक प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाती है। यानी बात सिर्फ पुलिस के बीच सहयोग की नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाने की है जहां मिलजुल कर अपराध पर रोक लगाई जा सके और समाज में सुरक्षा और विश्वास का माहौल मजबूत बन सके।

इस दिन पुलिस के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, उनकी भूमिका और जनता की सुरक्षा के लिए किए जा रहे सामूहिक प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाती है। यानी बात सिर्फ पुलिस के बीच सहयोग की नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाने की है जहां मिलजुल कर अपराध पर रोक लगाई जा सके और समाज में सुरक्षा और विश्वास का माहौल मजबूत बन सके।

दबंग 3 का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। शबाब सबरी का गाया गीत है, दिव्य कुमार ने साथ दिया है। साजिद वाजिद का संगीत।

दबंग 3 फिल्म का गीत अभी आपने सुना, शबाब सबरी और दिव्य कुमार की आवाजों में, जालिश शेरवानी और दानिश सबरी का लिखा ये गीत था।

0: श्रोताओं चित्रलोक कार्यक्रम में वक्त है एक अंतराल का।
1: धीमी इंटरनेट और महंगे बिल से हैं परेशान, तो लगाइए BSNL फाइबर का 495 वाला 100 Mbps प्लान। पहला महीना बिल्कुल मुफ्त, अगले 3 महीने तक हर बिल पर 100 रुपए की छूट, फ्री वाईफाई मॉडम और इंस्टॉलेशन। अभी कॉल करें या व्हाट्सएप पर हाई भेजें 1800444 पर।
2: अरोड़ा प्लाईवुड
3: यहाँ है PVC, WPC, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और HDHMR प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
2: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती से इस वक्त कार्यक्रम चित्रलोक। श्रोताओं, जरा सोचिए, सेहत की नींव आखिर कहाँ से शुरू होती है? किसी महंगी दवा से नहीं, बल्कि हमारी थाली से, है ना? हर साल 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, और आज है उसका आखिरी दिन 7 सितंबर, जिसका मकसद है लोगों को संतुलित आहार, पौष्टिक भोजन और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करना, क्योंकि सही पोषण सिर्फ शरीर को ताकत नहीं देता, बल्कि बच्चों के विकास, अच्छी प्रतिरोधक क्षमता और बेहतर स्वास्थ्य की बुनियाद भी तैयार करता है। घर की रसोई से लेकर स्कूल, आंगनवाड़ी और समुदाय तक संतुलित थाली स्थानीय और पौष्टिक खाद्य पदार्थ, फल, सब्जियों और सही खानपान की आदतों की बात पहुंचाने का ये दिन है। और क्योंकि स्वस्थ जीवन की शुरुआत किसी बड़े बदलाव से नहीं, हर दिन की थाली में किए गए एक छोटे से सही चुनाव से होती है। तो श्रोताओं, आज हमारा कार्यक्रम पिटारा सेहतनामा ये इसी पर केंद्रित है, पोषण विषय पर। इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत का भाग एक आज प्रसारित होगा, तो आप इसे सुनना ना भूलिएगा। तकनीकी सहयोग मंगेश सांगले का है और प्रस्तुति तेजश्री कामले की। और इसी के साथ आपको सुनवा रहे हैं अगला गीत कलयुग फिल्म का। अलीशा चिनॉय की आवाज में सईद कादरी का लिखा गीत, अनु मलिक का संगीत।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम, जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ, वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे, मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: कुछ दिल ने कहा,
3: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की।
4: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
3: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
4: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
3: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
4: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
3: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
4: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
3: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
3: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे, तेरे पास मैं।
3: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: कहिए
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
0: शुक्रिया, शुक्रिया।
1: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। श्रोताओं आपको बता दें कि आज है विश्व ड्यूशेन जागरूकता दिवस। जी हाँ, यानी ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के प्रति जागरूकता बढ़ाने का दिन। आसान भाषा में समझें तो यह एक आनुवंशिक बीमारी है जो एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद DMD जीन में बदलाव के कारण होती है। इसमें शरीर में डिस्ट्रोफिन नाम का एक ज़रूरी प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से समय के साथ मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं। बचपन में चलने फिरने में देरी, बार बार गिरना या सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी जैसे संकेत दिखाई दे सकते हैं। यानी आज का दिन यही संदेश देता है, सही जानकारी सही समय पर पहचान ली जाए और संवेदनशील सहयोग ड्यूशेन से प्रभावित परिवारों के लिए और बच्चों के लिए बहुत मायने रखता है। और जागरूकता का सबसे खूबसूरत तरीका यही है कि समाज मिलकर ड्यूशेन से जूझ रहे हर बच्चे और उसके परिवार के साथ सहयोग और संवेदना की एक मजबूत कड़ी बने, क्योंकि कभी कभी साथ का एक छोटा सा कदम भी किसी के सफर को थोड़ा आसान

ये गीत अभी आप सुन रहे थे सितारे जमीन पर। इस फिल्म से सिद्धार्थ महादेवन, शंकर महादेवन और दिव्य कुमार की आवाजों में अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे, शंकर एहसान लॉय का संगीत। और इसी के साथ अभी वक्त है कार्यक्रम चित्रलोक में एक अंतराल का।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती पर इस वक्त कार्यक्रम चित्रलोक। और आपको बता दें कि आज के फनकार कार्यक्रम निर्देशक पीएल संतोषी पर केंद्रित रहेगा, जो कि आप सुन सकते हैं 9:30 पर सुबह और पुनः रात 9:30 पर। आलेख एवं स्वर जी श्याम का, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। क्रिश फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं कुणाल गांजावाला की आवाज में। विजय अकेले का लिखा गीत और राजेश रोशन का संगीत।

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अदनान सामी का गाया ये गीत फिल्म लकी नो टाइम फॉर लव से। समीर का लिखा गीत है, अदनान सामी का कंपोज किया।

अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक का आखिरी गीत, बैड बॉय। इस फिल्म से हिमेश रेशमिया, अदिति सिंह शर्मा और असिस कौर की आवाजों में विनित सिंह ने साथ दिया है। कुमार के बोल और संगीत है हिमेश रेशमिया का।

हिमेश रेशमिया, अदिति सिंह शर्मा और असिस कौर, साथ ही विनित सिंह की आवाजों में बैड बॉय फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। कंपोज किया था हिमेश रेशमिया ने और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न हो रहा है। दीजिए आज्ञा पूजा नरानिया को। नमस्कार।

0: 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।
3: दस साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका, जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी और 1000+ विनर्स, 2 लीटर एमिस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। आज ही खरीदे, 25 सितंबर को लकी ड्रॉ है। टर्म्स एंड कंडीशंस।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आज का अखबार।
3: आज का अखबार।
2: नमस्कार, आज का अखबार कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके दोस्त अनामिका। दोस्तों, एक तरफ जहां आज पूरा देश आस्था और श्रद्धा के रंग में डूबा है क्योंकि आज है पावन एकादशी, वहीं ये दिन यानी 7 सितंबर एक बेहद जरूरी बात को याद दिलाता है और वो है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज यानी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस। सोचिए, जहां एक तरफ हम उपवास रखकर अपने तन और मन को शुद्ध करते हैं तो ये भी तो हमारा ही फर्ज है कि उस हवा को भी हम साफ रखें जिसमें हम सांस लेते हैं। शहरों में तो नीला आसमान मानो अब सिर्फ तस्वीरों में कैद हो गया है। साफ हवा में सांस लेना कोई आम बात नहीं रही बल्कि एक लग्जरी बनती जा रही है। तो क्यों ना इस आस्था के पर्व पर हम मिलकर ये प्रण लें कि अपना मन भी साफ रखेंगे और अपने हिस्से का आसमान भी नीला रखेंगे।

कार्यक्रम आज का अखबार में अब बारी है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और खेल जगत की हेडलाइंस की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस से संबंध पिछले कुछ सालों से ऊंचाई छू रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा कि दोनों देश मिलकर अ स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करने के भी आदेश दिए। गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की। सोशल मीडिया के रचनात्मक उपयोग का भी किया आह्वान। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने देश के बढ़ते स्टार्टअप इकोनॉमिस्ट को महानगरों से आगे ले जाने का आह्वान किया। भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब जीता। भारत ने ताशकंद में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्ष बाद AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया। ये थी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और खेल जगत की हेडलाइंस और अब आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

0: आज फिर लेट हो गए?
1: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
0: क्यों बैठे थे बाहर?
1: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
0: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूं। बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते।
1: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं, हमारे साथ ही जरूरत है। इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: निकल जाओ इस घर से, तुम्हें कुष्ठ रोग है। अगर तुम इस घर में रही तो हम सबको भी कुष्ठ रोग हो जाएगा।
3: अरे भैया, आप भाभी को घर से क्यों निकाल रहे हैं? इससे तो आपका परिवार टूट जाएगा। क्या आपको पता नहीं है कि कुष्ठ रोग अन्य बीमारियों की तरह ही है? इसका इलाज MDT से संभव है। भाभी को आज ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं और वहां उनका इलाज करवाएं।

आज का अखबार कार्यक्रम में अब बात करते हैं जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज की। दोस्तों, देश के हर जिले की अपनी एक खास पहचान होती है, अपनी संस्कृति, अपनी कहानी होती है। इन्हीं अनूठी कहानियों को देश और दुनिया के सामने लाने के उद्देश्य से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज की शुरुआत की है। इस पहल के तहत देश के उभरते डिजिटल क्रिएटर्स को अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, इतिहास और स्थानीय उपलब्धियों को रचनात्मक डिजिटल माध्यम से प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा रहा है। इस अभियान के पायलट चरण में चंडीगढ़ को भी शामिल किया गया है। पंजीकरण कैसे करें, आइए हम आपको बताते हैं। माई वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले जाकर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें। मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करें, फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड करें और सबमिट कर दें। और खास बात, चंडीगढ़ भी इस चैलेंज के पायलट चरण में शामिल है। और ध्यान दीजिए, प्रविष्टियां अब 30 सितंबर 2026 तक स्वीकार की जाएंगी, तो देर मत कीजिए। अपने शहर, गांव या जिले की किसी खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या कहानी को कैमरे में कैद कीजिए और बनिए जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज का हिस्सा, क्योंकि भारत की असली खूबसूरती उसके हर जिले में छिपे उन अनमोल जेम्स में है, जिन्हें दुनिया के सामने लाना हम सबकी जिम्मेदारी है।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन: सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आज का अखबार कार्यक्रम में अब बारी है रीजनल और लोकल हेडलाइंस की। सर्वोच्च अदालत कॉलेजियम की सिफारिश के बाद पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट समेत 8 हाई कोर्टों में नए चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए। राज्य जैव विविधता बोर्डों और केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों की 16वीं राष्ट्रीय मीटिंग शुरू। कृषि पंजाब की ताकत, मगर युवाओं के लिए AI, ग्रीन एनर्जी और हेल्थ सेक्टर में बढ़ाने होंगे रोजगार, कहा पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा युवा शक्ति के संकल्प से नशा मुक्त बनेगा हरियाणा। रिवाड़ी में नशे के विरुद्ध आयोजित हाफ मैराथन के दौरान युवाओं से नशे से दूर रहने का किया आह्वान। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने आज भिवानी जिले के बवानीखेड़ा हलके में महर्षि वाल्मीकि स्टेडियम, नागरिक अस्पताल के विस्तार सहित कई बड़ी परियोजनाओं की घोषणा की।

हाई लेवल फोर लेन ब्रिज 12 माह में काम पूरा करने का लक्ष्य, बारिश में पंचकुला आईटी पार्क मनीमाजरा का रास्ता नहीं होगा बंद। ये थी कुछ क्षेत्रीय और लोकल हेडलाइंस।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने पंचकुला में अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। वीआईपी सेक्टर 1 से 8 तक अब नहीं जाएगी लाइट, एक लाइट फेल होगी तो बहाल होगी सप्लाई। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने रविवार को आधुनिक स्काडा कंट्रोल नेटवर्क का उद्घाटन किया। सुखना चौपर कॉजवे की जगह बनेगा

0: इसी गीत के साथ अपने दोस्त अनामिका को आज का अखबार कार्यक्रम को समाप्त करने की दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज का अखबार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज का अखबार। FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। 10 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से समाचार रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामीनारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री मोदी ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है, क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है।
1: बीते वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे। टेक्नोलॉजी, एआई और डिफेंस से लेकर स्पेस और क्लाइमेट एक्शन तक हम एक नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि आज योग भारत और फ्रांस के बीच आपसी जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दिनों भारत फ्रांस संयुक्त उद्यमों की संभावनाओं पर काफी चर्चा हो रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना की

0: न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये फैसला घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने और हादसे के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने बताया कि हादसे में घायल हुए 11 मरीजों को चिकित्सा के लिए लाया गया है। इन 11 मरीजों में से 5 को मृत अवस्था में ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जबकि एक अन्य घायल की बाद में मृत्यु हो गई। 3 घायलों का इलाज जारी है। एक घायल की सर्जरी की गई, जबकि एक अन्य को निगरानी में रखने के बाद छुट्टी दे दी गई। इस बीच आज सफदरजंग अस्पताल से धौलाकुआं की ओर जाने वाले मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि आरटीआर और बिनौती ज्वारिज मार्ग से आने वाले मार्गों पर भी यातायात प्रभावित होगा। दिल्ली यातायात पुलिस ने नागरिकों से आग्रह किया है कि यदि संभव हो तो इन मार्गों से बचें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें तथा यातायात कर्मियों के निर्देशों का पालन करें। गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बैठक गृह मंत्रालय के अंतर राज्य परिषद सचिवालय द्वारा आयोजित की जा रही है और इसकी मेजबानी गोवा सरकार कर रही है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र तथा केंद्रशासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप शामिल हैं। श्री शाह पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष हैं, जबकि गोवा के मुख्यमंत्री इसके वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। गृहमंत्री आज गोवा राज्य पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगे। ये सम्मान राज्य पुलिस बल के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि होगा। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटेल आधिकारिक दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि श्री बेटेल आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। ओपेक समूह प्लस समूह के 7 प्रमुख देशों सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। बैठक में वैश्विक तेल बाजार की स्थिति और संभावनाओं की समीक्षा की गई। इन देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। ओपेक प्लस ने सितंबर में प्रतिदिन करीब 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया के उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है, जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा, न तो उसका निजीकरण और न ही उसका महत्व कम किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
2: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
1: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
1: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं। माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन करें,
2: मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
1: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
3: धीमी इंटरनेट और महंगे बिल से हैं परेशान, तो लगाइए BSNL फाइबर का 495 वाला 100 MBPS प्लान। पहला महीना बिल्कुल मुफ्त, अगले 3 महीने तक हर बिल पर 100 रुपए की छूट, फ्री वाईफाई मॉडम और इंस्टॉलेशन। अभी कॉल करें या व्हाट्सएप पर हाई भेजें 1800444 पर।
4: अब दर्द ना सहो, तुम खुल के मुस्कुराओ, बवासीर के दर्द से

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ से लीजिए प्रस्तुत है लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं वर्सटाइल मशीन बद्दी।
2: आपके सपनों का घर हो, फैक्ट्री हो या हो ग्राहकों से भरा शोरूम, हर मंजिल तक आसान और सुरक्षित पहुंच। वर्सटाइल लिफ्ट बद्दी के साथ
3: आपकी जरूरत के अनुसार हर तरह के लिफ्ट बनाएं, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और भरोसेमंद सर्विस प्रोवाइड कराएं।
2: वर्सटाइल लिफ्ट बद्दी,
3: अपनी जरूरत के लिफ्ट बनवाने के लिए आज ही संपर्क करें 9736183070।
1: वर्सटाइल लिफ्ट बद्दी, भरोसा सुरक्षा का।
4: हेलो
5: हेलो,
4: कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी। हेलो चंडीगढ़,
5: हेलो चंडीगढ़।

0: हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम सुनने वाले सभी दोस्तों को रमेश कपूर का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। इसी संबंध में आज इस कार्यक्रम का हमारा विषय है, साक्षर हैं तो सशक्त हैं। आप अपने विचार हमारे साथ बांट सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। चंडीगढ़ का एसटीडी कोड है 0172। दरअसल हर साल 8 सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है और ये दिन हमें याद दिलाता है कि पढ़ना और लिखना केवल किताबों तक सीमित कोई हुनर नहीं है। साक्षरता इंसान को अपने अधिकार समझने, अपने फैसले लेने और अपने सपनों को आकार देने, उन्हें साकार करने की ताकत देती है। अब जरा सोचिए, अगर आपके हाथ में कोई कागज आए और आप उसे पढ़ ना सकें, अगर किसी अस्पताल में दवा की शीशी पर लिखा नाम आप समझ ना सकें, अगर बैंक में कोई फॉर्म आपके सामने रख दिया जाए और आप उसे भर ना पाए, अगर बस या ट्रेन के सामने लिखा कुछ कोई शब्द आपको पढ़ना ना आए, तो कैसा महसूस होगा? शायद आप अपने आप को असहाय महसूस करेंगे, या फिर शायद आपको डर लगेगा, और या फिर शायद दूसरों पर निर्भर रहने की मजबूरी। यही वजह है कि साक्षरता केवल अक्षरों को पहचानना नहीं, साक्षरता आत्मनिर्भरता का पहला कदम है। तो आज इस कार्यक्रम का हमारा जो विषय है, एक बार फिर से आपको बता देते हैं, साक्षर हैं तो सशक्त हैं। आप भी अपने विचार हमारे साथ बांट सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। चंडीगढ़ का एसटीडी कोड है 0172। हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी नमस्कार जी, मैं रामवीर बोल रहा जी, गांव गिरमत, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा से।
0: रामवीर जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए।
1: हाँ जी, हाँ जी
0: जी, ऐसे ही बोलिए।
1: तो आज जो विषय है साक्षरता का महत्व के बारे में है, तो साक्षरता एक जो हमें अक्षर अक्षर में ज्ञान होता है, और वो केवल तभी हमें मिलेगा जब हमें पढ़ना लिखना आएगा, तभी हम अक्षरों के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। इसका महत्व इतना अधिक है कि जैसे हमें अंधकार में प्रकाश दिखाई देता है, तो ये साक्षरता के द्वारा ही, शिक्षा के द्वारा ही हम ऐसा अनुभव कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, आपने सही कहा कि साक्षरता के द्वारा ही जो है हमारी जिंदगी रोशन होती है, क्योंकि जब हम साक्षर होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो हम अपनी मंजिल हासिल कर पाएंगे और आत्मनिर्भर बन पाएंगे, है ना?
1: हाँ जी।
0: चलिए रामवीर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फोन करने के लिए।
1: धन्यवाद जी।

0: चमड़ी पर फीका लाल या पीला दाग, जिसमें सुन्नपन हो, हाथों पैरों में झुनझुनी, शरीर की किसी नस का मोटा हो जाना कुष्ठ रोग के लक्षण हैं। 2 सितंबर से 15 सितंबर तक हरियाणा के गुरुग्राम, पानीपत जिलों में मकानों, झोंपड़ियों, फैक्ट्रियों और घर घर जाकर कुष्ठ के मरीजों को ढूंढने के लिए जांच की जाएगी। घबराए नहीं, कुष्ठ छूत का रोग नहीं है। हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए MDT की मुफ्त सुविधा उपलब्ध है। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तमाका। जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी, 1000 प्लस विनर्स, 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस, यानी एक लकी ड्रॉ कूपन। 25 सितंबर नु लकी ड्रॉ होवेगा, आज ही खरीदो। TNC अप्लाई।
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़, और आज इस कार्यक्रम का हमारा विषय है साक्षर हैं तो सशक्त हैं। हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
4: गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर जी, स्मृता डोगरा बोल रही हूँ।
0: नमस्कार जी स्मृता जी, कैसी हैं आप?
4: बिल्कुल ठीक है सर, और ठीक है जी। अभी जस्ट मैं टॉपिक को सुन रही थी
0: जी,
4: AIR से ना।
0: साक्षर हैं तो सशक्त हैं।
4: बिल्कुल सर, एजुकेशन एक ऐसी चीज है सर, एक तो ये इसका ये रोल है ना कि एकेडमिक रिकॉर्ड वाली चीज है कि अगर आपके पास कोई, आप बड़े इंटेलिजेंट है, बड़ा कुछ कर सकते हैं, बट जब तक सर्टिफिकेट आपके हाथ में नहीं होगा एकेडमिक, तब तक आपको नौकरी या कुछ चीज जो आप हासिल करना चाह रहे हैं वो नहीं मिलेगी सर।
0: जी बिल्कुल
4: जी सर, तो वो भी बेस एक हमारा मेन है कि हमारे पास एकेडमिक जो है रिकॉर्ड हमारा पास, तो प्लस टू या कोई आपने IIT का करना या ITI करना है, वो कागज होना बड़ा जरूरी है। कुछ लोग इतने इंटेलिजेंट होते हैं बट उनके पास ना कुछ गरीबी के कारण, मैंने देखा है कई कारण है जो वो एजुकेशन ही ले सकते हैं, उनकी बातें इतनी अच्छी होती हैं।
0: जी,
4: मैं ये बोलना चाहूंगी कि आज की डेट में 8वीं तक शिक्षा फ्री है, क्योंकि हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन ना सर, बुक्स तो बाहर बुक्स मिलती हैं 10वीं तक सर, स्कूल में जो प्लानिंग होती है गवर्नमेंट की, खाना मिलता है 8वीं तक।
0: जी बिल्कुल,
4: पेरेंट्स बच्चों को नहीं पढ़ाते।
0: और पढ़ाई की अहमियत आपसे बेहतर भला कौन जान सकता है, है ना?
4: वही सर, वही सारी जिंदगी इससे जुड़े रहे, खुद पढ़ते रहे, उसके स्कूल में डल गए तो थावन से हटे पढ़ने।
0: बिल्कुल, देखिए हम लोग अक्सर बात करते हैं कि पढ़ाई से इंसान की जिंदगी बदल जाती है, लेकिन कभी हमने ये सोचने की कोशिश की है कि आखिर पढ़ाई बदलती क्या है? पढ़ाई हमारे सोचने का तरीका बदलती है, पढ़ाई हमें सवाल पूछना सिखाती है, पढ़ाई हमें सही और गलत में फर्क करना सिखाती है, और सबसे बड़ी बात पढ़ाई हमें ये विश्वास दिलाती है कि हम भी अपने जीवन के फैसले खुद ले सकते हैं। देखिए स्मृता जी, साक्षरता की शुरुआत बहुत एक छोटे से अक्षर से होती है, लेकिन उसका सफर जो है बहुत दूर तक जाता है।
4: बिल्कुल सर,
0: चलिए
4: जी, लड़कियों को जरूर पढ़ाएं, क्योंकि एक कहावत है कि एक अगर लड़की शिक्षित है तो एक परिवार शिक्षित हो जाता है सर, है ना?
0: बिल्कुल, आपने सही कहा कि लड़कियों की पढ़ाई जो है वो बहुत ही जरूरी है, उन्हें अपने पांव पर खड़ा होना बहुत जरूरी है।
4: बिल्कुल सर, मैंने देखा ना कि हमारे स्कूल में बहन भाई जितने भी स्कूल है, गांव के स्कूलों में नौकरियां करी है ज्यादा मैंने, तो बहन भाई होते तो लड़का नील पढ़ता और लड़की बहुत इंटेलिजेंट टॉप पर होती
0: जी।
4: तो मैं बुलाती, बेटा आना आपको शर्मिंदगी लगेगी अपने भाई के लिए, आपको कंप्लेंट्स के लिए बुला रही हूँ, ऐसा भी नहीं है, तुम इसको अपने साथ बिठा के पढ़ाओ। ऐसा अब एक एग्जांपल है, लड़की बड़ी गरीब है, थोड़ी मैं सपोर्ट करती हूँ, मतलब मैं तो कौन होती हूँ, चलो जो भी है फाइनेंशियल, तो उसने अपने भाई को भी अच्छा कर लिया, वो भी अब दोनों रह के इकट्ठे प्राइवेट एमए करने लगी वो लड़की, अब ग्रेजुएशन कर ली उसने, भाई को भी उसने अपने जैसा अच्छा बना ही लिया
0: जी, क्योंकि आपने मेहनत की, आपने प्यार से उनसे बात की, उनको समझाया
4: जी।
0: चलिए स्मृता जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?

0: गुड मॉर्निंग सर। सर मैं मोनिका बोल रही हूँ, 79D से, चंडीगढ़ से।
1: जी रेडियो से थोड़ा दूर चले जाइए।
0: जी सर।
1: तो आज का जो हमारा विषय है, साक्षर हैं तो सशक्त हैं।
0: यस सर।
1: क्या कहना चाहेंगी?
0: सर एक कविता की कुछ पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहूंगी जो मैंने स्वयं लिखी है।
1: जी।
0: बहते पानी सा निर्मल बनाती शिक्षा, गुणों को तराशती देकर दीक्षा, अच्छे बुरे का भेद समझाती, लेख लकीरों के बदल जाती, उलझे मन की तहें सुलझाती, सलबटे जिंदगी की मिटाती, बातचीत के सिक्के में झलकाती, इंसानियत से इंसान को मिलवाती, मीठे फलों के लदे वृक्ष भांति विनम्र बनाती, अभिमान को कोसों दूर भगाती, अंधविश्वास का पर्दा हटाती, धरती आकाश की दूरी मिटाती, अंधकार अज्ञानता का मिटा रोशनी फैलाती, व्यक्तित्व को चमका भीड़ से अलग खड़ाती, बाजार की कीमतों से ऊपर है उठाती, दुख दर्द दूजों का मिला मिटा लो सेवा की जगाती। सर खत्म करना चाहूंगी, सर लंबी लिखी थी थोड़ी पोएम, शायद गहरा बोल पाई हूँ।
1: बहुत ही अच्छा लिखा आपने और बहुत ही अच्छी प्रस्तुति आपने की। इस कविता के माध्यम से आपने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें की, क्योंकि वो कहते हैं ना कि साक्षरता जो है वो अज्ञान का अंधकार मिटाकर इंसान को प्रकाश की ओर, ज्ञान के प्रकाश की ओर लेकर जाती है। और ज़िंदगी में अगर आपने कुछ करना है तो साक्षर होना बहुत ज़रूरी है, पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी जो शख्सियत है वो और भी ज़्यादा ज़्यादा जो है वो निखर कर सामने आ सके।
0: जी सर।
1: है ना,
0: अब तो सर बहुत ज्यादा लिटरेसी फैल चुकी है, लेकिन अभी भी हमारे रिमोट ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है, और ऐसे लोगों की सोच भी धीरे धीरे शिक्षा से ही ठीक की जा सकती है।
1: बिल्कुल, शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके सहारे हम आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं।
0: बिल्कुल सर।
1: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया आपका फोन करने के लिए।
0: शुक्रिया सर। थैंक यू सर।

0: हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है जी। नमस्कार।
1: नमस्कार सर।
0: कौन बात कर रहे हैं?
1: सर मैं सुरेंद्र बात कर रहा था मोहाली से।
0: जी सुरेंद्र जी,
1: इतना बड़े, हाँ जी, हाँ जी सर, इतना अच्छे टॉपिक के लिए सर बहुत बहुत अच्छी बात है। तो जानकारी ये देना चाह रहा था कि बिना शिक्षा के बगैर से जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते।
0: जी
1: जैसे मैं बात कर लेता हूँ, मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, तो कई जगह पे मेरे को दिक्कत है। जैसे मैं मेट्रो में ही आ रहा था,
0: जी,
1: अगर मैं उस चीज को ना पढ़ूं तो मेरे को हमेशा किसी ना किसी पूछ के जाने आगे बढ़ना पड़ेगा।
0: बिल्कुल,
1: आप किसी की मदद लेते रहोगे, तो आप खुद की अपनी मदद नहीं कर पाओगे कभी भी।
0: बिल्कुल आपने सही कहा।
1: हाँ, जब भी आपको कोई चीज सीखनी है, देखो आप खाना भी खाना तो आपको पता होना चाहिए खाने में क्या क्या चीज डलती है। वैसे ही शिक्षा है सर। अब शिक्षा के बगैर वही है कि आप जो खा रहे हो वो भी नहीं पता आपको क्या खा रहे हैं।
0: बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान का साक्षर होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अगर आपने आत्मनिर्भर बनना है तो साक्षर होना लाजमी है, क्योंकि आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहेंगे। घर से बाहर जाएंगे, कहीं जाना है, कहीं बोर्ड पढ़ना है, बोर्ड नहीं पढ़ा जा रहा आपसे, है ना, कोई बस पकड़नी है तो आपको लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा, पढ़ा नहीं जाएगा
1: सर।
0: जैसे मैंने पहले कहा कि जैसे बैंक में भी जाके आपने देखा होगा बहुत से लोग बेचारे दूसरों की तरफ देखते रहते हैं कि शायद उनका कोई फॉर्म भर दे।
1: सही बात है सर।
0: और आज का जो जमाना है, डिजिटल जमाना है, तो
1: जिसमें
0: ऑनलाइन आपने कुछ भी काम करना है तो पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं यही कह रहा हूँ कि बिना शिक्षा के बगैर वही है कि अंधे को आपने लाठी पकड़ा दी है। बल्कि अंधा भी उसको रास्ता भी नहीं मिल रहा है, या हमें पढ़े लिखे को भी रास्ता नहीं मिलता था। बल्कि सॉरी मेरी बात के शब्दों को सही बोल नहीं पा रहा मैं इस चीज को।
0: बिल्कुल आप देखिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब इंसान पढ़ लिख जाता है तो वो हर चीज उसको समझ में आती है और अपने फैसले वो खुद लेने लगता है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो आत्मविश्वास बढ़ जाता है इंसान का, है ना।
1: हाँ जी सर।
0: तो आप कहीं भी जाएं, हमेशा आप जिंदगी में आगे ही बढ़ते जाएंगे शिक्षा के माध्यम से, ज्ञान की रोशनी में। आप खुद भी देखिए, वो कहते हैं ना कि जो दिया खुद ही बुझा होगा वो दूसरों को क्या जलाएगा, और एक दिए से आप हजार दिए जला सकते हैं, है ना। तो ज्ञान की ज्योत जब आप में जलेगी तभी आप दूसरों में जला पाएंगे।
1: थैंक यू सो मच।
0: चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: सत श्री काल जी। बंसीलाल जी बोल रहे हैं
0: जी। बंसीलाल जी कैसे हैं आप?
2: ठीक है जी, आप कहो?
0: बहुत बढ़िया। तो आज का हमारा विषय है साक्षर हैं तो सशक्त हैं।
2: हाँ, शिक्षा भी जरूरी है जी। शिक्षा तो अपना बहुत जरूरी है आजकल बाहर जाने वाले के लिए। कंप्यूटर का जमाना आ गया।
0: बिल्कुल,
2: कहीं फोन का फोन चल रहा है जी, ये भी बिना शिक्षा के कुछ

0: बिल्कुल आपने सही कहा कि बिना शिक्षा के कुछ नहीं है,
1: अंधा है जी।
0: साक्षर होना बड़ा जरूरी है, तभी आप सशक्त बन पाएंगे और
1: हाँ
0: आसमान
1: बिल्कुल
0: की
1: बिल्कुल
0: बुलंदियों को हासिल कर पाएंगे।
1: हाँ जी हाँ।
0: चलिए बंसीलाल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फोन कर।

0: अरोड़ा प्लाईवुड
1: यहाँ है पीवीसी, डब्ल्यूपीसी, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और एचडीएचएमआर प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
0: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
2: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका, जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी और 1000+ विनर्स। 2 लीटर एमिस्टा टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन आज ही खरीदे। 25 सितंबर को लकी ड्रॉ है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे वर्सेटाइल मशीन बद्दी।
4: आपके सपनों का घर हो, फैक्ट्री हो या हो ग्राहकों से भरा शोरूम, हर मंजिल तक आसान और सुरक्षित पहुंच, वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी के साथ।
5: आपकी जरूरत के अनुसार हर तरह के लिफ्ट बनाएं, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और भरोसेमंद सर्विस प्रोवाइड कराएं।
4: वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी,
5: अपनी जरूरत के लिफ्ट बनवाने के लिए आज ही संपर्क करें 9736183070।
3: वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी, भरोसा सुरक्षा का। आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। दोस्तों, कल है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और इसी संबंध में आज इस कार्यक्रम का हमारा विषय है साक्षर हैं तो सशक्त हैं। आप भी अपने विचार हमारे साथ बांट सकते हैं इस लाइव फोन इन प्रोग्राम में। टेलीफोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। चंडीगढ़ का एसटीडी कोड है 0172। हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है जी। नमस्कार
6: चंडीगढ़ सर। नमस्कार, आदाब और सत श्रीकाल
3: जी। कौन सा बोल रहे हैं
6: सर? मैं रेडियो दोस्त परवेज अहमद शुक्लपुरा बनारस से आपसे मुखातिब हो गया हूँ
3: जी। परवेज भाई कैसे हैं आप?
6: बढ़िया है सर, और चंडीगढ़ का प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा चल रहा है और बहुत से श्रोताओं की बात जो की साक्षरता पे सुन रहे हैं
3: जी।
6: बहुत अच्छा लग रहा है सर, मेरा भी कॉल लग गया और खुशी हुई।
3: तो आज का जो हमारा विषय है साक्षर हैं तो सशक्त हैं, थोड़ा बताइए।
6: तो सर मैं ये कहना चाहूंगा साक्षरता तो 100% होनी चाहिए, अभी तो उतना है नहीं। लेकिन मैं अपने बचपन से बता रहा हूँ, मैं अपने बचपन में ही प्राइमरी से पढ़ा हूँ और उस समय मेरे जो है कि पिताजी सभी भाई बहनों को पढ़ाए हैं और हमारे घर पे सर जितनी भी लड़कियां हैं, हमारे घर पे 5-6 लड़कियां जो हम लोग के भाई बहन के जो ही हैं उनका भी हम लोग पूरा साक्षरता का ध्यान रखे हैं और हमारे घर के जितनी भी लड़कियां हैं सबको हम लोग बीए एमए जो भी बीएड कराए हैं, तो इसलिए हम लोग साक्षरता पे बहुत ध्यान देते हैं। और सर जहां हम रहते हैं बनारस में, अगर वहां किसी बच्चे को अगर विद्यालय में लेके जाना होता है जितना मुझसे संभव हो सकता है तो जहां सरकारी विद्यालय है वहां हर चीज की सुविधा होती है, तो मैं ये सोचता हूं कि उनको स्कूल तक ले पहुंचाऊं, इसलिए मैं साक्षरता पे ध्यान देता हूं।
3: बहुत ही अच्छा काम करते हैं आप परवेज भाई, और सबसे बड़ी बात यह है कि लड़कियों की शिक्षा पर आपके वहाँ पे खास ध्यान दिया जाता है, ये तो और भी अच्छी बात है।
6: हाँ सर बोलिए।
3: क्योंकि एक लड़की, शिक्षित लड़की जो है वो आगे चल के जागरूक महिला बनती है, अपने बच्चों को शिक्षा का महत्व समझाती है, शिक्षा देती है, उनको ज्ञान की रोशनी देती है ना, अपने स्वास्थ्य को लेकर वो जागरूक रहती है, अपने अधिकारों को समझती है।
6: बिल्कुल।
3: तो जब हम किसी बेटी को स्कूल भेजते हैं तो वास्तव में हम पूरे समाज को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे होते हैं, ये बात हमें अच्छे से समझनी चाहिए।
6: बिल्कुल सर, उससे एक घर नहीं सर, दो घर अच्छा बनता है, प्लस जितने भी आने वाले बच्चे आएंगे उनके वो भी शिक्षित होंगे और उनको अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा सर
3: जी।
6: मैं खुद अपने बेटी को सर बीए जो कम्प्लीट करा चुका हूँ, अभी

0: उसका बीए हो गया, उसका अगर वो और आगे हो सकता है तो और आगे पढ़ेगी। और मेरे भाइयों को जितनी भी लड़कियां हैं, कोई बीएड करी है, कोई एमए करी है, कोई मतलब इंटर कर रही है, कोई हाई स्कूल कर रही है, सभी बच्चियां जो कि पढ़ाई कर रही हैं सर इस समय।
1: बिल्कुल ऐसे ही उनको आगे पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, क्योंकि साक्षर होना वही बात है कि सशक्त हम तभी हो पाएंगे जब साक्षर होंगे।
0: और सर आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा, जितने भी चंडीगढ़ के श्रोता हैं आकाशवाणी के, हो सके तो अगर किसी का भी हेल्प तो स्कूल ना जा सके उनको स्कूल तक ले भेजें
1: जी।
0: साक्षरता पूरी होनी चाहिए सर।
1: बिल्कुल,
0: और आपके विषय पे मैं बस यही कहना चाहूंगा,
1: चलिए
0: साक्षर बनेंगे तो देश मजबूत रहेगा।
1: चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया जी फोन करने के लिए। हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: हेलो
1: जी, नमस्कार जी।
2: नमस्कार रमेश जी, मैं मिसेस बेदी बोल रही हूँ।
1: जी मिसेस बेदी, कैसी हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ, बहुत बढ़िया टॉपिक चुना आज आपने
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया। साक्षर हैं तो सशक्त हैं।
2: हाँ देखिए, हम लोग उस टाइम के पढ़े हुए, अब मैं 76 हो जाऊंगी, मेरी बड़ी सिस्टर, हम तीन सिस्टर हैं, तीनों बहुत पढ़ी हैं, बड़ी वाली गोल्ड मेडलिस्ट है और बहुत डिग्रियां उसके पास
1: जी,
2: स्टेट अवार्ड विनर है। मैंने चलो एमए की है, पर मेरा इंटरेस्ट था ही रेडियो वगैरह में, तो इसमें भी आगे निकल गई मैं बहुत।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: रेडियो ने रिश्ते दिए मेरे को, बहुत कुछ दिया
1: जी।
2: और तीसरी सिस्टर मेरी जल्दी शादी हो गई थी, अमेरिका गई, अब वो टॉप की सीए है वहाँ।
1: देखिए पढ़ाई कितनी जरूरी है इंसान की जिंदगी में,
2: आपको बताओ रमेश जी, पढ़े लिखे के मुंह पे जो तेज होता है वो अनपढ़ के मुंह पे नहीं आता
1: जी,
2: एक रौनक सी होती है क्योंकि उसके अंदर सारी नॉलेज होती है।
1: बिल्कुल,
2: मैं पंजाब में रही हूँ, वहाँ लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, पर हर बात में ना ग्रज करना उनको बहुत आता है, गिला शिकवा। तो जैसे कोई रेड लाइट ग्रीन लाइट वगैरह आई ना, तो हम लोग तो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं
1: जी,
2: शुरू से ही बहुत कानून मानते हैं, वो कहते हैं आप लोग तो बेवकूफ हो जो कानून मानते हो, ये हमारे लिए बने क्या?
1: बिल्कुल, हम सबके लिए ही, हम सबके लिए ही बने हैं जी जी,
2: यही फर्क है पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे या अनपढ़।
1: तो इसीलिए हमने कार्यक्रम के शुरू में कहा कि एक जो साक्षर व्यक्ति होता है वो क्या अच्छा है क्या बुरा है उसको समझ में आ जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है जी, बोलिए,
2: को पढ़ाता है।
1: बिल्कुल,
2: हमारे घर में ये था, एक बार एक गवर्नर थे जनरल सुंदर जी, उन्होंने कहा ईच वन टीच वन, तो मेरे मदर जितना पढ़े हुए थे उसके हिसाब से रोज 5-6 बच्चों को बिठाना और पढ़ाना। मैंने तो, हमने तो पढ़ाए हैं बच्चे, अपने पढ़ाए, मेरे नेबर्स की गुड़िया पढ़ाई 12 कितनी देर तक, मेरी सिस्टर टीचर रही 35 साल, सीनियर टीचर, स्टेट अवार्ड विनर रही। तो एक एजुकेशन जो होती है ना, ये एक गहना है, इसको सबको पहनना चाहिए।
1: बिल्कुल, देखिए मिसेस बेदी, जिस तरह से आपने बताया कि आपका पूरा परिवार साक्षर है, तो
2: हाँ,
1: जैसे आप साक्षर हैं तो आप जैसे लोग जब आगे बढ़ के, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर थोड़ा सा ज्ञान उनमें बांट देंगे तो समाज और भी हमारा अच्छा बन जाएगा, है ना?
2: नहीं, बिल्कुल रमेश जी, ऐसा है कि ये चीज ऐसी, विद्या का दान ऐसा है कि जो दो, देखिए मैं पढ़ाई के अलावा मैं योग की रही हूँ, 27 साल मैंने क्लास चलाई है
1: जी,
2: मतलब उसकी मैं हेड रही हूँ। तो क्या था कि उनको खाली योग नहीं सिखाया मैंने, उनको मैंने मेंटल हेल्थ सिखाई, फिजिकल हेल्थ सिखाई, अपने लिए जीना सिखाया
1: जी। बिल्कुल,
2: क्योंकि सबके लिए जी लिए, अब ये टाइम आ गया कि हम अपने लिए जिए, ये तभी कर सकते हैं अगर हम मेंटली एजुकेटेड हैं और फिजिक वैसे भी एजुकेटेड हैं तो
1: जी। चलिए मिसेस बेदी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके।
2: हाँ, बहुत अच्छा लगा ये टॉपिक, थैंक यू सो मच।
1: शुक्रिया फोन करने के लिए।

0: हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हेलो जी, बोलिए, कौन बोल रहे हैं? आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, थोड़ा ज़ोर से बोलिए। हेलो,
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
1: हिमाचल से बोल रहा था।
0: सुशील जी, रेडियो के पास बैठे हैं आप, थोड़ा सा दूर चले जाइए।
1: नहीं सर, मैं तो बाहर हूँ, रेडियो तो नहीं है
0: जी। चलिए कोई बात नहीं। सुशील जी, आज इस कार्यक्रम का हमारा विषय है साक्षर हैं तो सशक्त हैं। तो
1: जी सर, जी सर,
0: क्या कहना चाहेंगे आप?
1: मेरा तो यही कहना है, क्या बोलते हैं कि साक्षरता तो शिक्षा तो कदम कदम पे काम आती है।
0: बिल्कुल,
1: शिक्षित होना ना केवल जरूरी नहीं कि हमें नौकरी करनी है या रोजगार मिलना है, मतलब शिक्षित व्यक्ति के पास जीवन जीने के अपार संभावनाएं होती है।
0: बिल्कुल, आप देखिए, रोजमर्रा के काम करने हैं हमें तो पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, साक्षर होना बड़ा जरूरी है।
1: बहुत बहुत बहुत, मतलब मैं कहूँ कदम कदम पे। आपने कृषि बागवानी करनी है, आपने बिजनेस करना है, आपने कोई अपना काम करना है, कुछ भी करना है, मतलब किसी भी फील्ड में आपने आगे बढ़ना है, जब तक आपके पास शिक्षा नहीं होगी तब तक आप, मतलब बहुत दिक्कतें आएंगी आपको, कदम कदम पे दिक्कतें आएंगी।
0: बिल्कुल, आप देखिए, आप काम कर रहे हैं, बैंक में पैसे जमा कराने जाना है तो आप बैंक में गए हैं तो वहां पे जाके आपको फॉर्म भरना नहीं आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा कुछ भी है ना, तो अपने साइन करने नहीं आ रहे बहुत से लोगों को, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं,
1: बहुत बहुत,
0: और कहीं ना कहीं वो कमजोर पड़ जाते हैं। तो अगर सशक्त बनना है तो साक्षर होना बड़ा जरूरी है।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल। हिमाचल तो ऐसे भी काफी, मतलब शिक्षा का स्तर काफी अच्छा है यहाँ पे, तो
0: जी
1: ग्रामीण जो जनजातीय क्षेत्र

0: उसमें भी जो है खासकर जो है बेटियों को भी आगे बढ़ने के अवसर दिए जाते हैं। हिमाचल की स्थिति, केरल हिमाचल जो है आपको बताइए होगा देश में अग्रणी है शिक्षा के क्षेत्र में, तो ये तो अच्छी है, सौभाग्य की बात है हमारे लिए तो ऐसे क्षेत्र से हम संबंध रखते।
1: बिल्कुल, और देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं,
0: बिल्कुल जी,
1: जिंदगी में तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। और जो आपके आसपास जो पढ़े लिखे नहीं हैं, बड़ी उम्र के हैं, आप उनको भी अक्षर ज्ञान दे सकते हैं, है ना, क्योंकि जितना ये शिक्षा का ज्ञान आप बांटेंगे उतना ये ज्ञान बढ़ता चला जाएगा।
0: बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल।
1: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया आपका फोन करने के लिए। हेलो, चंडीगढ़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं
2: जी?
1: कौन बोल रहे हैं?

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़। हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रही है आपकी कॉल में।
2: गुड मॉर्निंग
0: जी। गुड मॉर्निंग जी, कौन बोल रही हैं?
2: किरण बात कर रही हूँ।
0: हाँ जी किरण जी, बोलिए, कैसी हैं आप?
2: सर मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए।
0: आज का जो विषय है, साक्षर हैं तो सशक्त हैं, क्या कहना चाहेंगी?
2: सर मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई लिखाई करना बहुत जरूरी है।
0: जी बिल्कुल,
2: क्योंकि सर मैं खुद भी एक मतलब बच्चे को पढ़ाती हूँ।
0: जी बहुत ही बढ़िया, आप क्योंकि ज्ञान की रोशनी आगे बांट रही हैं।
2: सर मैं ऐसे नहीं पढ़ाती, मैं गरीब बच्चों को पढ़ाती हूँ।
0: जी बिल्कुल, वैसे यही बात मैं कर रहा हूँ आपसे कि आप जो आपको ज्ञान हासिल हुआ है पढ़ने लिखने से, वो आप दूसरे बच्चों में बांट रही हैं।
2: जी सर, तो मैं कहना चाहूंगी कि कोई बच्चा अनपढ़ ना रहे, पैर के खड़ा के।
0: जी
2: क्योंकि जब भी हमें कहीं जाना हो, क्योंकि मैं यह सर कहती हूँ, मतलब मुझे कहीं जाना था तो मैं अपनी गाड़ी ले गई।
0: आपकी आवाज बीच में खराब होती है।
2: मैं लेके निकल गई है।
0: चलिए रेखा जी, क्योंकि आप अपने आस पड़ोस के जो बच्चे हैं, जो किसी वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, आप उनको पढ़ा रही हैं, ज्ञान बांट रही हैं, बहुत ही अच्छा लगा ये जानकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फोन करने के लिए।
2: जी

0: हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है जी। नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
0: कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं?
1: मैं सर जी सेक्टर 42 चंडीगढ़ से सतीश कुमार बोल रहा जी।
0: जी सतीश जी बोलिए, कैसे हैं आप?
1: सर जी ठीक हूँ मैं।
0: तो
1: शिक्षा तो एक ऐसा गहना है जिसने पहना उसी ने जाना।
0: वाह बिल्कुल सही कहा आपने।
1: शिक्षा से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है जी।
0: जी
1: शिक्षा तो एक माँ है, हमारी माँ है जी शिक्षा। शिक्षा से सारी दुनिया हमने कवर कर ली है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा, शिक्षा से हमने पूरी दुनिया कवर कर ली है, ये सच कहा आपने। और सबसे
1: सुपर फास्ट हो गए जी हम।
0: जी
1: शिक्षा की बदौलत अपना पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है जी।
0: बिल्कुल,
1: चाहे आप म्यूजिक के टीचर हो वो भी शिक्षा है, म्यूजिक देना भी एक शिक्षा है जी।
0: बिल्कुल, ज्ञान की रोशनी जो है उसमें जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जिंदगी में हम मंजिल हासिल कर पाते हैं
1: जी। देखो हम चंद्रयान 3 पे चले गए जी।
0: जी
1: इसमें भी शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। शिक्षा ना होती तो हम कुछ भी ना कर पाते, ना रेडियो टीवी कुछ भी ना होता जी।
0: बिल्कुल, आज देखिए जिस तरह से डिजिटल दुनिया है या दुनिया ने तरक्की की है वो शिक्षा की बदौलत ही है, और आज हम जो कुछ भी हैं वो शिक्षा की बदौलत है
1: जी। सर जी क्रांति क्रांति ला दी, दुनिया चकाचौंध हो गई है जी।
0: बिल्कुल
1: चमक आ गई है दुनिया में
0: जी
1: शिक्षा की बदौलत।
0: चलिए
1: कुछ भी कर लेते हैं जी, घर बैठे अपना कुछ भी लेन देन कर लो, शिक्षा की बदौलत सब कुछ चलता है जी।
0: बिल्कुल, रोजमर्रा के काम हो तो शिक्षा का होना बड़ा जरूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं
1: सर जी,
0: जी
1: PhD का बड़ा शोर रहता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता
0: जी।
1: PhD है क्या? संबंध न्यू, अर्थात हमने कुछ नया सा एक करना
0: जी जी,
1: उसको PhD कहते हैं, जिसमें हम कुछ नया करें जो किसी ने आज तक ना किया हो।
0: बिल्कुल, शोध जब हम लोग करें उस विषय पर
1: करें
0: जी,
1: बिल्कुल नया करके दिखाना है। PhD करनी हो किसी ने, हम जिसने PhD की हो पहले, हम उसके पास जाएंगे
0: जी,
1: हम कहेंगे भी हमने PhD करनी है
0: जी,
1: वो हमें होमवर्क देगा और कहेगा आप कुछ नया सा कर लाओ
0: जी।
1: हम यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करेंगे, फीस भरेंगे, वो हमारे थीसिस वगैरह होमवर्क देखेगा जिसको पास हम PhD करने गए, फिर हमें यूनिवर्सिटी डिग्री प्रदान करेगी।
0: बिल्कुल आपने सही कहा सतीश जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। और अंत में तो यही कहना चाहेंगे कि

0: साक्षर व्यक्ति जो है सच में सशक्त होता है और जिंदगी में वही आगे बढ़ता है जो साक्षर हो, आसमान की बुलंदियों को छूता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फोन करने के।
1: जी सर जी।

0: इस गीत के साथ ही अब आज का लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ समाप्त करने के अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। इस कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है मीनाक्षी कालिया, हमारा नमस्कार।
1: हेलो हेलो, कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी, हेलो चंडीगढ़,
2: हेलो चंडीगढ़।

0: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तिमका जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम दो थार 6 बाइक 12 स्कूटी 1000 प्लस विनर्स 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन 25 सितंबर नू लकी ड्रॉ होवेगा आज ही खरीदो TNC अप्लाई।
1: धीमी इंटरनेट और महंगे बिल से हैं परेशान तो लगाइए BSNL फाइबर का 495 वाला 100 Mbps प्लान। पहला महीना बिल्कुल मुफ्त, अगले 3 महीने तक हर बिल पर 100 रुपये की छूट, फ्री वाईफाई मॉडम और इंस्टॉलेशन। अभी कॉल करें या व्हाट्सएप पर हाई भेजें 1800444 पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। दिन के 11 बज चुके हैं, लीजिए प्रस्तुत है एक विशेष बातचीत। नमस्कार श्रोताओं, आज इस विशेष बातचीत में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बातचीत का विषय है हमारा राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा। आप सभी को मालूम है कि ये पखवाड़ा 25 अगस्त से 8 सितंबर तक पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है और इस पखवाड़े में नेत्रदान के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। नेत्रदान क्यों जरूरी है, इससे जुड़ी जो भ्रांतियां हैं उन्हें दूर किया जाता है, इन तमाम बातों को लेकर पूरे देश में जागरूकता अभियान चलता है। हर सरकारी हॉस्पिटल जो है इस सिलसिले में विभिन्न कार्यक्रम करता है और इससे जुड़े हुए जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो भी कार्य करती हैं। आज इस विशेष बातचीत में हमारे साथ हैं डॉक्टर सुदेश आर्य, इंचार्ज ऑफ आई बैंक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सेक्टर 32 चंडीगढ़। डॉक्टर आर्य, इस विशेष बातचीत में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
3: धन्यवाद।
2: और डॉक्टर साहब, जब जब ये पखवाड़ा आता है तो आप खुद ब खुद हमारे स्टूडियो चले आते हैं, इससे ये साबित होता है कि आप आकाशवाणी के साथ मिलकर उसके श्रोताओं को किस कदर जागरूक करते हैं, हर साल करते हैं।
3: मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस जागरूकता अभियान के दौरान हमें पूरा मौका मिलता है और खासकर मैं धन्यवाद करता हूँ ऑल इंडिया रेडियो का कि आकाशवाणी के थ्रू आप पूरा मैसेज जहाँ तक पहुँचा सकते हैं वहाँ पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रयास में मैं थोड़ा अपने आप को जोड़

0: की कोशिश करता हूँ ताकि इन सब का भला हो।
1: तो आप हमें ये बताइए कि राष्ट्रीय नेत्रदान जो पखवाड़ा है, इसे मनाने का सिलसिला क्यों शुरू हुआ?
0: हमारे देश के अंदर जैसे ऑलमोस्ट हम देखें कम से कम 30 लाख लोग ऐसे हैं जिनको कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है।
1: 30 लाख,
0: तो इन सब लोगों को जब तक हम नेत्रदान के द्वारा आंखें नहीं देंगे तो उनकी रोशनी वापस नहीं लाई जा सकती। हालांकि हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत एडवांस हो चुके हैं, सर्जरी करने की नई नई मशीनें आ चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है,
1: नए आयाम जुड़े हैं,
0: और लोगों को बेस्ट रिजल्ट भी दे सकते हैं
1: जी।
0: लेकिन वो सारा तभी संभव होगा जब हमारे पास कोई नेत्रदान करके आंखें हमें देगा,
1: मतलब लोग आगे आएंगे अपनी आंखें दान करेंगे।
0: अदरवाइज हाँ जी, तो अदरवाइज हमारी जो टेक्नोलॉजी वो सारी टेक्नोलॉजी किसी काम की नहीं होगी। तो इसलिए अगर लोग आगे हैं और मरने के बाद अपना नेत्रदान करें तो उन नेत्रदान के द्वारा, उन कॉर्निया के द्वारा हम काफ़ी सारे लोगों को जो हमारे देश में जो देख नहीं पाते है ना, उनको भी हम दृष्टिबाधित होने की वजह से जो सुंदर संसार है और अपना जो काम है रूटीन उसको नहीं कर पाते, तो उनको भी ऐसा हम आत्मनिर्भर कह लो या अपना काम करने लायक और इस सुंदर संसार को देखने लायक बना सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा कि जो देख नहीं पाते वो तो केवल महसूस कर पाते हैं, और आपकी दी हुई दान की हुई आंखें जब उन्हें लगेंगी और इस संसार को देखेंगे तो जो वो महसूस करते से उससे कहीं ज्यादा उन्हें और खुशी मिलेगी।
0: और इसमें
1: इतना सुंदर संसार है जो हम इतने सालों से देख नहीं पाए, आज किसी ने दान किया है और उसके सहारे देख पा रहे हैं।
0: और देखो हमारे देश का भी इसमें बहुत फायदा है, क्योंकि ऐसे इतने सारे मान लो इतने 30 लाख लोग अगर उनकी आंखें ठीक हो जाए तो वो भी देश की तरक्की में हेल्प करेंगे।
1: बहुत अच्छी बात की आपने, देश के विकास में उनका योगदान डबल ट्रिपल हो जाएगा जी।
0: तो इसलिए उनका पर्सनल भी फायदा तो है ही, लेकिन पूरे देश का भी फायदा है, सोसाइटी का भी फायदा है। तो इसलिए हम सबको मिलकर इस नेत्रदान पखवाड़े में आगे आना चाहिए, और हमारे आसपास जो भी लोग हैं खुद भी नेत्रदान के लिए अपने आप को मोटिवेट करना है, और बाकी जो भी मिलते हैं उन सबको मोटिवेट हमें मिलके करना चाहिए।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए भाई, इतने सालों से आप इस अभियान से जुड़े हुए हैं और इस अभियान में लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, क्या लोगों में जागरूकता बढ़ी है?
0: नहीं बिल्कुल, डेफिनेटली इसका असर हम देखते हैं। जैसे पहले हमें लोगों को बोलना पड़ता था तब भी आंखें दान लोग नहीं करते थे, लेकिन अब हमें बिना कहे भी आंखें दान होती रहती हैं। तो उसका जैसे हम एक समय था जब कोई ब्लड डोनेशन के लिए आगे नहीं आता था, लोग सोचते थे अगर हम रक्तदान करेंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे या मर जाएंगे,
1: काम हो जाएगा
0: है ना, तो बहुत सारी भ्रांतियाँ थी। लेकिन अब आजकल ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो रक्तदान के लिए मना करता होगा। तो वही चीज़ आँखों दान के में भी हम देख सकते हैं कि पहले लोग बहुत मुश्किल से करते थे, बहुत सारे अंधविश्वास थे, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें खत्म हो रही हैं और नेत्रदान हमारे देश के अंदर भी काफ़ी बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर आर्य। देखिए ये वास्तविकता है जीवन की, जो आया है उसे जाना है, शरीर जो है नश्वर है, इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो जाने से पहले जीते जी अगर हम दान करते हैं तो हमारे ना होते हुए भी हम दुनिया में फिर भी रहेंगे।
0: और सबसे अच्छी बात है जैसे एक व्यक्ति मरने के बाद, हम जीते जी कुछ नहीं देना चाहते, दे नहीं दे रहे, मरने के बाद हमारा शरीर जिसको दबा दिया जाएगा या जला दिया जाएगा संस्कार करके, उससे पहले अगर हम कर संस्कार करने से पहले अगर सिर्फ 2 कॉर्निया निकाल लें, उस 2 कॉर्निया से कम 6 से 8 लोगों को रोशनी दे सकते हैं। एक व्यक्ति 6 से 8 नेत्रहीन लोगों को रोशनी दे सकता है, इससे बड़ा फायदा मरने के बाद वो भी मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा दान हो सकता है।

डॉक्टर आर्य, ये जो एक आम सोच होती है ना, लोग सोचते हैं कि आंखें निकाल दी जाएंगी और जो व्यक्ति है वो अगले जन्म में अंधा पैदा होगा, इस तरह की भ्रांतियां जो हैं, और लोग इसी वजह से शायद डरते हैं। इसमें चेंजेस तो आए हैं लेकिन अभी फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी सोच आ जाती है, तो इसको थोड़ा आप स्पष्ट कीजिए कि जब आप आंखें लेने की बात करते हैं किस तरह से ले

0: हैं, उसका तरीका क्या है?
1: जैसे अपने अंधविश्वास की बात करी हम, जो जैसे कॉलेजेस के अंदर प्रोग्राम करते हैं, तो आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये मालूम ही नहीं है कि ऐसा कोई अंधविश्वास है कि अगर हम आंखें दान करेंगे तो अगले जन्म में अंधे पैदा होंगे।
0: अच्छा, ये अच्छी बात है।
1: तो उनको ये बिल्कुल अंधविश्वास टोटली ख़त्म हो चुका है, लेकिन हमारी जो पुरानी जनरेशन है उनके अंदर डेफिनेटली अभी भी ये है भ्रांतियाँ। तो इसलिए जो जागरूकता अभियान करते तो आई थिंक उससे बहुत फ़र्क पड़ रहा है, लोगों का अंधविश्वास कम हो रहा है। लेकिन पहले के लोग डेफिनेटली ये मानते थे अगर हम नेत्रदान करेंगे तो अगले जीवन में अंधे पैदा होंगे, लेकिन हमारे जो शास्त्र ही कहते हैं अगर कोई व्यक्ति कोई भी दान करता है तो उसको जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। तो अगर कोई नेत्र दान करेगा तो एटलीस्ट वो व्यक्ति अगले जीवन में अंधा पैदा नहीं होगा, चाहे बाकी कोई भी हो जाए,
0: उसने जीते जी कर्म अच्छा किया,
1: तो जैसा कर्म किया उसको फल मिलेगा, तो वो तो अगले जीवन में अंधा होने से रहा। तो ये लोगों को समझ आ भी रहा है और लोग समझ भी रहे हैं। और बाकी प्रोसीजर,
0: बस मैं यही जानना चाहता था कि इस सोच में अंतर आया है?
1: बिल्कुल,
0: पुरानी पीढ़ी में भी आया है,
1: पुरानी में भी आ रहा है और नई में तो है ही नहीं।
0: है,
1: ये
0: तो
1: बहुत
0: अच्छी बात है,
1: बहुत खुशी की बात है कि नई जनरेशन को ये चीजें नहीं पता।
0: तो यंग जनरेशन जो है वो आई बैंक के साथ जुड़ती है इस अभियान को लेकर?
1: बिल्कुल जुड़ती है, और वो बड़े उत्साह के साथ जुड़ते भी है।
0: ये बहुत अच्छी बात है आपने बताई कि जेन जी जो है उसमें अंधविश्वास नाम की कोई चीज ही नहीं है।
1: जेन जी वो पूरे जो देश के लिए और हर चीज के लिए समाज के लिए बहुत अच्छे हैं।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए जब आंखें हम दान की बात करते हैं तो उसका तरीका क्या होता है?
1: बहुत सिंपल,
0: हमें करना क्या है?
1: बहुत सिंपल तरीका है। जैसे कोई व्यक्ति पूरे देश के अंदर जिस भी शहर में रहता है, हर एक शहर के अंदर एक आई बैंक है और कई शहरों के अंदर कई सारे आई बैंक है। जैसे हमारे चंडीगढ़ के अंदर भी ऑलमोस्ट 3 आई बैंक तो हैं, एक मेजर जो पीजीआई का है और हमारा सेक्टर 32 मेडिकल कॉलेज। तो ये 2 आई बैंक का नंबर, जैसे टेलीफोन नंबर सभी न्यूज़पेपर के अंदर भी होता है, और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप गूगल में जस्ट फीड करो आई बैंक GMCH चंडीगढ़, आपको टेलीफोन नंबर
0: आ जाएगी,
1: टेलीफोन नंबर आ जाएगा उसका।
0: तो इस वक्त जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं रेडियो और आपकी बातचीत को सुन रहे हैं, उन्हें बता दीजिए कि कॉन्टेक्ट कहाँ करना है, तो कौन सा फॉर्म भरना है, कैसे भरना है?
1: कुछ नहीं करना, सिंपल एक टेलीफोन नंबर आपको सर्च करना है गूगल में, आई बैंक GMCH, तो वहाँ पे आपको टेलीफोन नंबर मिल जाएगा 9814821212।
0: एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए,
1: 9814821212।
0: तो श्रोताओ, हम आपको एक बार फिर से बता दें, ये नंबर है, डॉक्टर आर्य ने बताया है कि 9814821212।
1: तो बस इस नंबर पे आपने सिर्फ टेलीफोन करना है और कुछ भी नहीं करना। जैसे ही टेलीफोन आएगा, हमारे आई बैंक का 24 आवर्स हेल्पलाइन नंबर है, तो उसी समय जगह अगर आप बताओगे कि ऐसे ऐसे इस जगह डेथ हुई है, तो हमारी टीम वहाँ पे पहुँच जाएगी, उनको काउंसलिंग भी करेंगे, मोटिवेट भी करेंगे, और फिर अगर वो ऑलरेडी मोटिवेटेड है तो इमीडिएटली वहाँ से कॉर्नर निकाल के आ जाएंगे। तो ट्राई सिटी के अंदर मान लो मैं सेक्टर 32 मेडिकल कॉलेज से कहीं भी जाना होगा तो आई डोंट थिंक कि आधे घंटे से ज़्यादा लगने वाला है, तो आधे घंटे का समय लगा लो, मे बी 15 मिनट और लगा लो, तो एक घंटे के अंदर हमारी टीम वहाँ पहुँच जाएगी और 10 मिनट दोनों आँखों को निकालने में लगता है।
0: अच्छा, किसी घर में ऐसी स्थिति बनती है, उनकी इच्छा रही है कि वो आँखें उनकी दान की जाएँ, तो परिवार वालों की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए?
1: सिर्फ टेलीफोन करना है और फिर जो आई बैंक से टीम आएगी वो एक सहमति पत्र होगा, उसके ऊपर उनको हस्ताक्षर करने की हम इनकी आंखें दान करने के लिए तैयार हैं। बस इतनी फॉर्मेलिटी है कि उनको सिग्नेचर कर देना है कि हम इनकी आंखें दान करना चाहते हैं। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, अगर उसने इच्छा जाहिर करी थी या नहीं करी थी उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर करी थी तो फिर तो बहुत ही जरूरी
0: अच्छा।
1: है। अगर उसने नहीं सोचा था कि मुझे आंखें दान करनी है, लेकिन घर वाले सोच रहे हैं कि करनी चाहिए, तो भी आंखें दान की जा सकती है।
0: नहीं, मान लीजिए कि उसने इच्छा व्यक्त की थी,
1: फिर तो उनको करना ही, उनकी इच्छा पूर्ति के
0: और
1: लिए,
0: परिवार आखिर में ना माने
1: तो वो परिवार वालों को उनकी इच्छा पूर्ति के लिए तो
0: मानना
1: ही चाहिए।
0: तो ऐसे में फिर आप आगे आते हैं, उन्हें समझाते हैं?
1: बिल्कुल, वही मैं कर काउंसलिंग का मतलब ही है। अगर उसने इच्छा जाहिर की है फिर तो परिवार वाले पहले से मोटिवेटेड होंगे, क्योंकि जब कोई व्यक्ति इच्छा जाहिर करता है, जिसको प्लेज फॉर्म कहते हैं, वो भरता है, तो उसमें उनके घर वालों के सिग्नेचर कराए जाते हैं। तो किसने प्लेज किया उसके घर वालों के सिग्नेचर ऑलरेडी
0: अच्छा।
1: है, हाँ जी, तो वो मना नहीं करेंगे,
0: नहीं करेंगे।
1: लेकिन प्रॉब्लम वहाँ थे जहाँ किसी ने इच्छा जाहिर करी नहीं लेकिन घर वाले मोटिवेटेड है, तो उस केस के अंदर घर वाले, जैसी डेथ होगी, प्लेज फॉर्म भरा है या नहीं भरा है, सिर्फ घर वाले जो भी हैं लिविंग वो टेलीफोन कर लें कि हम अपने सो एंड सो उनकी डेथ हुई है, उनके हम आंखें दान करना चाहते हैं। बस जैसे वो आएंगे, उनको प्लेटफॉर्म के ऊपर, वहाँ प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए, वहाँ पे कंसेंट फॉर्म होगा, तो सहमति पत्र जो आएगा, कंसेंट फॉर्म, उसके अंदर वो साइन कर देंगे कि हम इनकी आंखें दान करना चाहते हैं। बस सिंपल यही फॉर्मेलिटी, और कोई
0: परिवार समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझे, है ना? तो कितनी देर में ये आंखें मतलब मिल जानी चाहिए आई बैंक को?
1: देखो, मृत्यु के 6 से 8 घंटे के अंदर अगर आंखें हम निकाल लेते हैं तो वो जो कॉर्निया की क्वालिटी है बिल्कुल सेम रहती है।

0: है, तो फिर हम जिसको भी वो कॉर्निया लगाएंगे तो उसको रोशनी बिल्कुल नॉर्मल मिल जाएगी। अगर हम थोड़ा लेट कर देंगे 10-12 घंटे, तो थोड़ा सा
1: उसका असर
0: क्वालिटी,
1: उतना
0: हाँ
1: कम
0: जी,
1: हो
0: तो
1: जाता
0: क्वालिटी ऑफ कॉर्निया जिसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट कॉर्निया होती है, तो
1: जी।
0: उसकी पारदर्शिता थोड़ी कम हो जाएगी, उस वजह से जिसको लगाएंगे उसको थोड़ा उतना अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसलिए बेस्ट ये है कि हम 6 से 8 घंटे के अंदर आँखें दान कर दें, और उसके बाद फिर जब ऑपरेशन होगा तो जिसको हम लगाएंगे उसको बिल्कुल 100% नॉर्मल दिखना शुरू हो जाएगा।
1: जब आप कॉर्निया लेते हैं तो कितने लोगों का फायदा होता है?
0: तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि जैसे लोग सोचते हैं कि जैसे एक व्यक्ति 2 कॉर्निया दान करेगा तो 2 नेत्रहीन लोगों को फायदा होगा, लेकिन आजकल हमारी जो टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने बात करी कि हमारी सर्जरी की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि हम कॉर्निया की 6 लेयर होती हैं, तो हम हर लेयर को अलग कर सकते हैं, जो कि
1: अच्छा,
0: पहले
1: हर लेयर को अलग कर सकते
0: पहले संभव
1: हैं,
0: नहीं था।
1: इतनी
0: आज
1: अच्छी टेक्नोलॉजी
0: यस,
1: है।
0: तो हम हर लेयर को अलग कर सकते हैं, और उन सूक्ष्म लेयर्स को अलग करके, तो जिस व्यक्ति की जो भी लेयर खराब हो, हम सिर्फ उसको वही लेयर लगाएंगे, पूरी कॉर्निया उसको बदलने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से मान लो किसी की सिर्फ 2 लेयर खराब है, 2 चेंज करेंगे, इसकी 4 खराब है, 4 चेंज करेंगे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति जो दान करेगा 2 कॉर्निया, तो कम से कम 6 से 8 लोगों को रोशनी वो दे सकता है।
1: 6 से 8 लोगों को,
0: यस
1: तो ये तो बहुत बड़ी बात है। ये महादान आपने किया, उससे एक नहीं, दो नहीं, 6 से 8 लोगों को जो है वो रोशनी मिल जाएगी।
0: बिल्कुल
1: बहुत अच्छी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो लोग जीते जी अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, वो क्या करें?
0: तो उनको बेसिकली देखो, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उनको मोटिवेटेड होना चाहिए। फॉर्म भरें तो अच्छी बात है, नहीं भरें तो भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्म भरना नहीं है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो लोग मोटिवेटेड हैं। आसपास कहीं भी डेथ देखते हैं, अपने घर में या पड़ोस में कहीं भी, तो उनको जस्ट एक टेलीफोन करना है,
1: हाँ,
0: बस
1: मोटिवेट करें उनको।
0: बस प्लेज फॉर्म हम भर सकते हैं। प्लेज फॉर्म से हो, ठीक है, आपने कमिट कर लिया, लेकिन हम चाहते हैं कि खुद कमिट करें, साथ साथ और लोगों को कमिट कराएं।
1: जी
0: अदरवाइज प्लेज फॉर्म किसी को भरना है तो हमारे मेडिकल कॉलेज का एक ऑनलाइन वेबसाइट पर अगर जाएंगे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, तो वहाँ पे लिंक आएगा आई बैंक, आई बैंक के अंदर एक लिंक आएगा प्लेज फॉर्म, तो उसको डाउनलोड करके उसको हम भर सकते हैं।
1: या जहां भी वो हमें सुन रहे हैं,
0: हाँ जी,
1: जिस भी क्षेत्र में सुन रहे हैं, जिस भी
0: उसी,
1: शहर में,
0: यस
1: वहां जहां आसपास ऐसा कोई अस्पताल है जहां आई बैंक है, तो वहां उसे कांटेक्ट वो कर सकते
0: बिल्कुल।
1: हैं।
0: वैसे क्योंकि जैसे मान लो किसी ने चंडीगढ़ में प्लेज किया और डेथ उसकी होगी साउथ में कहीं, तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि उसकी बॉडी को हमें चंडीगढ़ लाना पड़ेगा। तो क्योंकि हम, हमारा देश सारा एक है, हमारे सारे आई बैंक भी, उनका सबका सिस्टम एक ही है।
1: वो कोऑर्डिनेशन है आप पे।
0: यस, तो अगर
1: हाँ
0: मान लो किसी की प्लेज फॉर्म चंडीगढ़ में भरा गया, डेथ मान लो तमिलनाडु में या कहीं भी साउथ में होगी, तो वहाँ पे उस शहर के अंदर जो भी आई बैंक होगा तो वो उनको कॉल करे और वहीं पर नेत्रदान कर दे, वहाँ की टीम आके उनके वहीं पर नेत्रदान ले सकती
1: जी,
0: है।
1: इसमें कोई दिक्कत नहीं
0: नहीं,
1: है।
0: बिल्कुल। तो इसलिए
1: हाँ
0: प्लेज कहीं भी करें और दान हम पूरे इंडिया में कहीं भी कर सकते हैं। तो जिस शहर में डेथ हो उसी शहर का आई बैंक है, इमीडिएटली में फ़ोन करना है और उनको नेत्रदान के लिए बुला लेना है।
1: अच्छा डॉक्टर आर्य, ये बताइए कि इस बार जागरूकता बढ़ाने के लिए, आउटरीच प्रोग्राम करने के लिए किस तरह की तैयारियां की गई हैं?
0: एक हमारा प्रोग्राम होता है हॉस्पिटल कॉर्निया रिट्रीवल प्रोग्राम,
1: जी
0: उसका मतलब यह कि हॉस्पिटल के अंदर जितनी भी डेथ होती है, क्योंकि मोस्टली डेथ आजकल हॉस्पिटल के अंदर ही होती
1: जी
0: है ना, तो जितनी डेथ हॉस्पिटल में हो ताकि वो लोग जरूर डोनेट करें, तो उसके लिए हम जितना हमारा स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ हो गया, हमारे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हो गए और बाकी पैरामेडिकल स्टाफ हो, तो उनको मोटिवेट करने के लिए लेक्चर करते हैं।
1: वहां जाते
0: हाँ
1: हैं,
0: जी,
1: उनसे संपर्क साधते
0: हाँ
1: हैं।
0: जी,
1: जी,
0: उनके ग्रुप्स के अंदर उनको बुला के लेक्चर करते हैं, प्लस उसके अलावा बाकी हमारे जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनको मोटिवेट करते हैं, ताकि वो बाकी जगह जाके वो भी इस तरह से लोगों को जागरूक करें।
1: बेसिकली है कि
0: हाँ जी,
1: जागरूक करना
0: जागरूक
1: है।
0: किया गया।
1: हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, और इतना सारा आपका काम हो रहा है। आप विशेष रूप से, मुझे लगता है कि आई बैंक वाले व्यक्तिगत रूप से इसमें हिस्सा लेते
0: हाँ
1: हैं
0: जी,
1: और अपना योगदान देते हैं, तभी जो है मिशन सफल होता है।
0: हाँ, सबको ये भी बताना है कि कोई भी व्यक्ति आंखें दान कर सकता
1: जी
0: है ना। मान लो किसी को कोई भी बीमारी हो, सिर्फ जिसको HIV हो या कुछ, अगर किसी को एड्स की बीमारी हो या हेपेटाइटिस, इनके अलावा कोई भी बीमारी हो, चाहे आपको डायबिटीज़ हो या आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो या आप चश्मा लगाते हो या आप कोई भी आँख का ऑपरेशन हो चुका हो, तो ये सारे के सारे लोग आँखें दान कर सकते हैं।
1: पर
0: और
1: डॉक्टर
0: कोई,
1: साहब, ये बताइए, शुगर के पेशेंट के बारे में कहा जाता है कहीं ना कहीं आंखों पे भी असर होता है या किसी भी ऑर्गन पे असर हो सकता है, तो ऐसे में क्या फिर आप टेस्ट लेते हैं पहले उसका?
0: तो जिसको शुगर की बीमारी होती है उसकी कॉर्निया को कुछ नहीं होता, उसका
1: अच्छा
0: रेटिना पर्दा ख़राब होता है,
1: अच्छा
0: तो हमें
1: अच्छा
0: सिर्फ कॉर्निया चेंज करना है, तो उसका
1: ओके,
0: जो जो भी डोनर होगा, अगर उसको शुगर भी था तो उसका कॉर्निया बिल्कुल नॉर्मल रहता है।
1: ये बहुत अच्छी बात बताई कि शुगर वाले की कॉर्निया खराब नहीं होती है
0: हाँ, उसका रेटिना
1: और
0: ख़राब होता,
1: वही आपको चाहिए।
0: हाँ जी, तो हमें
1: हाँ
0: कॉर्निया चाहिए, उसको नॉर्मल होता है। इसलिए इनफैक्ट सभी बीमारियों के अंदर, इनफैक्ट हम ऐसा भी देखा है कि मान

0: वैसे वाकई सर इससे बड़ा तो महादान कोई नहीं है
1: कि
0: आप अपनी आंखें दान करें और किसी के अंधेरे जीवन में रोशनी भर दें, उजियारा भर दें, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है।
1: नेत्रदान महादान,
0: बहुत अच्छी बात
1: और इसमें आपका कुछ नहीं लगना।
0: अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो नेत्र दान किए जाते हैं उनकी कोई विशेष उम्र होती है?
1: किसी भी उम्र का व्यक्ति दान कर सकता है।
0: कभी कभी हमने ये भी देखा ना कि असमय मृत्यु भी हो जाती कई बार,
1: एक साल की उम्र से लेकर 100 साल तक कोई भी आंखें दान कर सकते। कॉर्निया हमारा ऐसा बॉडी का ऑर्गन है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती, इस वजह से वो कॉर्निया एंड तक नॉर्मल ही रहता है।
0: अगर अच्छा
1: अगर उसको कोई चोट लगे तो अलग बात है, अगर मान लो उसको कोई चोट नहीं लगी,
0: उम्र का असर नहीं होता
1: उस पे। उम्र का कॉर्निया के ऊपर कोई असर नहीं होता, तो उसके कोई
0: नजर कमजोर होने का भी उस पर कोई असर नहीं
1: ना, कॉर्निया जैसा था वैसा ही रहता है, तो इसलिए कॉर्निया को हम डोनेट करके किसी भी उम्र में डोनेट कर सकते
0: हैं। तो फिर इसका मतलब ये है कि कुदरत ने भी सिस्टम बनाकर भेजा है कि भाई तू तो देख ही ले, इसके बाद तू चाहता है तो कोई और देखे, कोई और भी देख सकता है।
1: बिल्कुल
0: आपने बताया तो 100 साल का भी हो तो खराब नहीं होता
1: बिल्कुल
0: कॉर्निया।
1: और कई बार हम कॉर्निया मान लो किसी का अगर खराब भी हो तो हमारे जैसे कॉर्निया के कई सारे पेशेंट होते हैं जिनका पुतली फट गया चोट की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से। कॉर्निया मान लो जिनका कह सकते हैं कि ज़्यादा अच्छा क्वालिटी नहीं है, तो वो वाला कॉर्निया हम उनको लगाते हैं जिनका पुतली फट चुका है या चोट लगने की वजह से उनका पूरा कॉर्निया डैमेज हो चुका है। तो उन लोगों को हम इनिशियली ऐसा कॉर्निया लगाएंगे जिसका क्वालिटी ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, लेकिन बाद में जब दूसरा कॉर्निया लगेगा तो वो भी देख पाएंगे। अदरवाइज़ अगर हम इमीडिएटली कॉर्निया अगर नहीं होगा तो जिसकी पुतली फट गई तो उसकी आँख सारी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उसका रेटना और अंदर का हिस्सा सब बाहर आ जाएगा। तो इसलिए मैं एक टेम्परेरी फर्स्ट कह सकते हैं सर्जरी करनी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं थेरापूटिक कैराटोप्लास्टी, जिसके द्वारा उसको एटलीस्ट जो उसका बीमारी वाला टिश्यू था, अल्सर था, इन्फेक्शन था, वो निकाल दिया और उसकी कॉर्निया जो पुअर क्वालिटी थी वो लगा दी, आँख बच गई। फिर बाद में उसको हम जो अच्छी क्वालिटी की कॉर्निया लगाएंगे तो वो भी देखना शुरू कर देगा।
0: जी,
1: तो इसलिए कोई भी कॉर्निया चाहे क्वालिटी अच्छी ना भी हो तो वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
0: उसको आप दुरुस्त कर लेते
1: बिल्कुल दुरुस्त कर लेते हैं
0: क्योंकि टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस्ड हो गया।
1: इसलिए कोई भी व्यक्ति चाहे कॉर्निया अच्छी है खराब है, कोई भी उम्र है उसको, चाहे कोई भी बीमारी हो, हर कॉर्निया को आजकल यूज किया जा सकता है।
0: जी तो डॉक्टर आर्या आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, नेत्रदान पखवाड़ा क्यों मनाया जाता है, क्यों ये इम्पोर्टेंट है ये आपने बताया, और आपने बताया कि अब धीरे धीरे हर साल लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और जो यंग जनरेशन है उसमें तो अंधविश्वास की कोई बात ही आपको नज़र नहीं आई, ये बहुत अच्छी बात है। तो आप लगातार काम कर रहे हैं, लोगों को रोशनी देने का काम कर रहे हैं, बशर्त ये है कि लोग आपका साथ दें,
1: बिल्कुल
0: परिवार जो है वो आपका साथ दें, तो फिर हम इस मिशन में पूरी तरह से कामयाब हो सकते हैं।
1: हमारा इतना बड़ा देश है, श्रीलंका बहुत छोटा सा देश है, श्रीलंका के सारे लोग आँखें दान करते हैं,
0: सारे
1: वो धर्म की वजह से, क्या लो बुद्ध बुद्धिज्म की वजह से, जो भी उनका फेथ है वो सब दान करते हैं। इसलिए वो जो अपनी कॉर्निया एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों को भेजते हैं,
0: मतलब वहाँ बैकलॉग है ही नहीं,
1: बैकलॉग नहीं, दूसरों को भेजते हैं,
0: दूसरों को भेजते हैं।
1: और हमारा इतना बड़ा देश है तो मुझे लगता है कि अगर हमारे,
0: हमें तो नंबर फर्स्ट आना चाहिए तो हमारे दान के मामले में।
1: हमारे देश के अंदर इतनी डेथ भी होती है, अगर वो सारे के सारे आंखें दान करें तो हम भी दूसरों को, पहले तो आत्मनिर्भर बनेंगे कि हमें कॉर्निया की कमी ना हो, कोई भी हमारा ब्लाइंड ना रहे, और अल्टीमेटली हम बाकी देशों को भी मदद कर पाए, तो ये हमारी सोच होनी चाहिए। तो इसलिए हम सबको आगे आना चाहिए ताकि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति कॉर्नियल ब्लाइंडनेस की वजह से पीड़ित ना हो,
0: विश्व का कल्याण हो।

0: अच्छा डॉक्टर साहब, अब इस बातचीत के आखिर में आप हमारे श्रोताओं के नाम कोई संदेश देना चाहें?
1: मेरा ये संदेश है कि हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, और ये वाली जो मदद है कोई भी व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि इसमें आपका कुछ लगना भी नहीं है। जस्ट मृत्यु के बाद हम अपने घर वालों को जरूर बता के रखें कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरी दोनों आँखें किसी भी आई बैंक को दान कर दी जाएँ, ताकि जो नेत्रहीन लोग हैं वो देख पाएँ। तो इस मैसेज के साथ हम सबको तैयार रहना चाहिए, और जहाँ भी हम मिलें, जो भी मिले, उन सबको ये मैसेज देना भी चाहिए कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए।
0: तो दोस्तों, आप शुरुआत कर सकते हैं इस पखवाड़े में जो 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया जा रहा है। इस पखवाड़े में आप भी शपथ लें। तो श्रोताओं, ये तो थी विशेष बातचीत राष्ट्रीय पखवाड़ा जो अभियान है उसके तहत। इस बातचीत में हमारे साथ रहे डॉक्टर सुदेश आर्य, इंचार्ज ऑफ आई बैंक, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल सेक्टर 32 चंडीगढ़। शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत यहाँ पधारने के लिए।
1: धन्यवाद, सभी श्रोताओं का धन्यवाद, और मुझे पूरा विश्वास है कि सब लोग इस नेत्रदान में जुड़ेंगे। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करूँगा आकाशवाणी चंडीगढ़ का, जो कि हर साल, आई थिंक 15 साल से मैं ज़्यादा देख रहा हूँ कि हर साल ये प्रोग्राम करते हैं, और दूर दूर तक जितने लोग भी रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, उन सब तक संदेश पहुँचाते हैं, और उसका हम बेनिफिट भी देख रहे हैं कि इवन गाँव के लोग भी आजकल जागरूक हैं, वो आते हैं तो उनको भी सब मैसेज पता होता है कि आई डोनेशन क्या है। तो इस आकाशवाणी चंडीगढ़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो डॉक्टर आर्य, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पधारने के लिए। इस बातचीत में अपना तकनीकी सहयोग दिया हमारे साथी आकाश भारद्वाज ने।

अभी आपने नेत्रदान पखवाड़े के उपलक्ष्य पर ये विशेष बातचीत सुनी। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका, जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी और 1000+ विनर्स, 2 लीटर एमिस्टा टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन, आज ही खरीदे। 25 सितंबर को लकी ड्रॉ है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
3: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
2: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
3: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
2: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं। माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन करें,
3: मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
2: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी।
3: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
4: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। 11:30 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शेरो नगमा।

0: अरे भाई, क्या तुम्हें पता है कि हमारे भट्टे पर जो नया मजदूर आया है उसके हाथ पैरों पर बहुत से दाग हैं। उसे इन पर चोट लगने से भी दर्द नहीं होता।
1: अरे ये तो कुष्ठ रोग का लक्षण है, तुम उसे अभी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाओ।
2: यदि आपके आसपास किसी भी व्यक्ति में कुष्ठ रोग का कोई भी लक्षण नजर आए तो उसे तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं। यदि संदिग्ध व्यक्ति में कुष्ठ रोग पाया गया तो सरकार द्वारा सूचित करने वाले व्यक्ति को 250 रुपए दिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
3: शेर नगमा कार्यक्रम में आज मोहब्बत की बातें, मोहब्बत के लिए, मोहब्बत करने वालों के लिए, मोहब्बत के रंग ढंग सब अलग हैं, लेकिन मोहब्बत का एहसास एक ही है, वो है मोहब्बत, प्यार। किसी को अपना बना लेने की जुस्तजू है। कुछ ये भी कहते हैं दोस्तों कि मोहब्बत रंग दे जाती है जब दिल से दिल मिलता है। मोहब्बत रंग दे जाती है जब दिल से दिल मिलता है, मगर मुश्किल तो ये है, दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है।

लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सुन रहे हैं। तो आज शीर नगमा की इस महफिल को हमने सजाया है मोहब्बत के रंग से, मोहब्बत भरे अशार मोहब्बत करने वालों के लिए, मोहब्बत को महसूस करने वालों के लिए। और कहने वाले ये कहते हैं कि मोहब्बत का सिर्फ नाम सुना था, मोहब्बत का सिर्फ नाम सुना था, तुमसे मिलकर जाना कि कितनी खूबसूरत होती है।

शेर व नगमा कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं विविध भारती चंडीगढ़ से एफ एम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अपने रेडियो सेट के साथ साथ इस समय आप हमें हमारी ऐप न्यूज़ ऑन AIR और प्रसार भारती की

आसमां क्या नशा नशा सा है, बोलिए न बोलिए सब सुना।

0: कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
1: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
0: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
0: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं। माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें,
1: मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
0: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
2: शेरो नगमा प्रोग्राम का सफर जारी है और हम आपके साथ हैं। मोहब्बत की दुनिया सजाए हैं आज के इस प्रोग्राम में, आज के इस महफिल में शेरो नगमा के। एहसास

0: ये मोहब्बत के लिए बस इतना ही बाकी है, एहसास मोहब्बत के लिए बस इतना ही बाकी है, हम तेरे बगैर भी तेरे ही रहते हैं
1: दीवाना।

और दोस्तों, मोहब्बत क्या है, मोहब्बत की तासीर क्या है, तेरा मजबूर कर देना, मेरा मजबूर हो जाना।

और आखिर में दोस्तों, मोहब्बत करना या ना करना, लेकिन किसी को दुआओं में याद रखना, ये भी तो मोहब्बत है।

और दोस्तों, शेर व नगमा की आज की इस महफिल से अपने साथी अनिल पुंज को दीजिए इजाज़त। अगले सोमवार फिर होगी आपसे हमारी मुलाकात कुछ और अशार और नगमों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेरो नगमा। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। 12 बजने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, बस अब से कुछ ही पलों में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये बैठक गृह मंत्रालय के अंतर्राज्य परिषद सचिवालय द्वारा आयोजित की जा रही है और इसकी मेजबानी गोवा सरकार कर रही है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र तथा केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। गृहमंत्री आज गोवा राज्य पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज भी प्रदान करेंगे। ये सम्मान राज्य पुलिस बल के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि होगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री जेवर बेटल की आज नई दिल्ली में मुलाकात होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री बेटल की यह यात्रा दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने का अवसर है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ आज सत्य निकेतन इलाके में ढही इमारत स्थल का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि मलबे का काफी हिस्सा दशकों पुरानी बहुमंजिले भवन स्थल से हटा दिया गया है।
2: लगभग 80% मलबा हट चुका है, केवल बेसमेंट जितना मलबा रहा है। अभी इसमें 12 लोग मिले हैं, जिसमें से 6 डेड हैं और 6 अभी ठीक स्थिति में हैं। उन सभी के पेरेंट्स हमारे टच में हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, बच्चों को ठीक इलाज मिल रहा है।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि भवन के मालिक की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई।
2: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
1: इस बीच घटनास्थल पर बचाव और राहत कार्य जारी है। आज सफदरजंग अस्पताल से धौलाकुआं की ओर जाने वाले मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबार मशरिक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस के सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 परिसरों में छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने बताया कि ये मामला सांप्रदायिक सद्भाव को कथित तौर पर बढ़ावा देने संबंधी सामग्री के प्रसार और प्रकाशन तथा अवैध लेन देन के आरोपों से जुड़ा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही।

0: गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि न तो उसका निजीकरण होगा और न ही उसका महत्व कम किया जाएगा। ओपेक प्लस समूह के 7 प्रमुख देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव न करने का फैसला किया है। इन देशों में सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान शामिल हैं। कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन देशों ने वैश्विक तेल बाजार की स्थिति और संभावनाओं की समीक्षा की। ओपेक प्लस ने सितंबर में प्रतिदिन करीब 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाया था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज गिरावट देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 443 अंक गिरकर 76,000 पर और निफ्टी 138 अंक गिरकर 23,759 पर कारोबार कर रहा था। दिग्गज सिनेमाटोग्राफर टीएन कृष्णन कुट्टी का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। मलयालम सिनेमा में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। श्री कृष्णन कुट्टी ने 1960 में अपने करियर की शुरुआत उम्मा फिल्म में कैमरा ऑपरेटर के रूप में की थी। इसके बाद उन्होंने 70 से अधिक फिल्मों में सिनेमाटोग्राफर के रूप में काम किया। जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। इस महोत्सव को स्थानीय फिल्मकारों और रचनात्मक पेशेवरों को व्यापक फिल्म उद्योग से परिचित कराने और क्षेत्र में निवेश तथा रोजगार के नए अवसर पैदा करने के एक बड़े अवसर के रूप में देखा जा रहा है। 4 दिवसीय इस महोत्सव में 40 देशों की 135 फिल्में दिखाई जाएंगी। भारत ने AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्ष में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। अभी आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल, जो विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: दिल ही तो है इस फिल्म की कव्वाली। आप सुन रहे थे आशा भोसले और साथियों की आवाजों में, साहिल लुधियानवी के बोल थे, रोशन का संगीत था।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का,
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

पीएल संतोषी की रचना आपने सुनी, हेमंत कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म थी पोस्ट बॉक्स नंबर 999। और इसके पहले जो गीत आपने सुना, आशा भोसले, मुबारक बेगम और साथियों की आवाजें थीं। फिल्म थी कब हुई गवनवा हमार। मनिंद्र शुक्ला के बोल थे, इकबाल कुरैशी की तर्ज थी।

0: अपरा हाउस इस फिल्म में लता मंगेशकर की आवाज आपने सुनी, नगमा निगार मजरू सुल्तानपुरी, मौसिकार चित्रगुप्त।
1: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
2: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
1: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
2: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में पीएल संतोषी का लिखा ये गीत आपने सुना। सी रामचंद्र की तर्ज थी, फिल्म थी शिनशिना की बुबला बो। और इस गीत के पहले श्रोताओं, हमने आपको सुनवाया था जो गीत हम पंछी एक डाल के इस फिल्म से आशा भोसले और साथियों की आवाज़ें थी, पीएल संतोषी की रचना थी, एन दत्ता का संगीत था।
1: आज मौसम सलोना सलोना रे, आज मौसम

दीपक वाले जगमग जगमग हो गया मेरे मन का कोना कोना रे मन का कोना।

कवि प्रदीप की रचना थी सरस्वती देवी की तर्ज थी। अशोक कुमार, रहमत बानो और अरुण कुमार की आवाजों में आपने सुना फिल्म झूला का गीत।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में पीएल संतोषी की रचना आप सुन रहे थे। शिवराम कृष्णा का संगीत था इस गीत में। तीन बत्ती चार रास्ता इस फिल्म का गीत था।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक

0: संगीतकार उत्तम सिंह,
1: मुझको हुई ना खबर,
0: एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गटले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: दिल ही तो है। इस फिल्म में आपने सुना मन्ना डे की आवाज, साहिल ध्यानवी के बोल थे, रोशन का संगीत था।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना।

0: कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की।

ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में इसे गाया आशा भोसले ने। मजरू सुल्तानपुरी की रचना आप सुन रहे थे मेरे सनम फिल्म से, और अब आपको सुनवाते हैं जहरीला इंसान फिल्म का गीत। किशोर कुमार की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, संगीत राहुल देव बर्मन का।

0: किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ ही यादों की महफिल कार्यक्रम संपन्न होता है। श्रोताओ,
1: आप सुन रही थी कार्यक्रम

FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। श्रोताओ, इस समय 1 बजा है। अब हम आपको अपने अब से लेकर रात तक के प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों का विवरण बताएंगे। तो श्रोताओ, अब से बस थोड़ी ही देर में 1:05 पर और फिर शाम 6:10 पर आप हमारे केंद्र से प्रादेशिक हिंदी में समाचार सुन सकते हैं। आपके लिए प्रादेशिक पंजाबी समाचार भी हम रिले करेंगे अपने जालंधर केंद्र से दोपहर 1:10 पर और फिर शाम 6:20 पर भी। विविध भारती के मुंबई केंद्र से आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुरीला सफर दोपहर 1:30 पर। उससे पहले श्रोताओं, हमारे केंद्र से आप फिल्म संगीत सुनेंगे दोपहर 1:15 पर। फिल्म संगीत हम आपको शाम 5:05 पर भी सुनवाएंगे। हमारे मुंबई केंद्र से आप सुना करते हैं कार्यक्रम त्रिवेणी दोपहर 2:00।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम आपके लिए हिंदी में समाचार रिले किया करते हैं दोपहर 2:15 पर। आकाशवाणी दिल्ली से ही हिंदी में समाचार आप शाम 5 बजे भी सुनेंगे, शाम 6 बजे भी, रात 8:45 पर और फिर रात 11 बजे भी आकाशवाणी दिल्ली से ही हिंदी में हम समाचार रिले करेंगे आपके लिए श्रोताओं। फिर विविध भारती के मुंबई केंद्र से सदाबहार नगमे आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। सखी सहेली कार्यक्रम होता है हर रोज दोपहर 3 बजे, ये कार्यक्रम भी मुंबई केंद्र से ही रिले होगा। फिर शाम 4 बजे श्रोता वहीं से पिटारा कार्यक्रम होता है, आज सोमवार है और आज के दिन आप सुना करते हैं पिटारा कार्यक्रम में सेहतनामा। सेहतनामा के अंतर्गत आज आप आहार विशेषज्ञ डॉक्टर अदिति प्रभु के साथ की गई बातचीत सुन सकते हैं। हमारे स्टूडियो से हम आपके लिए प्रायोजित कार्यक्रम रिले करेंगे NCERT का उमंग शाम 5:30 पर।

हमारे केंद्र से श्रोताओं, शाम 6:30 पर आज आप सुन सकते हैं हिंदी में समाचार समीक्षा। कुछ पंजाबी गीत आपके लिए प्रसारित किए जाएंगे शाम 6:35 पर। पंजाबी गीत आप शाम 7:47 पर भी सुन सकते हैं। और श्रोताओं, पंजाबी गीतों का हमारा कार्यक्रम होता है सुर सांझ, ये आप सुन सकते हैं।

0: नहीं, रात 10:32 पर विविध भारती के मुंबई केंद्र से हम रिले करेंगे सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जयमाला शाम 7 बजे। फिर आप सुनेंगे हमारे केंद्र से प्रादेशिक मुख्य समाचार, पहले 7:45 पर और फिर रात 10:30 पर भी। मुंबई केंद्र से रात 8 बजे आप सुना करते हैं हर रोज कार्यक्रम हवा महल। आज इसमें एक झलकी होगी सेल्फी। फिर वहीं से 8:15 पर आप सुन सकते हैं कुछ नए फिल्मी गीत चित्रलोक कार्यक्रम में। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके लिए रात 9 बजे होगा। रात 9:30 पर होगा कार्यक्रम आज के फनकार, जो आप मुंबई केंद्र से ही सुना करते हैं। आज के फनकार हैं श्रोता और निर्देशक PL संतोष। और रात 10 बजे उद्घोषक की पसंद की फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा छाया गीत। तो ये था विवरण हमारे अब से लेकर रात तक की प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों का। हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं श्रोताओं। इस समय 1:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक हिंदी समाचार। इसके फौरन बाद जालंधर केंद्र से हम आपके लिए रिले करेंगे प्रादेशिक पंजाबी समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया के उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि न तो उसका निजीकरण और न ही उसका महत्व कम किया जाएगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का उद्देश्य अंतरिक्ष कार्यक्रम को सक्षम बनाना है। इसरो ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। इसलिए इन सुधारों को निजीकरण के बजाय पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार और क्षमता वृद्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। इसरो ने कहा कि परिपक्व और विस्तार योग्य तकनीकी क्षमताओं को भारतीय उद्योग द्वारा तेजी से विकसित किया जा सकता है। इससे बड़े पैमाने पर उत्पादन, व्यावसायीकरण, नवाचार और वैश्विक बाजारों तक पहुंच संभव होगी, जबकि इसरो के वैज्ञानिक और तकनीकी मानव संसाधन को उन्नत अनुसंधान, अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों और जटिल राष्ट्रीय मिशनों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास में आयोजित गोस्वामी तुलसीदास जयंती समारोह में हिसार के चंदन नगर में गोस्वामी धर्मशाला के निर्माण के लिए 31 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से समाज को मर्यादा, सेवा, कर्तव्य और त्याग का मार्ग दिखाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार संत तुलसीदास जी के रामराज्य के संकल्प को साकार करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने आयुष्मान चिरायु योजना और आवास जैसी कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास और सुशासन का लाभ पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हरियाणा सरकार द्वारा एडवांस आईटी लर्निंग में कौशल सहायता फेलोशिप योजना के तहत सफल कंप्यूटर आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा आयोजित की गई। इस योजना के तहत 1000 योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों का चयन निर्धारित पात्रता मानदंड और चयन प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। सुरक्षित कंप्यूटर आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा का सफल संचालन सूचना प्रौद्योगिकी के आधुनिक क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को कौशल प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति के अवसर प्रदान करने की दिशा में हरियाणा सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। हरियाणा सरकार ने पालिका रोल पर कार्यरत सफाई कर्मियों को हरियाणा अनुबंध कर्मचारी अधिनियम 2024 के दायरे में लाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से सफाई कर्मी

कर्मियों की सेवा 60 वर्ष की आयु तक सुरक्षित होगी और उन्हें अधिनियम के प्रावधानों के तहत लगभग नियमित कर्मचारियों के समान कई लाभ प्राप्त होंगे। सफाई कर्मचारियों को वार्षिक महंगाई भत्ता, मृत्यु व सेवा मुक्ति पर ग्रेच्युटी, मातृत्व अवकाश तथा हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के अंतर्गत एक्स ग्रेशिया वित्तीय सहायता एवं एक्स ग्रेशिया नियुक्ति जैसे विभिन्न लाभ भी प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार इन कर्मचारियों को 2000 रुपये प्रतिमाह जोखिम भत्ता देने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त अधिनियम 2024 के तहत पात्रता के अनुसार मिलने वाली राशि के अलावा 15% अधिक राशि भी दी जाएगी। हरियाणा में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की जनसेवा के उपलक्ष्य में सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत हर ब्लॉक और विधानसभा स्तर पर सेवा सेतु केंद्र स्थापित होंगे ताकि नागरिकों को मौके पर ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। इस अभियान के दौरान रक्तदान, स्वच्छता, पौधारोपण जैसी 25 सेवा गतिविधियां, युवाओं के लिए चित्रकला व भाषण प्रतियोगिता, नमो सेवा गाथा नुक्कड़ नाटक, आंगन का उत्सव और राष्ट्रीय नवाचार चुनौती आयोजित की जाएगी। अभियान का समापन 17 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित होने वाले जन सेवक महाकुंभ के साथ होगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।

नमस्कार, ए आकाशवाणी है। हुण तुसीं चंचल शर्मा तों प्रतिशत खबरां सुनो। महिला ते बाल विकास मंत्रालय आउंदे बुधवार नूं वाराणसी विच नौवां राष्ट्रीय पोषण महीना 2026 शुरू करेगा। इस साल दी मुहिम मिशन सक्षम आंगनवाड़ी अते पोषण गेड दूजे दे तहत सोधे होए पूरक पोषण प्रोग्राम दिशा निर्देशों के आधार पर लागू की जा रही है। पोषण महीना 2026 पांच मुख्य विषयां खुराक विभिन्नता अते ढुकवां प्रोटीन, आंगनवाड़ी केंद्रां च ताज़ा गर्म पकाया होया भोजन, भाईचारक भागीदारी अते जवाबदेही ते पोषण शुरुआती बचपन दा विकास ते बाल विकास लई सिक्ख्या ते केंद्रित होवेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे 2047 तक एक विकसित भारत दी बुनियाद वजों एक चंगी ते पोषित भारत दे दृष्टिकोण मुताबक पोषण मुहिम 2018 च शुरू की गई सी। इसका उद्देश पोषण नूं देश दे विकास एजेंडे दे केंद्र विच लियाउणा है। हर साल सितंबर च मनाया जाण वाला राष्ट्रीय पोषण महीना हुण एक जन अंदोलन बन गया जो औरतां, बच्चों ते किशोरां लई सेहतमंद पोषण, सेहत अते तंदरुस्ती अभ्यासां नूं उत्साहित करदा है। इस साल नौवें राष्ट्रीय पोषण महीने दा थीम साडियां आंगनवाड़ियां साडी जिम्मेवारी, जिसनूं केंद्रीय महिला ते बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शुरू कीता है। इस साल हरेक नागरिक नूं आंगनवाड़ी केंद्रां प्रति जिम्मेवारी सांझी करन दा सद्दा वी दित्ता गया। आंगनवाड़ी केंद्र देश च बच्चों लई पोषण, सेहत संभाल ते शुरुआती सिक्ख्या दे मुख केंद्र ने। पंजाब राज महिला कमिशन के चेयरमैन राजलाली गिल वालों महिलावां नाल संबंधित मसलों ते झगड़ियां के तुरंत हल लई कल 8 सितंबर नूं मौड़ मंडी विखे विशेष लोक अदालत लगाई जाएगी। जिला प्रोजेक्ट अफसर पंकज ने दस्सिया कि विशेष लोक अदालत SDM दफ्तर मौड़ मंडी विखे 8 सितंबर नूं सवेरे 10 बजे तो दोपहर 2 बजे तक लगाई जा रही है। इस विशेष लोक अदालत का मुख मकसद औरतों नाल संबंधित झगड़ियां ते वख वख मसलियां दा तुरंत आपसी सहमति नाल निपटारा करवाना होगा। इस उपराले राही औरतों नूं अपने मसले संबंधित अधिकारियों के सामने रखन ते उन्हां दे हल लई लोड़ींदी सहायता प्राप्त करन दा मौका मिलेगा। कमीशन ने समूह इलाका निवासियों ते खास करके औरतों नूं अपील की है कि जेकर उन्हां दा कोई महिला संबंधी मसला जां विवाद है तां उह इस लोक अदालत च पहुंच के फायदा उठाउण। इस मौके कमीशन वल्लों औरतों नूं उन्हां दे अधिकारां ते मसलियां दे हल लई लोड़ींदी जानकारी ते मार्गदर्शन भी दित्ता जाएगा। वधेरे जानकारी पंजाब राज महिला कमीशन की वैबसाइट psc.punjab.gov.in तों लई जा सकती है। इस दौरान पंजाब राज महिला कमिशन वालों नारी शक्ति, महिला सशक्तिकरण, सेहत ते समानता नूं समर्पित एक विशेष मैराथन शी रन्स पंजाब दा आयोजन भी 9 सितंबर नूं नवी दाणा मंडी मौड़ विखे कीता जा रहा है। जिला प्रोजेक्ट अफसर पंकज कुमार ने दस्सिया कि चेयरमैन महिला कमिशन राजलाली गिल भी इस समागम च विशेष तौर ते शिरकत करनगे। इस मैराथन राही औरतां ते बच्चों नूं तंदरुस्त जीवन शैली अपनाउण दे नाल नाल महिला सशक्तिकरण दा सुनेहा दित्ता जाएगा। इस मौके 3 किलोमीटर फन रन करवाई जाएगी, जिस विच हर उम्र वर्ग दियां औरतां, बच्चियां ते छोटे बच्चे भी हिस्सा लै सकणगे। पंजाब दे मुख चोण अफसर दे दिशा निर्देशों मुताबक वोटर सूची की विशेष तीबर सोध SIR 2026 तहत जिला फरीद

0: विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से हमारे श्रोता सुन रहे हैं कुछ फिल्मी गीत। अगला गीत सुनवाते हैं आपको, उससे पहले ये संदेश सुनिए।
1: इंटरनेट और महंगे बिल से हैं परेशान, तो लगाइए BSNL फाइबर का 495 वाला 100 Mbps प्लान। पहला महीना बिल्कुल मुफ्त, अगले 3 महीने तक हर बिल पर 100 रुपए की छूट, फ्री वाईफाई मॉडम और इंस्टॉलेशन। अभी कॉल करें या व्हाट्सएप पर हाई भेजें 1800444 पर।
0: लीजिए अब सुनिए इस कार्यक्रम का अगला गीत। SP बाला सुब्रमण्यम और आशा भोसले ने इसे गाया है। फिल्म का नाम है श्रोताओं एक ही भूल।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: आइए सुनते हैं राम बलराम फिल्म से ये गीत।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम विविध भारती की चंडीगढ़ केंद्र से बोल रही हैं श्रोताओं, FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपसे बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरीला सफ़र। ये कार्यक्रम श्रोताओं हम आपके लिए विविध भारती के अपने मुंबई केंद्र से रिले करेंगे बस थोड़ी ही देर में।
1: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तमका जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी 1,000+ विनर्स 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन 25 सितंबर नु लकी ड्रॉ होवेगा आज ही खरीदो। TNC अप्लाई।
2: अरोड़ा प्लाईवुड
3: यहाँ है PVC, WPC, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और HDHMR प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
2: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
4: किसका लिखा हुआ ये गीत था? एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि फिल्म दोस्ती में एक दोस्त रोड पर लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ाई करते हैं। जी हाँ, ये

है। एक और श्रोता लिखते हैं कि देवदास फिल्म के आखिरी दृश्य में दिलीप कुमार जी बैलगाड़ी में बेसुध पड़े हैं और लालटेन की रोशनी में गाड़ी चली जा रही है। एक और इन्होंने ही बल्कि लिखा है कि बचपन में गांव में हमारी भी बैलगाड़ी थी, बारिश में ऊपर टप्पर लगाकर शहर खरीदारी के लिए जाया करते थे। और एक और श्रोता ने लिखा है कि 20 साल बाद फिल्म में भी शमा लालटेन के रूप में दिखाई गई है। जी हाँ बिल्कुल, और गीत को भी इन्होंने याद किया है कि फिल्म में ये गीत था। आप ये नगमा सुने श्रोता और बताएं कि ये किसके ऊपर फिल्माया गया है, मतलब किन अभिनेता और अभिनेत्री पर।

आशिक फिल्म के इस गीत की डिटेल हमारे श्रोताओं ने ठीक लिखी है। राज कपूर और पद्मिनी पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। एक श्रोता लिखते हैं कि आज जो है शम्मा परवाने की बात है, ढलती रात सदियों से मोहब्बत समर्पण और वक्त के गुजरने के फलसफे को बयां करता आ रहा है। शम्मा का वजूद एक खामोश तड़प है, परवाना एक समर्पित दीवाना आशिक जो मरने की हद तक, इन्होंने अपनी बातें लिखी हैं बहुत लंबी चौड़ी। एक और श्रोता ने लिखा है कि लिखते हैं कि ढलती जाए रात इस गीत को इन्होंने लिखा है। जी हाँ, बहुत सारे गीत थे आज जो हमने इसमें सोचा था कि आपको सुनवाएंगे। देखते हैं कौन कौन से गीत हो सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि शमा और परवाने के बीच प्यार का रिश्ता अटूट निस्वार्थ और आत्मघाती प्रेम कहलाता है। शमा जलती रहती है और परवाना ये जानते हुए भी कि वो जल जाएगा फिर भी उसके प्यार में उसी तरफ खींचा चला जाता है। और एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि शाम ढले खिड़की तले और मेरे महबूब न जा, ये तमाम गीत इन्होंने सुझाए हैं और पसंद किए हैं। एक और सवाल आपसे कि जो हमने किया था कि जीवन में वो कौन है जो शमा की तरह आपके लिए रोशनी बनकर आया, आप चाहें तो बता सकते हैं श्रोताओं।

रजिया सुल्ताना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आपको बताना है श्रोताओं कि इस गीत में कलाकार कौन थे। वैसे हमारे कुछ श्रोताओं ने बताया भी है, तो हम थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे। एक हमारी और श्रोता लिखती हैं कि अंधेरी रात में शमा की रोशनी जगमगा उठी, चांदनी की तरह बिखरती उस रोशनी में प्यार वफा और समर्पण की एक अनोखी दास्तान छिपी थी। शमा और परवानी का रिश्ता सच्चे प्रेम, जुनून और तड़प की मिसाल है। कभी जफाओं की कसक, कभी वफाओं की आबरू, कभी महबूब की आगोश में बीतती रात, तो इन सभी एहसासों में प्यार अपनी पूरी शिद्दत से दिखाई देता है। शमा की तरह अपने लक्ष्य के लिए जलना और परवाने की तरह है। इसके आगे भी इन्होंने अपनी बहुत सारी बातें लिखी हैं श्रोताओं। तो आपसे हमने पूछा था कि जीवन में आपके वो कौन है जो एक शमा यानी रोशनी की तरह आया, तो आप इस बारे में लिख सकते हैं। और जलती हुई शमा एक हमने पूछी थी कि जो फिल्म गंगा जमुना का गीत हमने आपको सुनवाया था उसमें दीपक की रोशनी है, दीपक की रोशनी और शमा की रोशनी, और अगर हम झूमर की बात करें तो उसकी रोशनी, ये सभी रोशनियों में आपको सबसे अच्छी किसकी लगती है और किस रोशनी के नीचे आपने कभी कोई शाम बिताई हो, तो आप उस बारे में बता सकते हैं। यानी झूमर या कैंडल यानी मोमबत्ती या फिर दिए की रोशनी के तले कोई ऐसी सुंदर शाम बिताई हो जो आपके जहन में यादगार पल बन गई हो, तो आप ऐसी बातें हमें बता सकते हैं।

जहां आरा फिल्म का ये गीत आपने सुना मिन मुमताज पर फिल्माया गया, और इसके पहले हमने आपको सुनवाया था रजिया सुल्ताना फिल्म का गीत जयराज और निरूपा रॉय पर फिल्माया गया। ऐसा हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा भी है और बिल्कुल ठीक है। तो हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि जब मैं छोटी थी तो लैंप में पढ़ती थी, बहुत अच्छा लगता था, बहुत मज़ा आता था। हम 5 भाई बहन एक साथ बैठकर शरारतें भी बहुत किया करते थे। वो समय

दो हंसों का जोड़ा ये फिल्म थी गंगा जमुना दिलीप कुमार वैजयंती माला। इस गाने में नायिका के अपने अकेलेपन के दर्द को नायिका बताती हैं, ऐसा इन्होंने इस गीत के बारे में भी लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि शम्मा परवाना और ढलती रात तीनों मिलकर मोहब्बत की एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जहाँ इश्क सिर्फ पाने का नाम नहीं बल्कि खामोशी से मिटते जाने का हुनर है। परवाना एक पल में जलकर अपनी कहानी कह देता है मगर शम्मा पूरी रात पिघलकर भी रोशनी बांटती रहती है। शायद सच्ची मोहब्बत भी ऐसी ही होती है, एक जलता है दूसरा पिघलता है और रात चुपचाप बीत जाती है, पीछे रह जाती है बस थोड़ी सी रोशनी और बहुत सारी यादें।

ये कलाकार आपको बताने हैं श्रोताओं, और फिल्म बतानी है। एक हमारी श्रोता लिखती हैं कि लाइट चली जाती थी तब लालटेन से पढ़ाई की है। एक और श्रोता ने लिखा है कि धूल का फूल फिल्म में राजेंद्र कुमार लैंप पोस्ट के नीचे बैठकर पढ़ाई करते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि 60 के दशक में बैलगाड़ी से कई शादियों में हमने शिरकत की है, वो भी कई किलोमीटर।

राजेश खन्ना पर फिल्माया गया कटी पतंग फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि दिए की रोशनी में मेरी इनकी शादी के बाद इन्होंने लिखी है, तब बिजली नहीं थी, लालटेन दरवाजे पर जला करती थी, बाकी घर में दिए जलते थे जो मिट्टी के तेल से जलते थे। बाकी जो है एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि कटी पतंग फिल्म का ये गीत राजेश खन्ना और आशा पारेख पर फिल्माया गया और इस गीत की डिटेल लिखी है इन्होंने। अब आपको ये बताना है कि ये गीत किस फिल्म का है, किस पर फिल्माया गया।

मुगले आजम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। खूबसूरत बेहतरीन अभिनेत्री मधुबाला पर फिल्माया गया। श्रोताओ, हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि ये चिराग अंजुमन तो है बस एक शब के मेहमा, तू जला वो शम्मा ए दिल जो बुझे कभी न जल के।

अभिनेत्री चित्रा पर फिल्माया गया नूर महल फिल्म का ये गीत था सुमन कल्याणपुर की आवाज में। श्रोताओ, आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, आपके सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम सुरीला सफर आज बस यहीं तक। आज का ये सफर आपने तय किया संगीता श्रीवास्तव के साथ।

आज की त्रिवेणी पनघट पर आधारित है। पनघट गांव के जीवन का धड़कता हुआ हृदय, जहां घड़ों में जल भरना, मन की बातें छलकती, खुशी के गीत गाती सखियों की टोली, हंसी की फुहारों, चूड़ियों की खनक, पायलों की रुंझन, लंबा घूंघट तो कभी दांतों तले दबा, उसमें से झांकती कजरारी अखियां, लोक गीतों की मधुर तान से पनघट का सौंदर्य और भी निखर जाता। भोर होते ही जब पनिहारी ने अपनी खाली घड़ी लेकर पनघट की ओर बढ़ती तो लगता मानो गांव की पगडंडी पर रंग बिरंगे फूल चल पड़े हों। सखियों की दुनिया बदल जाती, घर की जिम्मेदारियों से कुछ पल दूर वे अपने सुख दुख बांटती, एक दूसरे की चुटकी लेती और खिलखिलाकर हंस पड़ती। किसी की आंखों में सपने होते, किसी के मन में विरह और किसी के हृदय में किसी अनकहे प्रेम की हल्की सी दस्तक।

ब्रज में राधा कृष्ण की प्रेम भरी हंसी टिटोली, कहीं राह रोकने की शरारत, कहीं सखियों की हंसी और कहीं आंखों ही आंखों में कहे गए प्रेम के संदेश। पनघट के आसपास के वृक्ष झूम झूम कर हर्षित होकर हवा के संग नृत्य करते, हरे पत्तों की छटा आनंद के रस में सराबोर होते, मन को आकर्षित कर जाते। पनघट के रास्ते प्रेम का सुंदर पड़ाव बन जाते और मटकी भी अपने भीतर एक प्रतीक समेट लेती। वो केवल जल से भरा पात्र नहीं, स्त्री के जीवन की जिम्मेदारियों का मानो रूपक बन जाती। सिर पर धरी मटकी संभालते हुए पनिहारिन जिस सहजता से चलती, उसमें नारी के धैर्य, संतुलन और आत्मविश्वास की झलक दिखाई देती।

समय बदला, गांव बदले और जीवन की सुविधाएं बढ़ी। घर घर नल और जल की व्यवस्था ने पनघट की आवश्यकता को कम कर दिया, लेकिन वो उस समय की याद दिलाता है जब जीवन थोड़ा धीमा था, रिश्तों में ठहराव था और छोटी छोटी मुलाकातों में आत्मीयता हुआ करती थी। लेकिन आज कुएं सूने हो गए, पनघट की चहल पहल खो सी गई, गांव की पगडंडियां भी सूनी पड़ गईं। पनघट से भरी गगरी में भरा जल शीतल मीठा किसी पथिक की प्यास बुझाने में सक्षम हुआ करता था। पनघट भी एक ऐसी स्मृति है जहाँ कभी मटकी में पानी भरता था और लौटते हुए मन में पूरा संसार भर आता था।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटल के साथ द्विपक्षीय बैठक की। कहा, जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। दिल्ली में सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हुई। एमसीडी दक्षिण जोन के उपायुक्त और 4 इंजीनियर निलंबित। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस सांसद नदीमुल हक के उर्दू दैनिक से जुड़े 7 परिसरों में धन शोधन के आरोप में छापेमारी की। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान। और टेनिस में आयना सबालिंका और कार्लोस अल्काराज अमरीकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में केंद्र और सदस्य राज्यों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें समन्वय और संयुक्त कार्रवाई की आवश्यकता वाले मामलों पर विशेष बल दिया गया।
1: बैठक में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर यानी राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में शामिल होंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वे वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। वे 20,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित 326 किलोमीटर लंबे पश्चिमी माल गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंडों को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा और टांडा रोड के बीच एक नई रेल सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। इससे वडोदरा, छोटा उदयपुर और अलीराजपुर जिलों के लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने युवाओं से मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ दृढ़ रुख अपनाने और नशा मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया है। गुवाहाटी विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में प्रतिबद्ध रहने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति ने उपस्थित सभी लोगों को नशामुक्त समाज के निर्माण की दिशा में काम करने की शपथ भी दिलाई। उपराष्ट्रपति ने तमिल साहित्य कृतियों का असमिया में अनुवाद करने की विश्वविद्यालय की पहल की प्रशंसा की। उन्होंने गुवाहाटी विश्वविद्यालय में 110 करोड़ रुपए की अवसंरचना विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद संबंध है। डॉ

0: जयशंकर ने ये बात आज नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री, विदेश मामलों तथा व्यापार मंत्री ज़ेवियर बेटल से मुलाकात के दौरान कही। विदेश मंत्री ने मुक्त व्यापार समझौते को दिए गए मजबूत समर्थन के लिए लग्जमबर्ग का आभार व्यक्त किया।
1: हमारा रिश्ता बहुत भरोसेमंद है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हमने बहुत कुछ किया है और हम आगे भी और अधिक करने का भरोसा करते हैं, खासकर आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, विविधता लाने और भविष्य में मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी मिलने की संभावना के संदर्भ में।
0: डॉक्टर जयशंकर ने इस साल की शुरुआत में अपनी लग्जमबर्ग यात्रा को याद किया। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों पक्षों के नेताओं ने कई बार एक दूसरे से बातचीत की है। विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग दोनों देशों के संबंधों का आधार रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश अंतरिक्ष, डिजिटल और हरित प्रौद्योगिकियों में सहयोग की संभावनाओं को भी तराश रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि कोविड महामारी के बाद भारत और लग्जमबर्ग के बीच स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग में वृद्धि हुई है। इस अवसर पर श्री बेटल ने कहा कि लग्जमबर्ग का भारत के साथ विश्वासपूर्ण और ईमानदार संबंध है। श्री बेटल 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आज तड़के नई दिल्ली पहुंचे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया और सुरक्षा उपायों तथा जारी बचाव अभियान की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि मलबे का 80% हिस्सा दशकों पुराने बहुमंजिले भवन स्थल से हटा दिया गया है। हादसे में मरने वालों की संख्या 7 हो गई है और 3 की हालत गंभीर है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि भवन के मालिक की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई।
3: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
0: दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी आज दुर्घटना स्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम अभियान में निरंतर काम कर रही है।
4: माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमिश्नर साहब को और चीफ सेक्रेटरी साहब को आदेश दिया है, जितने अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेवारी थी चाहे वो किसी भी रैंक का हो उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए, सख्ती से कार्रवाई की जाए। जो बच्चे हैं यहाँ से उनको अकोमोडेट किया गया अलग अलग जगह पर और आगे के लिए भी जितनी पब्लिक यूटिलिटीज हैं उनको अपना स्ट्रक्चरल ऑडिट देना होगा ताकि ये मन मर्जी से बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ ना कर पाए।
0: इस बीच दक्षिण जोन के एमसीडी उपायुक्त राकेश कुमार, अधीक्षण अभियंता रणवीर सिंह, कार्यकारी अभियंता ललित कुमार, सहायक अभियंता सुनील चौहान और एक कनिष्ठ अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। भवन मालिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि दिल्ली में अवैध 5 मंजिला भवनों को तत्काल सील करने के निर्देश जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया है कि मलबे की भारी मात्रा के कारण बचाव अभियान शाम तक जारी रहने की संभावना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में श्री बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ बचाव अभियान के लिए विशेष और आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर रहा है।
5: इसमें मतलब स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू के ऑपरेशंस में बेसिकली ब्रीचिंग सिस्टम, कटिंग सिस्टम यूज करते हैं, जो है इक्विपमेंट्स है सीमेंट और कंक्रीट काटने के लिए, लिफ्टिंग इक्विपमेंट होते हैं इनको स्लैब्स को रिमूव करने के लिए, इन्फ्लेटेबल बैग्स वगैरह भी है जो इस्तेमाल करते हैं, और शोरिंग सिस्टम है ये हाइड्रोलिक शोरिंग है, वुडन शोरिंग है। ये डिपेंड करता है किस तरह का वहाँ पर स्ट्रक्चर है, क्या रिक्वायरमेंट है वो करती है, और डिटेक्शन सिस्टम इसमें कैनाइन या लाइट डिटेक्टर्स इक्विपमेंट वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबार मशरिक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस के सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 परिसरों में छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने बताया कि यह मामला सांप्रदायिक वैमनस्य को कथित तौर पर बढ़ावा देने संबंधी सामग्री के प्रसार और प्रकाशन तथा अवैध लेन देन के आरोपों से जुड़ा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा है कि स्वच्छ वायु एक मूलभूत आवश्यकता है। नई दिल्ली में आज स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में न्यायमूर्ति श्रीवास्तव ने कहा

0: स्वच्छ वायु जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: ये उन प्रयासों को पहचानने के लिए है जो पूरे देश में विभिन्न शहरों और वार्डों द्वारा ये सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं कि हवा की गुणवत्ता बनी रहे और प्रदूषक तत्व PM10 तथा PM2.5 का स्तर उन सीमाओं तक नीचे लाया जाए जो नियामकों द्वारा तय की गई है। स्वच्छ हवा सिर्फ एक आकांक्षा नहीं है बल्कि ये एक व्यवहारिक लक्ष्य है जिसे समर्पित प्रयासों, उचित योजना और जमीनी स्तर पर प्रभावी काम के माध्यम से हासिल किया जा सकता है।
0: केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत में चिकित्सा पर्यटन में आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की बड़ी क्षमता है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा और कल्याण एक्सपो संजीवनी 2026 में श्री गोयल ने कहा कि भारत अपनी मजबूत चिकित्सा व्यवस्था के जरिए दुनिया की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत को उच्च गुणवत्ता, पारदर्शिता और मरीजों की जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए वैश्विक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए मानक स्थापित करने चाहिए। श्री गोयल ने बताया कि पिछले 7 वर्ष में 35 लाख अंतर्राष्ट्रीय मरीजों ने भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध है।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में कल तक गरज और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। आज शाम दिल्ली के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय है। राज्य में अगले 4 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट है। एक रिपोर्ट।
3: प्रदेश के ऊपरी हिस्से में बने 2 मॉनसून सिस्टम ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। मौसम केंद्र भोपाल ने रीवा और सागर संभाग के 6 जिलों निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं इंदौर, उज्जैन संभाग समेत प्रदेश के करीब 40 जिलों में हल्की से तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश का असर राजधानी भोपाल में भी साफ नजर आया। यहां कलियासोत बांध के 2 गेट एक बार फिर खोलने पड़े। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: बिहार में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर है।
4: पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार समेत 12 जिलों की 10 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है। इधर गंगा के डाउनस्ट्रीम में हाथीदह, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर और भागलपुर में नदी के रौद्र रूप से भयावह बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। पुनपुन और सोन नदी में अभी भी उफान जारी है। पूर्व मध्य रेलवे ने पुनपुन रेल पुल संख्या 21 पर सोन नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण आज भी 10 मेमू रेलगाड़ियों के परिचालन को रद्द कर दिया है। इस बीच आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने मुंगेर में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों की हर प्रकार से मदद की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: उधर नेपाल तिब्बत में आई भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1355 हो गई है। सबसे अधिक मौतें चितवन में 363 हुई है। 26 अगस्त को नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के लिए आज नेपाल में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 डूरंड कप के विजेता टीम वेस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब को राष्ट्रपति कप प्रदान किया। टेनिस में आरना सबालिंका और कार्लोस अल्काराज अमरीकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में बेलारूस की शीर्ष वरीयता प्राप्त आरना सबालिंका ने अमरीकी खिलाड़ी टेलर टाउनसेंट को हराया। पुरुष सिंगल्स में स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने अमरीका के टॉमी पॉल को पराजित किया। भारत ने AFC Under-20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्ष में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। AFC Under-20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लोक अदालत त्वरित किफायती

0: और सुलभ न्याय विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 01123140812371717 और 23314444। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटल के साथ द्विपक्षीय बैठक की। कहा, जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। दिल्ली में सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हुई। एमसीडी दक्षिण जोन के उपायुक्त और 4 इंजीनियर निलंबित। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस सांसद नदीमुल हक के उर्दू दैनिक से जुड़े 7 परिसरों में धन शोधन के आरोप में छापेमारी की। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान। और टेनिस में अरेना सबालेंका तथा कार्लोस अल्काराज अमरीकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
2: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
1: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
2: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेलुलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

0: दान सिंह का सर्वधिकया ये गीत आपने सुना, आनंद बख्शी की रचना थी, मुकेश की आवाज में ये नगमा था माय लव फिल्म से।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई गांवों में खिली गलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

गंगा की लहरें फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजों में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, चित्रगुप्त का संगीत। सदाबहार नगमे कार्यक्रम की यही है श्रोताओ आखिरी पेशकश। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं।
3: निकल जाओ इस घर से, तुम्हें कुष्ठ रोग है। अगर तुम इस घर में रही तो हम सबको भी कुष्ठ रोग हो जाएगा।
4: अरे भैया, आप भाभी को घर से क्यों निकाल रहे हैं? इससे तो आपका परिवार टूट जाएगा। क्या आपको पता नहीं है कि कुष्ठ रोग अन्य बीमारियों की तरह ही है? इसका इलाज MDT से संभव है। भाभी को आज ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं और वहां उनका इलाज करवाएं।
3: स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।

0: ही सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। चंचल जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी आपको और सभी सुनने वालों को मेरा यानी चंचल वर्मा का नमस्कार। और हम आ गए हैं आज बहुत सारे विषय लेकर, कुछ व्यंजन लेकर और कथा सुधा लेकर।
1: बिल्कुल, वैसे हम ले तो आए हैं लेकिन यहाँ पर एक बात कहना चाहते हैं सबसे पहले कि कोई भी मंजिल पाने के लिए, किसी भी लक्ष्य तक पहुँचने के लिए, सफलता तक पहुँचने के लिए संघर्ष बड़ा जरूरी होता है और संघर्ष की कहानी बहुत मायने रखती है। यूं ही कोई प्राप्य नहीं होता है।
2: बिल्कुल, मेहनत तो हर कोई करता है लेकिन वो मेहनत भी कहते ना कि संघर्ष उसमें बहुत है। मेहनत अलग चीज हुई, संघर्ष अलग है। और हर इंसान मेहनत तो करता ही है, चाहे वो छोटी से छोटा श्रम हो, परिश्रम हो, लेकिन कुछ लोग जब बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निकलते हैं तो कई सारे संघर्षों से होकर ही वो गुजरना पड़ता है। और जब भी हम बहुत सारे सफल लोगों की कहानियां सुनते हैं ना तो पता लगता है कि कितना संघर्ष उनके जीवन में रहा।
1: और संघर्ष जो कहा जाता है कि सोना जितना तपाया जाता है उतना ही खरा होता है, तो जितना आप संघर्ष कर लेंगे, जितनी मेहनत कर लेंगे, उतनी ही आसानी से आपको आगे चलकर जीवन यापन करना होगा, मतलब सफलता आपको मिलेगी। अब हमारे श्रोता क्या कहते हैं इस बारे में, अपने संघर्ष की कहानी वो हमें बता सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, और कैसे उन्हें सफलता मिली, और उन्हें ही नहीं उनके घर वालों को, उनके बच्चों को और उनके परिजन मित्रों को।
2: और वो ये भी हमें बता सकते हैं कि क्या किसी की सफलता ने उनको प्रेरित किया, उनके संघर्ष की कहानी ने उनको बहुत सारी प्रेरणा दी जिसको सुनकर वो अपने जो भी मुश्किलें आ रही थी उनसे उबर कर आगे बढ़ पाए।
1: अच्छा, एक बात बताइए चंचल जी कि पिछले दिनों आपने आसमान तले कब आप यूं ही खड़ी रही और आसमान, नीला आसमान कब देखा? वो धुंधला वाला नहीं, नीला नीला आसमान जो कहा जाता आसमानी रंग, वैसा आसमान देखा?
2: आसमान का आसमानी रंग ना आजकल बहुत सारा जो प्रदूषण है उसके आगे कहीं धुंधल का सा छा गया है, वो दिखाई ही नहीं देता। और कई बार जब हम छत पर सोया करते थे तारों की छाव में, वो तारों की छाव भी खासतौर पर महानगरों में

0: ना तारे नजर ही नहीं आते हैं, अगर नजर आएंगे भी ना तो रात के 1-2-2.5 बजे के बाद में, जब थोड़ा सा पॉल्यूशन बिल्कुल कम हो जाता है ना, तब आपको कहीं थोड़ा सा आसमान साफ नजर आता है।
1: महानगरों से अगर हम किसी गांव की ओर जाते हैं
0: हाँ
1: तो फिर ऐसे लगता है कि आसमान बिल्कुल सामने
0: हाँ
1: नीचे उतर आया है और तारे झिलमिल झिलमिल तारे एकदम चमकते हुए नजर आते हैं। और महानगरों में आप पूरी अपने मुंडी को ऊपर कर दें तब भी दिखाई नहीं पड़ते हैं, तारे छुपे रहते हैं। तो स्वच्छ वायु और नीले आकाश का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है आज, 7 सितंबर को इसे खास तौर से याद किया जाता है।
0: बिल्कुल, और आज वायु प्रदूषण के कारण सिर्फ पर्यावरण की समस्या नहीं, बहुत सारी स्वास्थ्य की समस्या और बहुत सारे देशों में अर्थव्यवस्था और विकास को भी चुनौती मिल रही है।
1: तो इस बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे आज अपने प्रोग्राम के दौरान, और कुछ व्यंजन की बातें भी तो होंगी।
0: बिल्कुल, आज से हम शुरू कर रहे हैं, सितंबर का महीना शुरू हो रहा है, और कश्मीर के जो व्यंजन की बात होगी तो दमालू भाई पंजाबी भी होते हैं लेकिन दमालू कश्मीरी भी होते हैं, तो कश्मीरी दमालू की रेसिपी की आज बात की जाएगी।
1: बिल्कुल, और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस है, इसकी भी चर्चा करेंगे हम। और अब क्या एक गाना सुन लिया जाए?
0: पहले गीत सुन लेते हैं।

0: न ये आसमां था न ये जमी थी, भाई आसमान की तलाश कौन नहीं करता है।
1: बिल्कुल, ये उन दिनों की बात हो गई ना जब प्रदूषण बहुत ज्यादा नहीं था, तब ऐसी जमीन और आसमान नहीं थे, और अब ये जमीन आसमान हर जगह प्रदूषण ही प्रदूषण नजर आता है। हालांकि स्वच्छ हवा हमारा जन्म

0: अधिकार है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व की 99% जनसंख्या ऐसी है जो ऐसी ही तरह की हवा में सांस ले रही है जहां बहुत सारा प्रदूषण है। और इस नुकसान से खुद को और आसपास के वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए हम सभी को कुछ बातें समझनी जरूरी हैं।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं।
0: और हम जो कर सकते हैं वो ये है कि वायु को शुद्धता रखने के लिए जो है हम कचरा जलाना बंद करें, विद्युत कचरे का निस्तारण करें, सप्ताह में एक दिन वाहन मुक्त दिवस मनाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर ईवी को अपनाएं और सहवाहन यात्रा को अपनाएं कि अगर हमारे उसी रास्ते से कोई जा रहा है तो हम उसको साथ में ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और एयर की क्वालिटी इंडेक्स को देखने की आदत भी बनाएं।
1: चंचल जी, जो सूक्ष्म धूल कण होते हैं हमारे फेफड़ों से सीधे रक्त में चले जाते हैं, इससे केवल श्वास रोग ही नहीं होता है बल्कि हृदय रोग होता है, मानसिक अवसाद भी बढ़ता है। जब तापमान बढ़ता है तो धरातल के निकट ओजोन परत अधिक बनती है, लू और स्थिर वायु की स्थिति में प्रदूषक जमीन के पास ही फंस जाते हैं जिससे हवा और ज्यादा विषैली हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि जलवायु परिवर्तन वायु प्रदूषण को बढ़ाता है और वायु प्रदूषण जलवायु परिवर्तन को। दरअसल संयुक्त राष्ट्र ने इन्हीं मुद्दों पर ध्यान खींचने के लिए 7 सितंबर को स्वच्छ वायु और नीले आकाश का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। पहली बार यह दिवस 2020 में मनाया गया था, ये इस बार 7वां वर्ष है
0: और 2026 में इसकी जो थीम रखी गई है क्लीन एयर फॉर क्लाइमेट एक्शन, यानी कि जलवायु कार्यवाही के लिए स्वच्छ वायु होना जरूरी है। इसका मतलब यही हुआ कि वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन दो अलग चुनौतियां नहीं बल्कि दोनों का एक ही मतलब है। गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों का प्रदूषण, पराली जलाना, ये हमारे हवा को भी खराब करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ा देते हैं।
1: जबकि हवा हम सबके लिए जरूरी है, बिना हवा के हम जी नहीं सकते हैं, तो हम सबकी जिम्मेदारी भी तो बनती है कि हम याद रखें कि स्वच्छ वायु विलासिता नहीं है बल्कि हमारे भविष्य में किया गया निवेश है। और स्वच्छ वायु और नीला आकाश तभी होगा जब स्वस्थ विकास होगा। और हम सब की निजी तौर पर भी जिम्मेदारी बनती है, हमारे हाथ में जो कुछ है वो हम कर सकते हैं। कम से कम इर्द गिर्द पौधारोपण तो कर सकते हैं, पौधे लगाएं तो शायद थोड़ी बहुत शुद्ध हवा आपको मिल सकती है। फिलहाल कथा सुधा सुनते हैं।
2: कथा सुधा भाव भरी कहानियों का सागर जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में आज प्रस्तुत है भगवती चरण वर्मा की कहानी वरना हम भी आदमी थे काम के।
4: लोग मुझे कवि कहते हैं और गलती करते हैं। मैं अपने को कवि समझता था और गलती करता था। मुझे अपनी गलती मालूम हुई मियां राहत से मिलकर, और लोगों को उनकी गलती बतलाने के लिए मैंने मियां राहत को अपने यहां रख छोड़ा है। मियां राहत वास्तव में कवि हैं, वो नामी आदमी नहीं है। उनका कोई दीवान अभी तक नहीं छपा और शायद कभी छपेगा भी नहीं। मुशायरे में वो नहीं जाते, या यूं कहिए कि मुशायरों में वो नहीं पढ़ते। एक बार मुशायरे में उन्होंने अपनी गजल पढ़ी तो उनको इतनी दाद मिली कि बेचारे घबरा गए और उस दिन से मुशायरे में न पढ़ने की कसम खा ली। और दूर की नहीं हाँकते पर फिर भी कवि हैं, इतने बड़े कि आजकल के नामी नामी शायर सब एक साथ उन पर निछावर किए जा सकते हैं। यदि आप 40-50 साल के एक ऐसे आदमी को मेरे बंगले के बारामदे में देखें जो लंबा सा और किसी हद तक मोटा सा कहा जा सके, जिसका चेहरा गोल भरा हुआ और उस पर चेचक के दाग, मूछ नदारत लेकिन दाढ़ी तोंद तक पहुंचती हुई, सिर पर पट्टे और बाल बीच से खिंचे हुए, आंखें बड़ी बड़ी ऊपर उभरी हुई और उनमें सुरमा लगा हुआ, चिकन का कुर्ता और लंकलाट का गरारेदार पजामा पहने हुए हो तो आप समझ लो कि यही मियां राहत हैं। वो आपसे झुककर सलाम करेंगे, अदब के साथ आपका नाम पूछेंगे, आपको कुर्सी पर बैठलाकर मुझे आपकी इत्तिला देंगे और फिर धीरे से वहां से खिसक जाएंगे। आप उनको मेरा नौकर किसी भी हालत में नहीं समझ सकते और मैं उनसे मालिक का बर्ताव करता भी नहीं हूं। मैं उनकी इज्जत करता हूं, बुजुर्ग की तरह उन्हें मानता हूं। मियां राहत से मेरी मुलाकात 3 साल पहले हुई थी। यूं तो इसके पहले भी मैं उन्हें देखता आता था, पर उस समय मुझे उनके नाम और उनकी खूबियों का बताना था। इलाहाबाद के स्टैनली रोड और कैनिंग रोड के चौराहे पर खाकी वर्दी पहने लाल पगड़ी बांधे हुए मियां राहत को मैंने सवारियों को रास्ता बतलाते हुए देखा था। इक्के वाले झुककर मियां राहत को सलाम करते थे और उनकी कुशल क्षेम पूछते थे और मियां राहत मुस्कुराकर उन सबको जवाब देते थे। साथ ही इक्के वाले और तांगे वाले उल्टे सीधे दाएं बाएं जहां से तबीयत होती थी इक्का तांगा ले जाते थे। मुझे शक था कि मियां राहत शायर अवश्य होंगे। कभी कभी सवारियों को अपने भाग्य पर छोड़कर मियां राहत एक नोटबुक और एक पेंसिल लिए हुए चौराहे के एक कोने में नजर आते थे। कभी कभी वो अपनी पेंसिल से नोटबुक में कुछ दर्ज भी कर लेते थे। पहले तो मैंने समझा मियां राहत किसी का चालान कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने उनका गुनगुनाना सुना तो बात समझ आ गई। उस दिन मैं सिविल लाइंस में घूमने जा रहा था। शाम का समय था। इलाहाबाद के शौकीन रईस अपनी अपनी मोटरें लेकर घूमने को निकल पड़े थे। स्टैनले रोड और कैनिंग रोड के चौराहे पर जब मैं पहुंचा तब पैर आप ही आप रुक गए। आंखों ने मियां राहत को ढूंढ ही तो निकाला। एक किनारे खड़े हुए मियां राहत कागज पर अपनी पेंसिल चला रहे थे। रुक कर मैं राहत को देखने लगा। इसी समय चौक की तरफ से कार तेजी से आई और अपनी दाहिनी ओर मियां राहत पर चढ़ती हुई आई। कार की स्पीड 60 मील प्रति घंटे से कम ना होगी। मियां राहत अपनी नोटबुक और पेंसिल के साथ इतने मशगूल थे कि उन्हें कार के आने की जरा भी खबर ना थी। मैंने खतरे को देखा और जोर से चिल्ला उठा, मियां भागो नहीं तो जान गई। मियां राहत उछले, लेकिन कार इस तेजी के साथ चल रही थी कि उनके हटते हटते उसके अगले मडगार्ड का झोंका मियां राहत को लग ही तो गया और राहत लाहौल विला कुबत कहते हुए जमीन पर आ गए। मैं दौड़ा और कार भी थोड़ी दूर चलकर रुक गई। मैंने मियां राहत को उठाया, चोट ना आई थी, सिर्फ घुटने और कोहनी कुछ छिल गए थे। उठते ही मियां राहत ने अपनी पगड़ी दुरुस्त की और वर्दी से धूल झाड़ी। उस समय कार से एक 24-25 वर्ष की युवती उतरकर मियां राहत के पास आई। बहुत सुंदर, गोरी और यौवन भार से लदी हुई। मुस्कुराते हुए उसने मियां राहत से पूछा,
5: ओहो, अरे आप ठीक तो हैं? चोट तो नहीं लगी?
4: मियां राहत ने प्रायः 10 सेकंड तक बड़ी गंभीरता पूर्वक उस युवती को देखा। इसके बाद वो भी मुस्कुराए।
6: नहीं, चोट तो ऐसी कोई लगी नहीं, लेकिन जरा देखभाल कर मोटर चलाया कीजिए।
4: युवती ने 5 रुपए का नोट मियां राहत को देते हुए कहा,
5: वो क्या है ना कि अभी हाल ही में मोटर चलाना सीखी है। एक मिनट, लो ये 5 रुपए, अपने बचने की खैरात बांट देना।
4: अपने हाथ हटाकर जेब में डालते हुए मियां राहत ने अपना मुंह फेर लिया।
6: मिस साहब, मेरी क्या, मैं तो आप लोगों का गुलाम हूं। आप लोगों पर अपनी जान न्योछावर करने में भी मैं फख्र समझूंगा। आप ही अपनी इस खुशकिस्मती पर कि इस चौराहे पर मैं था, ये खैरात बांट दीजिएगा।
4: वो युवती मुस्कुराती हुई चल दी। मियां राहत ने उसे झुककर सलाम किया। इसके बाद उन्होंने अपनी नोटबुक और पेंसिल उठाई। मैंने पूछा, मियां तुमने इनका चालान क्यों नहीं किया? मियां राहत बोले,
6: क्या करूं बाबू साहब, दिल गवाही नहीं देता। इन परिजादों की तो परस्तिश करनी चाहिए।

0: और आप चालान करने की बात करते हैं।
1: इतना कहकर मियां राहत और कोने में खिसक गए और नोटबुक और पेंसिल का झगड़ा सुलझाने लगे। मैं वहां से चल दिया, पर चलते चलते मुझे ये दो पंक्तियां सुनाई पड़ी जो शायद मियां राहत ने उसी समय बनाकर नोटबुक में दर्ज की थी। किसी हसीन की मोटर से दब के मर जाना, किसी हसीन की मोटर से दब के मर जाना, ये लुत्फ यार हमारे नसीब ही में ना था। न जाने क्यों उस दिन के बाद से मेरे हृदय में मियां राहत के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। मियां राहत मेरे यहां प्रायः आया करते थे और घंटों मुझे अपनी कविता सुनाते थे। मैं उनकी कविता समझता भी था और उनकी दाद भी देता था। इस घटना को हुए 2 मास हो गए थे। सत्याग्रह संग्राम जोर से चल रहा था। कई दिनों से मियां राहत मेरे यहां ना आए थे। एक दिन शाम के वक्त बरामदे में बैठा हुआ एक किताब पढ़ रहा था कि मियां राहत आए। उनकी मुद्रा देखकर मैं घबरा गया। आंखें दबदबाई हुई, चेहरा पीला और पैर लड़खड़ा रहे थे। मैंने पूछा, मियां राहत खैरियत तो है? ये तुम्हारी क्या हालत, क्या बीमार तो नहीं रहे? कुर्सी पर बैठते हुए उन्होंने कहा,
0: बाबू साहब, बाबू साहब।
1: इसके बाद वो लगातार ठंडी सांस भरने लगे। मैं वास्तव में घबरा गया था। मैंने पूछा, क्या कुछ तबीयत खराब है?
0: नहीं।
1: मियां राहत ने ठंडी सांस ली। तुम्हारे बीवी बच्चे तो अच्छी तरह हैं?
0: हाँ।
1: राहत ने फिर एक ठंडी सांस ली। अरे भाई, कुछ बतलाते क्यों नहीं कि क्या हुआ? मियां राहत ने बहुत करुण स्वर में आरंभ किया,
0: बाबू साहब, उस दिन की बात तो आपको याद है ना? जिस दिन मैं मोटर से दबते दबते बचा था।
1: हाँ हाँ, भला उस दिन की बात मैं भूल सकता हूँ?
0: बाबू साहब, अब कैसे बताऊं, उस दिन वो जो मिस साहब मोटर चला रही थी, वो, अरे क्या बताऊं, वो मिस साहब एक वो जो बड़ी पार्टी है ना, पॉलिटिकल पार्टी, उस पार्टी में काम करती है।
1: हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, उनका नाम सुशीला देवी है ना?
0: है? बाबू साहब, यही नाम है। आज वो गिरफ्तार हो गई।
1: अरे तो फिर इससे क्या?
0: अब क्या बतलाऊं बाबू साहब, अरे मुझे भी दरोगा साहब के साथ उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जाना पड़ा था।
1: मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मियां राहत रोने वाले हैं। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद मियां राहत ने फिर कहा,
0: बाबू साहब, ये सरकारी नौकरी बड़ी खराब है। इसमें अपनी रूह को चांदी के चंद टुकड़ों पर बेच देना पड़ता है। जानते हैं बाबू साहब, आज मैंने अपनी रूह का गला घोटकर कितना बड़ा गुनाह किया।
1: मैंने कहा, मियां राहत, इस सोच विचार से कुछ फायदा नहीं। तुम नौकर हो, तुमने अपना फर्ज अदा किया है, इसी के लिए तो तुम तनख्वाह पाते हो। मियां राहत चिल्ला उठे,
0: मैं नहीं चाहता ये तनख्वाह। इस गुलामी से मैं आजिज आ गया हूं।
1: मैंने देखा मियां राहत की भावुकता जोरों के साथ उमड़ी हुई है और रंग बिगड़ा हुआ है। मैंने कहा, मियां तुम्हारी बीवी हैं, बच्चे हैं, उनका पेट भरना तुम्हारा फर्ज है। उनसे भी कभी पूछा है कि वे तनख्वाह चाहते हैं या नहीं? जाओ अपना काम करो। बीवी बच्चों का नाम सुनते ही मियां राहत की उमड़ती हुई भावुकता पर ब्रेक लग गया।
0: क्या करूं बाबू साहब, कुछ समझ में नहीं आता।
1: इस बार उन्होंने एक बहुत गहरी सांस ली और उनकी आंखों से 2 आंसू टपक पड़े। दूसरे दिन शाम के समय जब मैं काम से लौट रहा था तो मियां राहत के मकान के सामने से निकला। वहां जो दृश्य देखा वो जीवन भर कभी ना भूलूंगा। मियां राहत जमीन पर सिर झुकाए बैठे थे और उनकी बीवी उनके सिर पर बिना गिने हुए तड़ातड़ चप्पलें लगा रही थी। बीवी रो रो कर कह रही

0: ये थे। अरे
1: अरे निगोड़ा कलुहा कहीं का, नौकरी छोड़ाया हम लोगों को भूखा मारने के लिए। भूखा मारेगा हम लोग क्या खाएंगे, बच्चे कैसे रहेंगे। ले नौकरी छोड़ने का मजा ले, ले मजा ले।
2: मियां राहत की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे और वो ये शेर बेर बेर गा गा कर पढ़ रहे थे।
3: हाय, इश्क ने हमको निकम्मा कर दिया, वरना वरना हम भी आदमी थे काम के। हाय हाय ये इश्क।
4: आज आपने सुना कथा सुधा में भगवती चरण वर्मा की कहानी वरना हम भी आदमी थे काम के। भाग लेने वाले कलाकार जी श्याम, जयंत पात्रिकर, नेहा देसाई और ममता सिंह। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। कथा सुधा सुन रहे थे श्रोता अभी, और अब गाना सुनते हैं ये।

0: सिखियां और सखा ये गाना सुन रहे थे। अब चंचल जी घड़ी की ओर देख रही हैं कि ये ब्रेक का समय हो गया।
1: हाँ,
0: है तो लेते हैं।
1: अंतराल का समय हो गया है और अंतराल के बाद हम फिर आएंगे बातें करने।
0: छोटा सा ब्रेक।

0: विविध भारती से यह कार्यक्रम सखी सहेली
1: और गीत ये कथा सुधा से पहले हमने बात की थी स्वच्छ वायु नीले आकाश के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। आज तीन बड़े अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं यानी कि 7 सितंबर को। एक है विश्व ड्यूशेन जागरूकता दिवस और ये हर साल 7 सितंबर को हम मनाते हैं। ये एक पेशीय दुपोषण का अनुवांशिक दुर्लभ रोग है और इसमें क्या होता है कि शरीर में डिस्ट्रोफिन नाम का प्रोटीन है वो नहीं बनता जिसकी वजह से मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं और मुख्य रूप से ये बीमारी जो है लड़कों को या पुरुषों को प्रभावित करती है और लड़के अधिकांश 15 वर्ष की आयु तक चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं और इस दिन का उद्देश्य यही है कि इसके बारे में जागरूकता फैलाई जा सके ताकि जो उपचार है वो भी समय रहते किए जा सके।
0: बिल्कुल। और चंचल जी आज अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस भी है, 7 सितंबर है। 7 सितंबर 1923 को वियना में अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस आयोग बना था जिसे आज हम इंटरपोल के नाम से जानते हैं। इसी ऐतिहासिक याद के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2022 में प्रस्ताव पारित किया और 2023 से हर बरस 7 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है।
1: और ममता जी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अपराध बढ़ रहे हैं और अपराध अपनी कोई सीमा नहीं देखते, साइबर अपराध है, मानव तस्करी, मादक पदार्थों के अपराध हैं, आतंकवाद है, ये एक देश से शुरू होते हैं और दूसरे देश में जाकर समाप्त होते हैं। तो एक देश की पुलिस अकेले वहां कुछ नहीं कर पाती, तब ऐसे समय पे अंतर्राष्ट्रीय पुलिस यानी कि इंटरपोल की बहुत जरूरत पड़ती है।
0: बिल्कुल सही कह रही है और इसीलिए पुलिस अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग जरूरी भी है। इंटरपोल, संयुक्त राष्ट्र और क्षेत्रीय पुलिस संगठन मिलकर सूचना साझा करते हैं और चोरी हुए पासपोर्ट पकड़ते हैं, अपराधी तंत्र को तोड़ते भी हैं। इस वर्ष का विषय हमें गहरी बात भी सिखाता है, वो है विश्वास यानी भरोसा। इस वर्ष 2026 का विषय कमजोरी से सुरक्षा, पुलिस व्यवस्था में विश्वास और वैधता का निर्माण है।
1: बिल्कुल, संयुक्त राष्ट्र महासचिव का भी ये मानना है कि समाज के सबसे कमजोर वर्ग जो हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, शरणार्थी हैं, दिव्यांगजन हैं, ये सभी लोग सबसे पहले अपराध का शिकार बनते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि उन्हें न्याय भी सही से नहीं मिल पाता है। इसीलिए पुलिस व्यवस्था केवल क्षमता से नहीं बल्कि जनता के विश्वास से भी बनती है।
0: बिल्कुल।
1: और एक लाइन में अगर कहें ममता जी तो सीमा पार सहयोग तभी सुरक्षित हर योग, या फिर विश्वास ही है शक्ति, पुलिस है जन की भक्ति।
0: सही बात है और हमें चाहिए कि हम उन सभी पुलिस कर्मियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें जो दिन रात हमारी सुरक्षा में लगे हैं और संकल्प लें कि हम विधि के पालन में सहयोग करेंगे। और अब एक गाना सुनते हैं। ये

0: कौन अपना कौन पराया फिल्म का गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सखियां और सखा सुन रहे थे। और चंचल जी, जब हम कोशिश करते हैं तो ये उम्मीद करते हैं कि हमें सफलता मिल जाए, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत मेहनत करने के बाद, कठिन परिश्रम के बाद भी सफलता हासिल नहीं होती है, तो क्या करना चाहिए? क्या हार मान के बैठ जाना चाहिए?
1: बिल्कुल नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हमें तो बचपन से ये सिखाया जाता है कि अगर कुछ भी पाना है तो उसके लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलेगा जीवन में। और वैसे भी समाज में प्रतिष्ठा, नाम, शोहरत, रुपया, पैसा, तरक्की, पढ़ाई में अव्वल आना, कुछ भी होने दो, लक्ष्य अगर आपको प्राप्त करना है तो संघर्ष के बिना तो वो संभव ही नहीं है। और ममता जी, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि संघर्ष हमारे जीवन को तराशता है, निखारता है, संवारता है, और फिर हमें एक ऐसे सांचे में ढाल देता है कि दुनिया में हम किसी भी जगह पर एक मिसाल भी बन सकते हैं। और हम जो भी अथक प्रयास करते रहते हैं, जिसे हम संघर्ष कहते हैं ना, उसके बाद ही हमें सफलता मिलती है, और निसंदेह वो अतुलनीय भी होती है।
0: बिल्कुल इसी तरह की एक बात हमारी एक सखी कर रही है, इसी तरह की बात कि जिंदगी के बुरे दौर में मिलने वाली छोटी बड़ी असफलता से बजाय घबराने के हमें उसी में से रास्ता खोजना चाहिए। कई लोग अपनी असफलता की तरफ कुछ ज्यादा ही देखते हैं और नए सपने देखने का जोखिम उठाने से डरते हैं। दरअसल सफलता का हर तार हमारे भीतर ही जुड़ा होता है, आवश्यकता है उसे तार को सही तरीके से कसने की। उस तार को, अपने भीतर के तार को सही कसकर ही कोई एडमंड हिलेरी एवरेस्ट पर विजय पताका फहरा पाता है।
1: बिल्कुल सही बात है, जीवन के संघर्ष जीवन के उतार चढ़ाव का अनुभव हमें कराते हैं और अच्छे बुरे का ज्ञान भी करवाता है, हमेशा सक्रिय रहना सिखाता है, समय की कीमत हमें पता लगती है, और इन सब चीजों से प्रेरित होकर हम सशक्तिकरण के साथ फिर से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समर्पित हो जाते हैं और जीवन जीने के जो सही ढंग है उसको सीख पाते हैं।
0: बिल्कुल, दुनिया का हर व्यक्ति जीवन में सफलता की उम्मीद करता है, जिसके लिए वो परिश्रम भी करता है। कई बार कुछ अलग करने की इच्छा और प्रबल प्रेरणा से हम अपने मुकाम के करीब पहुंच भी जाते हैं, लेकिन कुछ कठिनाइयों को सामने देखकर हार मानकर अपनी सफलता से वंचित हो जाते हैं।

0: इसी तरह से एक संदेश हमें अब ये कह रहा है कि सफलता का रास्ता कठिनाइयों और संघर्ष से होकर गुजरता है। कठिनाइयां इंसान को अंदर से मजबूत बनाती हैं, असफलताएं मुश्किलें असली ज्ञान और अनुभव सिखाती हैं। बड़ी सफलता के लिए लंबा धैर्य और निरंतर प्रयास इसकी सबसे बड़ी कुंजी है। सुडौल अक्षर को लिखने के लिए बचपन में ही स्कूलों द्वारा हमें शिक्षकों द्वारा एक दो पेज लिखने के लिए कहा जाता था और निरंतर अभ्यास से लिखावट में सुधार आता है, अक्षर सुंदर हो जाते हैं। इसी तरह से जिंदगी में भी सफलता के लिए ये सूत्र लागू होते हैं।
1: जब लिखने के लिए कहा जाता था सुलेख लिखना,
0: हाँ,
1: तो सबसे कठिन लगता था कि अरे क्या मतलब, कठिन से मतलब कि उबाऊ लगता था कि एक दो लाइन लिखने के बाद लगता था कि वही बात क्यों लिखवाया जा रहा है कि भारत हमारा देश है, हमारा देश जानों प्राणों से प्यारा है, और उसी एक लाइन को बार बार बार बार लिखना, तो तब ये बात नहीं समझ में आती थी कि अगर ऐसे ही अभ्यास की आदत पड़ी रहेगी तो आगे जब कठिनाइयां आएंगी तो कठिनाइयों से जूझने की आदत पड़ेगी। और बहुत सारे ज्ञानी लोग भी कहते आए हैं कि जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम है। याद रखें कि अपनी मंजिल का आधा रास्ता तय करने के बाद कभी पीछे मुड़कर ना देखें, बल्कि पूरे जुनून और विश्वास के साथ बाकी की आधी दूरी तय करें। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर भी हमें उतनी ही दूरी तय करनी पड़ती है जितनी दूरी तय करने पर हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं।
0: ये बात आपने बड़ी सही बताई। कई बार आधे रास्ते में आगे लगता है ना कि चलो भाई वापस चले, कितना दूर है, जबकि अगर हम थोड़ी हिम्मत करके आगे बढ़ जाएं तो शायद उतनी ही दूरी पर मंजिल।
1: यहाँ पर तैरने वाले का उदाहरण सबसे अच्छा होता है कि जो लोग तैराक होते हैं, अगर नदी पार कर रहे हैं और आधी नदी तक उनका हौसला टूटने लगे तो क्या कर सकते हैं। बीच नदी से पीछे जाएंगे तो भी उतना ही पानी है और आगे जाएंगे तो भी उतना ही पानी है। तो इसलिए बेहतर है कि आप हाथ पैर मारते रहें, कोशिश करते रहें।
0: बिल्कुल, आगे बढ़कर मनचाही सफलता नहीं भी मिली तो कोई बात नहीं, लेकिन जो भी काम हम कर रहे हैं उसका अनुभव हमें मिलेगा। और बार बार हार कर अपनी हिम्मत के साथ लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना, यही संघर्ष होता है।
1: और यहाँ पर बात ये बनती है कि हमें गाना सुनवा दें।

0: तो चंचल जी, हम बात कर रहे थे सफलता प्राप्ति का रास्ता संघर्ष से होकर ही गुजरता है, और हमारे श्रोता भी इस मुहिम में आगे आ चुके हैं और वो अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि संघर्ष ने मुझे तो बहुत कुछ सिखाया है, कभी ठोकर देकर संभलना, कभी आंसू पोंछकर मुस्कुराना। आज जो थोड़ा भी मजबूत हूँ उसमें मेरी मुश्किलों का बड़ा हाथ है। शायद जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि संघर्ष हमें तोड़ने नहीं, हमें अपने आप से मिलाने आता है। क्या बात है,
1: सही बात है ममता जी। जीवन में जब तक संघर्ष नहीं होगा, जीवन जीने के आनंद को, सच्ची खुशी को हम अनुभव भी नहीं कर सकते। जिस तरह बिना चोट के पत्थर को भी भगवान का रूप नहीं दिया जा सकता, कहने का मतलब यह है कि कोई भी मूर्ति जब गढ़ी जाती है तो कई बार उस पर चोट की जाती है, तब वो अपना आकार लेती है। और ठीक वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी संघर्ष की तपिश ना हो तो वो निखरेगा कैसे और शिखर तक पहुंचेगा कैसे, या फिर अपनी मनचाही सफलता को कैसे पाएगा।
0: बिल्कुल, और संघर्ष के सूत्र को हम समझ लें तो उस पर चलने की कोशिश हमें करनी होगी, कि मतलब अगर हम कोशिश करते रहेंगे तो सफलता मिल ही जाएगी देर सवेर। संघर्ष के डर से जीवन में कभी अपने कदम पीछे नहीं लेने हैं। आज का संघर्ष हमारे कल को सुरक्षित करता है। ये सत्य है कि जीवन में कई बार बुनियादी सामाजिक पारिवारिक समस्या आन खड़ी होती है, तब लक्ष्य के प्रति संघर्ष की इच्छा शक्ति को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जीवन का संघर्ष कई गुना बढ़ भी जाता है।
1: और हमारे श्रोता कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मुश्किलों से घबराने की बजाय उनसे सीखता है, वही आगे चलकर सफलता का असली आनंद महसूस करता है। इसीलिए रास्ते में कितनी भी बाधाएं आए, हिम्मत ना हारें, कदम ना रोकें और अपने लक्ष्य पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि संघर्ष जितना सिखाता है सफलता उतनी ही अच्छी लगती है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि सच तो यही है, सफलता का रास्ता संघर्ष से है, लेकिन ईश्वर संघर्ष रहित जीवन भी देते हैं। किसी किसी को चांदी और सोने के चम्मच और थाली वाले घर में ही जन्म दे देते हैं, तो उनके लिए संघर्ष के मायने बिल्कुल अलग होते हैं। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि बिना संघर्ष सफलता मिलना काफी मुश्किल है। जीवन में संघर्ष और सफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि बिना संघर्ष या कठिनाइयों का सामना किए बिना जीवन में सफलता हासिल नहीं की जा सकती, मतलब बिना संघर्ष के।
1: बिल्कुल, संघर्ष जितना कठिन होगा जीत भी उतनी ही शानदार होगी, हम इस बात को याद रखें। और चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, गीत सुन लें।
0: सुनते हैं ये गाना।

0: भाई गाना हो गया, अब खाने की बात भी जरूरी है।
1: हाँ, गाने के बाद खाना।
0: बिल्कुल, और हमारे श्रोताओं ने जो व्यंजन लिख भेजे हैं हम वही उन तक पहुंचा रहे हैं। कश्मीरी दम आलू और सामान्य आलू दम के बीच मुख्य अंतर उनकी ग्रेवी सामग्री और बनने की विधि में होता है। कश्मीरी दम आलू में इसमें प्याज लहसुन और टमाटर का बिल्कुल उपयोग नहीं किया जाता है। इसकी ग्रेवी मुख्य रूप से फेंटे हुए दही पर आधारित होती है। सामान्य आलू दम उत्तर भारतीय या पंजाबी शैली के आलू दम में प्याज लहसुन और टमाटर की गाढ़ी ग्रेवी बनाई जाती है। इसमें काजू का पेस्ट या क्रीम भी डाली जाती है जिसमें ये अधिक मलाईदार बनता है। कश्मीरी आलू दम में सूखा हुआ अदरक, सौंठ पाउडर और सौंफ पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है।
1: तो ये तो हुई एक संदेश की बात। अगले संदेश में इसको बनाने की पूरी रेसिपी बताई गई है और इसमें बताया गया कि कश्मीरी दम आलू बिना प्याज लहसुन बनने वाली बेहद स्वादिष्ट और पारंपरिक रेसिपी है। इसके लिए जो सामग्री हमें चाहिए वो है बेबी आकार के पोटैटो, यानी कि 500 ग्राम हमें आलू लेने छोटे छोटे आकार के, सरसों का तेल लेना है ग्रेवी के लिए और तलने के लिए, ताज़ा फेटा हुआ दही करीब एक कप लेना है, सौंफ पाउडर एक बड़ा चम्मच लेना है, सौंठ यानी सूखे हुए अदरक का पाउडर आधा बड़ा चम्मच लेना है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जिसे थोड़ी रंगत अच्छी आ जाएगी वो एक बड़ा चम्मच लेना है, दो चुटकी हमें हींग लेनी है और खड़े मसाले में हमें लेने हैं जीरा, तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग और इलायची, नमक लेना है हमें स्वाद अनुसार। अब बनाने के लिए जो आलू है उनको तैयार कर लें, उनको थोड़ा 50% तक उबाल कर और छील लिया जाता है। अब किसी कांटे से या टूथपिक से आलू में छेद कर दिए जाते हैं ताकि मसाले इनमें अंदर तक जा सकें और इन आलू जो छोटे छोटे आलू हैं इनको सरसों के तेल में मध्यम आँच पर सुनहरा होने तक तल लेना है और थोड़ा सा इनकी जो ऊपर की लेयर है वो क्रिस्पी हो जानी चाहिए तब तक हमें इन्हें तलना है। और मसाले का एक पेस्ट बनाना है, उसके लिए एक कटोरी में फेटा हुआ दही, कश्मीरी लाल मिर्च, सौंठ पाउडर, सौंफ पाउडर और थोड़ा सा पानी मिलाकर ये पेस्ट हमें तैयार कर लेना है। तड़का लगाने के लिए उसी कढ़ाई में जिसमें हमने आलू तले थे थोड़ा सरसों का तेल गर्म छोड़ देना है, उसमें जीरा, तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग, इलायची, हींग डाल देनी है, फिर ग्रेवी डालकर थोड़ा धीमी आँच पर उसे पका लेना है, फिर दही का पेस्ट डालना है और तब तक तेल अलग ना हो तब तक इसको पकाना है। फिर जो हमारे तले हुए आलू हैं

0: थोड़ा सा नमक डालकर इन्हें भी डाल दीजिए, थोड़ा सा पानी डालकर जब तक वो तेल थोड़ा सा अलग होने ना लगे तब तक पकाना है 10-15 मिनट तक। जब आलू थोड़े से नर्म हो जाएंगे तो आपके समझ लीजिए कि कश्मीरी दम आलू जो हैं वो तैयार हैं।
1: तो ये रेसिपी हमारे श्रोताओं ने भेजी थी और हमने पढ़कर सुनाई, और अगली बार किसी और रेसिपी की बात होगी। और अब घड़ी की ओर देखिए कि अब गाना बजाने का समय है और सुनाते हैं ये गाना।

0: आर पार फिल्म का गाना था, गीता दत्त की आवाज़ थी। और अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं है कि हम बोली बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाज़त। आप सभी को ममता सिंह
1: और चंचल वर्मा का
0: नमस्कार, नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक,
2: सखी सहेली।

0: श्रोताओं नमस्कार। सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, सितंबर महीने में पहला सप्ताह पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है और इस महीने को पोषण माह के रूप में भी मनाया जाता है। तो इस उपलक्ष्य में आज सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुनेंगे न्यूट्रिशन अर्थात पोषण। इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत। आइए सुनते हैं इस बातचीत की पहली कड़ी।
1: दोस्तों नमस्कार, सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है आहार विशेषज्ञ यानी न्यूट्रिशनिस्ट यानी डाइटिशियन अदिति प्रभु को। अदिति प्रभु से हम जानकारी हासिल करेंगे आहार के बारे में और किस तरह के आहार लेने चाहिए। अदिति जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें बताइए कि आज का जो मुद्दा है न्यूट्रिशन आहार विहार और डाइटिशियन की कब जरूरत पड़ती है और न्यूट्रिशन क्या है।
2: हम जब न्यूट्रिशन की बात करते हैं, लोग हमेशा यही सोचते हैं कि रोटी सब्जी दाल चावल ये हो गया मेरा न्यूट्रिशन, जबकि एक डाइटिशियन जब आपके खाने को देखती है वो न्यूट्रिशन को थोड़े अलग तरीके से देखती है, जिसमें वो देखती है कि आपके प्लेट में या थाली में क्या है, रोटी सब्जी दाल चावल है कि नहीं और वो कितनी मात्रा में है और उसको कैसे हम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मिनरल्स विटामिन्स में कंपेयर कर सके। हम ये देखते हैं कि क्या वो संतुलित है और किस मात्रा में आपको उसकी ज़रूरत है, क्या आप वो सही मात्रा में सही समय पे लेते हैं। तो न्यूट्रिशन अगर हम सर्वसाधारण इंसान को अगर समझाने जाए तो आपको ये देखना है कि खाने में ना कि सिर्फ रोटी सब्जी दाल चावल, बगैर आपको ये देखना है कि आपके कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फाइबर ये कितनी मात्रा में है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन ज़िंदगी के हर पड़ाव पे ज़रूरी है, तो हर पड़ाव पे ये न्यूट्रिशन की ज़रूरत हर किसी के लिए अलग अलग होती है। ना कि हम जब पोषण की बात करते हैं लोगों को सिर्फ बचपन बीमारी ये सब याद आता है, मगर न्यूट्रिशन आपको प्रेगनेंसी में भी ज़रूरी है, आपको अगर आप खिलाड़ी हो स्पोर्ट्स करते हो तो तब भी आपको ज़रूरी है, आपको आपकी पीरियड्स शुरू होने वाले हैं या आपके पीरियड्स रुकने वाले हैं तब भी आपको ज़रूरी है, और आपको समझना ज़रूरी है कि आपकी ज़रूरत क्या है।
1: तो ये बताइए कि कैसे समझें, ये जो ज़रूरत होती है एक आम इंसान को नहीं समझ में आता है कि एक जो इंसान सामान्य रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको कितनी डाइट की ज़रूरत है, कितने आहार की और न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, पोषकता की खास तौर से कितना पोषण चाहिए, ये किस तरह से इसका निर्धारण कैसे हो।
2: ये तो आप जब भी डाइटिशियन के पास जाएंगे तब आपको एकदम डिटेल में बताया जाता है, ताकि आपको आपके ज़िंदगी की आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी है, आपकी आदतें कैसी है, आप क्या काम करते हो, आपको क्या बीमारियां हैं या आपकी क्या खाने में कमियां हैं, आप जहां रहते हो खाने में क्या पूरी तरीके से पोषण मिलता है, उस आधार पे आपको ये बताया जाता है कि आपको किस चीज़ की किस मात्रा में ज़रूरत है। सर्वसाधारण इंसान को अगर मैं थाली के भाषा में समझाऊं तो उनकी थाली में एक चौथाई हिस्सा धान होना चाहिए, जो कि आपको ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट देगा, ताकत देगा आपकी दिन की काम करने के लिए,
1: ऊर्जा भी देगा,
2: ऊर्जा मिलेगी आपको। आपके थाली में एक चौथाई हिस्सा सब्जी होना जरूरी है।

0: कि मौसम के आधार पे जो भी आपके इर्द गिर्द मार्केट में आपके अवेलेबल हो वो ज़्यादा आपको लेनी ज़रूरी होती है
1: वो भी मौसम के हिसाब से.
0: मौसम के हिसाब से, क्योंकि हर सब्ज़ी हर मौसम में मिलती नहीं है. और हम आजकल ज़्यादा कर जो साल भर मिलते हैं वही सब्ज़ियाँ खाते हैं. इसके अलावा एक चौथाई हिस्सा आपके प्लेट में होना चाहिए आपका प्रोटीन. प्रोटीन जो आता है वो ज़्यादातर अगर आप शाकाहारी हैं तो दाल, फिर आपके पल्सेस जैसे मूंग,
1: जी
0: चौली, राजमा, छोले, इसमें से आ जाता है. अगर आप दूध लेते हो तो दूध, पनीर, इसमें से आ जाता है. और अगर आप मांसाहारी है तो आपको मच्छी, फिश, चिकन, इसमें से आपको मिल जाता है. और जो एक चौथाई हिस्सा है इसमें आपको ज़रूरी होता है कि थोड़ा सा सलाद ऐड करें, थोड़ा सा आपका दही ऐड करें, क्योंकि दही जो होता है प्रोबायोटिक होता है, आपके पेट के लिए अच्छा होता है. ये सर्वसाधारण ये थाली है जिसमें आधा हिस्सा तो ज़्यादातर सब्जियों से भर जाता है.
1: जी.
0: ये संतुलन जो है हर इंसान के लिए थोड़ा बहुत बदल जाता है. ये डिपेंड करेगा कि आपकी बाकी की ज़रूरतें क्या हैं, उस पे ये निर्भर करता है.
1: जी. और ये जो आपने बताई सब्जी, दो सब्जियां थोड़ा आराम से उबली हुई या कम मिर्च मसाले वाली, नहीं तो फिर वो मसाला खा के दिक्कतें और हो जाएंगी. यहाँ
0: जी
1: पर एक गाना जरूरी है. कौन सा गाना सुने?
0: जी
1: हमें तो लगता है कि वो सादा खाना की बात है, तो दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ.
0: क्यों नहीं, एकदम सही गाना चुना है आपने.
1: जोरभाटा फिल्म का गाना सुनते हैं.
2: ये समझो और समझाओ थोड़ी में.

0: लोग स्वाद प्रेमी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, फास्ट फूड की ओर बढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह। हम फास्ट फूड की बात तो आगे करेंगे, फिलहाल हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चों के लिए क्या डाइट होनी चाहिए और बुजुर्गों के लिए क्या डाइट होनी चाहिए।
1: अगर हम बच्चों की बात करें, पहले तो स्तनपान बहुत ज़रूरी है, पहले 6 महीने तो बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद धीरे धीरे आपके खाने में जो भी खाना आता है वो धीरे धीरे बच्चों को शुरू कर देना चाहिए। ये कोशिश करें कि उसमें नमक शक्कर ये वर्ज रहे,

0: या आप उसे
1: कम।
0: खाने में ना रखें।
1: अच्छा अच्छा ओके।
0: आप ज़्यादातर बच्चों को जो वो मौसम के फल है, सब्जियां हैं, दाल चावल है, इससे शुरुआत करें जितना हो सके। ये समझना लोगों को ज़रूरी है कि बच्चे जो है ये देखकर ज़्यादा सीखते हैं, ना कि जो उनको बोला जाता है। सो अगर उनके माता पिता बहुत ज़्यादा चुन चुन के खाते हैं तो बच्चों के ऊपर उतना ही असर होता है। बढ़ती उम्र के साथ आपकी खाने में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बच्चों को सही मात्रा में, छोटी छोटे अमाउंट में खाना देना ज़रूरी है। हर बच्चे की भूख अलग अलग होती है, तो कुछ माता पिताओं को लगता है हम कम खाना दे रहे हैं, कुछ को लगता है हम बच्चों को ज़्यादा दे रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं
1: जी
0: है, आपके बच्चों को जितना ज़रूरी है उतना जाना चाहिए। उसके खाने में जो मौसम में मिलने वाली सब्जियां हैं, फल है, वो होना ज़रूरी है। दूध, दही, इसकी मात्रा सही तरीके से होनी चाहिए। और प्रोटीन भी उतना ही ज़रूरी होता है, मतलब दाल, पल्सेस जैसे राजमा, छोले, पनीर, इसका भी आपको सेवन सही मात्रा में रखना ज़रूरी है। ये वही वक्त है ज़िंदगी का जहाँ पे कुपोषण ग्रामीण लोगों में ये बहुत देखा जाता है, क्योंकि कभी-कभी लोगों के पास सही खाना होता ही नहीं है। और कई बार ऐसे होता है खाना तो है मगर लोगों को पता नहीं है कि उनको ये बच्चों
1: कैसे
0: को
1: खाएं।
0: देना चाहिए या नहीं। जो पहले के ज़माने में था, आपके बुजुर्ग घर में होते थे जो आपको बताते थे कि आप अपने बच्चों को ये दे सकते हैं, आज कईयों के पास वो नहीं है साथ। जितना आप शहर की तरफ जाए, न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत बढ़ गई है, तो वहाँ पे माता पिता बहुत डर डर के बच्चों को खाना देते कि ये दू, ये नहीं दू, ये सही है, ये गलत है। इस सोच में कई बार बहुत खाना कम चला जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उनको ध्यान देखना ज़रूरी है। वैसे ही अगर हम बुज़ुर्गों की बात करें तो बुज़ुर्ग जो होते हैं उनको दांतों के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, और उनको बाकी के हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं, जैसे उनकी भूख कम हो जाती है, नींद कम हो जाती है। तो उनके हिसाब से उनका खाना भी बहुत संभाल के बना के उनको देना ज़रूरी है। जितना बचपन में खाना ज़रूरी है उतना बुज़ुर्गों के लिए भी खाना ज़रूरी है। उनको उस तरीके का खाना देना चाहिए जो वो खा सके। अक्सर बुज़ुर्ग जो होते हैं वो नहीं बदलते बहुत सही से,
1: बिल्कुल। हाँ, रिजिड
0: तो
1: होते हैं
0: बहुत
1: कई लोग।
0: रिजिड होते, तो ऐसे वक्त पे दिक्कत आपको बहुत आ सकती है। मगर उनको ये समझाते हुए कि आपको ये ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आप बुज़ुर्ग हो गए आपके बॉडी में मसल लॉसेस बहुत हो जाते हैं, आपके मेडिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है होना बट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से आहार के ऊपर बहुत असर पड़ जाता है। तो ये वक्त भी ऐसा वक्त है जहाँ पे खाने में प्रोटीन पे ध्यान देना ज़रूरी है। क्या फल सब्जियाँ सही मात्रा में जा रही है, सही वक्त पे जा रही है, ये देखना ज़रूरी है। और उससे ज़्यादा ये ज़रूरी है क्या ये पूरी तरीके से संतुलित आहार पूरे दिन में खा रहे हैं।
1: अदिति जी, मेरे जहन में एक बात आ रही है कि विटामिन्स कितना ज़रूरी है शरीर के लिए, क्योंकि आहार का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है विटामिन्स। और ड्राई फ्रूट और फलों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, लोगों को लगता है कि ड्राई फ्रूट्स खा लें तो हमें बहुत सारा पोषक तत्व तो मिल जाएंगे। तो ज़रा हमारे श्रोताओं को बताइए कि कौन से ड्राई फ्रूट्स में किस तरह के विटामिन्स होते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाएँ वो।
0: अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है कि अगर आपको विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत है तो सबसे ऊपर आते हैं फल और सब्जियाँ। और इसीलिए मैंने कहा कि मौसम के आधार जो भी आपके आजू बाजू में अवेलेबल है वो आपको लेना ज़रूरी है। जैसे बारिश के मौसम में कुछ सब्जियाँ मिलती हैं वो बाकी वर्ष भर आपको नहीं मिलेंगी। ये छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि वो आपको उस समय के लिए जो आपको विटामिन्स मिनरल चाहिए वो उतना प्रोवाइड करती हैं।
1: जी
0: तो सबसे पहले आपके खाने की लिस्ट में, आपके टॉप ऑफ द लिस्ट में होना चाहिए सब्जियां और फल जो कि मौसम के आधार पे हो। जैसे अगर हम मुंबई शहर की बात करें तो यहाँ पे आपको मार्केट में ज़्यादातर एप्पल, पेयर, उसके अलावा पपीता मिल जाएगा। मगर मौसम के आधार पे, जैसे अभी ये जो मौसम है ये आलू बुखारा का है, या अनार आपको अच्छे से मिल जाएंगे, आपको ये फल ज़्यादा खाने ज़रूरी है। जैसे सब्जियाँ हो गई, तो इस मौसम में बारिश के आपको बहुत ज़्यादा, हम जो

0: रान भाजी बोलते हैं मराठी में, या हिंदी में हम उसको जो
1: पत्ती वाली सब्जी,
0: पत्ती वाली सब्जियां, मगर जो लोगों को ज्यादा कर पता नहीं होती है ऐसी वाली, बारिश के मौसम में कम ऐसी सब्जियां आती है, जैसे फोड़शी हो गया, टाकला हो गया, वो आपको बारिश में ही मिलेगा।
1: अच्छा,
0: और वो आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। जैसे अभी कंटोला आ गया, आप तो कंटोला आपको अभी ही मिलेगा, आपकी तबीयत खुद ही संभल जाएगी, आपको अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको फाइबर की गोलियां या कुछ लेना नहीं पड़ेगा पेट साफ करने के लिए। तो ऐसी चीजें आपको मौसम के आधार पर खानी चाहिए। हम फिर मुड़ते हैं ड्राई फ्रूट और नट्स के बारे में। नट्स और ड्राई फ्रूट्स, ये दो चीजें अलग अलग है।
1: जी, जी।
0: लोग अक्सर इनको कंफ्यूज कर देते हैं। नट्स वो चीज है जो कि आपको विटामिन मिनरल देते हैं, जैसे बादाम हो गए, उसमें विटामिन ई आ गया आपका, उसमें हेल्दी फैट आ गए, थोड़े बहुत प्रोटीन भी आ गए, जो आपकी तबियत के लिए बहुत अच्छे हैं। फिर आ गए अखरोट या वॉलनट जिसे कहते हैं, इसमें आपको विटामिन ई आया, ओमेगा आया, जो आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा ब्राजील नट्स आ गया। अभी ब्राजील नट के लिए तो हिंदी नाम कोई है नहीं, ना ही कोई देसी नाम है उसका, उसे ब्राजील नट ही कहा जाता है, वो कि सेलेनियम रिच होता है, जिसको इन्फ्लेमेशन है, थायराइड का इश्यू है, उसके लिए वो बहुत फायदेमंद हो जाता है। वैसे ही जो कद्दू होता है, उसके बीज होते हैं पंपकिन सीड्स, बहुत ज्यादा आपकी तबीयत के लिए अच्छे होते हैं, उसमें मैग्नीशियम बहुत होता है। तो नट्स एंड सीड्स आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आते हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स क्या होते हैं, जब आप कोई भी फल को सुखा देते हैं, अभी जब आप कोई भी फल को सुखा देते हैं उसमें पानी की मात्रा होती है वो कम हो जाती है, मगर इसका दूसरा हिस्सा ये है कि उसमें शुगर का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है,
1: बढ़ जाता है।
0: अभी लोग क्या सोचते हैं, ड्राई फ्रूट बहुत अच्छे हैं, किशमिश खा लेते हैं, अंजीर खा लेते हैं, और एक से तो मन कभी किसी का भरता नहीं है, तो चलो मुट्ठी भर उठा लिया, और फिर खुद को ही बताते हैं कि क्या है इसमें, ड्राई फ्रूट और नट्स तो हेल्दी होते हैं तो खा लेते हैं, ये नहीं सोचते कि इससे आपकी शक्कर बहुत बढ़ सकती है, ब्लड शुगर लेवल।
1: जी जी।
0: और यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि आपको पता होना चाहिए कि ड्राई फ्रूट और नट्स वो ऐसी चीजें हैं जो हेल्दी है, जो जरूरी है, मगर एक कम मात्रा में खानी चाहिए, ना कि वो चने सिंह की तरह आप पूरे दिन थोड़ा थोड़ा करके खाते रहे।
1: जी बिल्कुल। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, कौन सा गाना?
0: क्यों ना देश की धरती सोना उगले, ये थोड़ा सा सुन ले, क्योंकि मुझे लगता है हमारी देश की धरती है वो वाकई में हमें सोना देती है, जो मौसम की जो सब्जियां हैं, फल है, अनाज है, उससे हमारी सेहत तो वो ऐसे ही संभाल लेती है, तो उससे थोड़ा सा सेलिब्रेट किया जाए।
1: जी। उपकार फिल्म का गाना है, सुनते हैं ये गाना।

0: गाने के बाद अदिति जी हमें बताइए, आपने बुजुर्गों की बात की और बच्चों के न्यूट्रिशन की बात की, यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा है वो है महिलाओं के पोषण की। महिलाओं के पोषण के प्रति परिवार बहुत लापरवाही भी करता है, खास तौर से गर्भवती महिलाओं के लिए प्रचुर मात्रा में पोषण की जरूरत पड़ती है, और ऐसी महिलाएं जो श्रमिक वर्ग से आती हैं और गाँव में खेतों में काम करती हैं, तो इनके बारे में बताइए क्या कुछ इनके लिए जरूरी होता है। कई बार ये भी होता है कि उनके पास खाने की चीजें नहीं होती है, ऐसी स्थिति में क्या कुछ खाएं?
1: तो सबसे पहले इस सवाल का जवाब देने के पहले मैं थोड़ा एक मुद्दा लाना चाहती हूँ यहाँ पे
0: जी।
1: कि जिंदगी के हर पड़ाव पे जो आपको आहार या पोषण की जरूरत होती है उसके लिए अलग अलग डाइटिशियंस होते हैं जो आपको उस वक्त पे सही तरीके की मदद कर सके। जैसे डॉक्टर्स में स्पेशलाइजेशन होता है वैसे डाइटिशियंस में भी होता है, और गर्भवती महिलाओं के लिए या आप शिशुपालन के वक्त आपको जो भी सहायता चाहिए लैक्टेशन के लिए वहाँ पे आपको अलग डाइटिशियंस होते हैं जो आपकी पूरी तरीके से इस समय में मदद कर सकते हैं। तो कभी भी किसी भी औरत को अकेले महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रेगनेंसी की बात करें जिंदगी का एक बहुत अहम चरण है आहार, इसमें बहुत लोग सिर्फ प्रेगनेंसी की ओर से देखते हैं, तो मैं तो कहूँगी कि आपको आपका पोषण प्रेगनेंसी के पहले से देखना ज़रूरी है। जब भी आप सोचे कि आपको प्रेगनेंसी धारण करनी है ये आपको आपका पोषण उसके पहले से संभालना चाहिए। मतलब आपके सही विटामिंस मिनरल्स आपका आहार, क्योंकि पहले 3-4 महीने में आपको नौशिया थोड़ा सा उल्टी होना है, बाकी सब प्रेगनेंसी के इश्यूज आ सकते हैं, कुछ खाने आपको सूट नहीं करेंगे, तो ये आप तब ठीक करने जाओगे तो ये मुश्किल पड़ जाता है। तो आपको आपके प्रेगनेंसी होने के पहले आपको थोड़ा सा ख्याल रखना खुद का जरूरी है, देखना जरूरी है कि आपके विटामिन मिनरल्स जैसे कि विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, ये सारी चीजें आपकी सही मात्रा में है या नहीं। प्रेगनेंसी के दौरान आपको खुद के लिए और बढ़ते हुए बच्चे के लिए खाने की जरूरत होती है। प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमेस्टर्स में तीनों के वक्त खाना अलग अलग मात्रा में खाया जाता है, उसकी रेशोज भी अलग अलग होते हैं जिसकी प्रमाण होते हैं। अगर मैं एकदम सहज भाषा में बताऊं, जो मैंने थाली की बात की थी पहले, जहाँ पे 1/4 धान है, 1/4 प्रोटीन है, आप थोड़ी मौसम वाले सब्जियां, फल और दही दूध सलाद ये थोड़ा सा खा ले, तब भी आप आपकी सेहत का ख्याल रखोगे, ये बेसिक हो गया। अगर कोई आपके प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आपकी जरूरतें बढ़ सकती हैं
0: जी,
1: जो कि आप संभाल सकते हो सिर्फ आहार के बलबूते पे
0: जी। ये यहाँ पर एक बात और है, एक तो माहवारी के समय महिलाओं के लिए और न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, दूसरा मेनोपॉज के समय, क्योंकि उस समय भी हमने सुना है कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और इसमें तीसरा एक मुद्दा है लड़कियों के लिए जो खेल की दुनिया में जाना चाहती, खास तौर से लड़कियों के लिए। खेल की दुनिया में तो यूं लड़कों के लिए भी बहुत ज्यादा पोषण की जरूरत पड़ती है, तो क्या स्पेशल कोई डाइट होती है?
1: जी, आप जो खेल में खेल रहे हो उस खेल के आधारित आपका पोषण जाता है। जैसे अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आप क्या बैट्समैन हो, बॉलर हो, फील्डर हो, आप कौन से एज ग्रुप में आप खेल रहे हो, इसके बेसिस पे भी आपका खाना पूरी तरीके से बदलता है। जब हम स्पोर्ट्स वालों की बात करें तो उनकी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उनको विटामिन्स मिनरल्स पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि उनको परफॉर्मेंस पे ज़्यादा है कि आप साल भर तो प्रैक्टिस कर लेते हैं मगर वो एक खेल आपको बता देता है कि आप सही खेले हो या

0: ने खुद का ख्याल सही से रखा है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको, अगर आप महिला है और खेल की दुनिया में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि आपको आपके आहार के बारे में देखना जरूरी है। आपका पोषण सही होना चाहिए, जो कि लोग तो स्पोर्ट्स के पीछे, स्पोर्ट्स अच्छे कोच हो, अच्छे ट्रेनिंग मिले, इसके पीछे लग जाते हैं, मगर आहार के बारे में ज्यादा सोचते नहीं है। ज्यादातर मैं ये देखती हूँ कि उनके खाने में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा कम रहती है, या वो सही तरीके से नहीं खाते, क्योंकि वो उस वय में है जहाँ पे सुंदरता भी बहुत जरूरी है, एक विशिष्ट रूप से दिखना भी जरूरी है, और उनको खेलकूद में भी सही रहना है। और दूसरी चीज हम ये भी देखते हैं कि जो स्पोर्ट्स में लड़कियां जाती हैं, उनके हार्मोनल और महावारी के इश्यूज भी बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो सही तरीके से अपने खाने के ऊपर ध्यान नहीं देते।
1: तो किन पोषक तत्वों की जरूरत होती है इन्हें?
0: तो इन्हें ज्यादातर सही वक्त पे खाना बहुत जरूरी होता है, और सही वक्त पे सही मात्रा में। जैसे अगर आप कोई स्पोर्ट खेल रहे हो और अभी आपकी ट्रेनिंग है, तो आपको ट्रेनिंग के पहले कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लगते हैं, ट्रेनिंग के बाद आपको प्रोटीन के ऊपर देखना जरूरी है, मगर आप पूरे दिन में क्या खाते हो और कितना संतुलन आप मेंटेन करते हो, ये भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपको फाइबर की बहुत जरूरत होती है। प्रोटीन आपको नॉर्मल लोगों से बहुत ज्यादा मात्रा में लगता है, एकदम ज्यादा नहीं बट सही मात्रा में, जो कि आपको खाने से आराम से मिल सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से आपको आपका प्रोटीन मिल रहा है। विटामिन्स, जैसे विटामिन डी हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, इस चीजों को भी आपको ध्यान देना पड़ता है। फिर अगर आपको इंजरी हो गई, तब भी आपका पोषण बहुत अलग हो जाता है, क्योंकि आपको रिकवरी जल्दी करनी होती है, तो तब प्रोटीन की जरूरत और ज्यादा बढ़ जाती है। विटामिन मिनरल्स, जैसे ओमेगा हो गया या विटामिन डी हो गया, ये बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरी पड़ जाता है। तो खेल के हिसाब से आपका पोषण बदल जाता है, आप कौन से लेवल पे खेल रहे हो इसके ऊपर भी बहुत बदल जाता है, आपका खेल क्या डिमांड करता है। जैसे कुछ स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें आपके बॉडी का फैट परसेंटेज एक सर्टेन अमाउंट में होना चाहिए, जो शरीर में चर्बी होती है वो एक सर्टेन परसेंटेज के हिसाब से ही चलती है, आप ज्यादा करोगे तब आपके परफॉर्मेंस पे परिणाम हो जाएगा। तो यहाँ पे हर खेल के हिसाब से थोड़ा सा पोषण बदला जाता है।
1: जी बिल्कुल। एक गाना सुने
0: जी,
1: कौन सा?
0: क्योंकि हम स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों ना कोई सक दे इंडिया का बढ़िया सा गाना हो जाए।
1: सुनते ही ये गाना।

0: अलग अलग बीमारियों के लिए, अलग अलग अवस्था के लिए अलग अलग डाइटिशियन होते हैं, ये नई बात है हमारे श्रोताओं के लिए। और आपने जिक्र किया कि आप पेट की तमाम बीमारियों के बारे में डाइट तय करती हैं, पेट की तमाम समस्याओं के बारे में आप अवेयर करती हैं, जागरूक बनाती हैं हमारे श्रोताओं को। तो बताइए कि पेट की किस समस्या के लिए किस तरह की डाइट होनी चाहिए और कितना संतुलन होना चाहिए आहार में।
1: ज्यादातर मेरे पास आने वाले लोग होते हैं उनको एसिडिटी, ये बहुत ज्यादा मात्रा में देखी जाती है
0: जी।
1: इसके अलावा किसी को डाइजेशन के इश्यूज होते हैं, पचन क्रिया ठीक नहीं काम कर रही है, या किसी को IBS, IBD ये थोड़े से इश्यूज हो जाते हैं। डाइजेशन रिलेटेड तो बहुत ज्यादा केसेस आ जाते हैं, क्योंकि पेट आपका दूसरा दिमाग है, तो आपके दिमाग पे, संतुलन पे, आपके काम पे, सब पे असर पड़ने वाला है। और मुख्यतः क्या हो जाता है कि अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो जो आप खा भी रहे हो ना वो शरीर को लगेगा ही नहीं।
0: जी जी,
1: छोटे छोटे बदलाव बहुत काम आ जाते हैं यहाँ पे, बहुत बड़े बदलाव जरूरी नहीं होते कभी कभी। जैसे अगर मैं बोलूँ तो हर कोई चाहता है कि सुबह शुरुआत हो एक कड़क प्याली चाय के साथ, और वो चाय के साथ होती है फिर दो बिस्किट या फिर एक टोस्ट, और वो चाय भी आपकी एसिडिटी के लिए एक बहुत अच्छी दोस्त होती है
0: जी।
1: अगर एसिडिटी के इश्यूज हैं तो आपको सबसे पहले तो क्या आप सही वक्त पे खाते हो, और क्या ये वक्त आप हर रोज उसी वक्त पे खाते हो, ये बहुत जरूरी हो जाता है।
0: अच्छा,
1: दूसरी चीज आप वो वक्त पे क्या खा रहे हो। जैसे आप बहुत ज्यादा तली हुई चीजें खाओगे, मसालेदार चीजें खाओगे, तो आपको एसिडिटी बढ़नी ही वाली है। और एसिडिटी ऐसी चीज है कि आपको एक दिन का उपाय नहीं है वो, आपको जो भी आप उपाय कर रहे हैं वो आपको करीबन 3 से 4 हफ्ते करना पड़ेगा
0: जी।
1: तब जाके आपकी एसिडिटी कहीं जाके कम हो सकती है। तो सही वक्त पे खाना, सही क्वांटिटी में खाना, ये बहुत जरूरी है। ज्यादातर मौसम में जो फल होते हैं, जैसे जब आपको एसिडिटी होती है ज्यादातर मेलन्स, कलिंगड़ हो गया या फिर तरबूज हो गया, ये आपको बहुत हेल्प करेगा क्योंकि वो ठंडा देता है, आपके पेट को राहत देता है। मगर ऐसा भी होता है कुछ लोगों को उससे भी तकलीफ होती
0: जी, ब्लोटिंग होने लगती
1: बहुत ज्यादा। जैसे ककड़ी ऐसी चीज है जो आपको फायदा दे सकती है मगर किसी को तकलीफ दे सकती है। तो आप कि शरीर को क्या जरूरी है ये देखना जरूरी है, और उस हिसाब से आपका आहार होना चाहिए। तो यहाँ पे आप 3 मुद्दों पे ज्यादा ध्यान दोगे, आपकी नींद, आपका पानी और आपकी खाने का समय और मात्रा। ये 3 चीजें आपने संभाल ली और आपने छोटे छोटे क्वांटिटी में थोड़ा थोड़ा खा लिया पूरे दिन में, तो आप सही रहोगे, आपको एसिडिटी की दिक्कत कम होगी। और जितना हो सके थोड़ा स्वाद को दुयम स्थान देके पहले पोषण के ऊपर ध्यान देंगे तो आपकी एसिडिटी आराम से संभल जाएगी।
0: इससे जुड़ा हुआ मुद्दा है IBS, तो इसकी समस्या को दूर करने के लिए, मतलब ये सारी गैस, एसिडिटी, पित्त, IBS, इन सब से राहत पाने के लिए खाने वाली कौन सी चीजें जिसे अपना दोस्त बनाएं, और कौन सी ऐसी चीजें जिन्हें दूर भगा दें, बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: IBS और IBD थोड़ा एडवांस लेवल की पेट के इश्यूज हैं, जहाँ पे आपको लो फॉडमैप के खाने की जरूरत होती है। आपको डाइटिशन के साथ काम करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि आपके खाने में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। बाकी के जो आपने बातें की उसमें आपके खाने में ज्यादातर, जैसे मैंने कहा, कम मसालेदार, कम खड़े मसाले जहाँ यूज हो ऐसे खाने, कम मात्रा में, कम तेल, कम मसाले डाल के पकाए जाए और खाए जाए, तब आपको बहुत फायदेमंद देते हैं। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि एसिडिटी और गैसेस के मामले में, कि आपकी दिन की शुरुआत और दिन का अंत, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। मतलब आप सबसे पहले क्या खा रहे हो और आपका रात का खाना वो पूरे दिन के सभी खाने में से थोड़ा हल्का हो और वो थोड़ा जल्दी हो, सोने के कम 2.5 से 3 घंटे पहले हो, ये बहुत जरूरी है।
0: जी जी बिल्कुल। और मानसिक स्वास्थ्य के लिए पोषक तत्वों की कितनी अहमियत है?
1: बहुत ज्यादा। बहुत कम लोगों को ये पता है कि मानसिक जो भी आप महसूस करते हो इसके लिए भी आपका आहार बहुत काम आ सकता है। बहुत बार ये होता है कि लोगों को विटामिन की कमियां होती है, मिनरल्स कम होते हैं, जिसके

0: जिससे थोड़ी एन्जाइटी ज़्यादा हो जाती है, बेचैनी
1: जी
0: ज़्यादा हो जाती है। आजकल सोशल मीडिया और रील्स की
1: डिप्रेशन
0: देख के लोग बड़ी आसानी से डिप्रेशन, एन्जाइटी के अल्फाज यूज़ कर लेते हैं, बट कई
1: जी
0: बार ये सिर्फ वाइटमिन और मिनरल की कमियों की वजह से होने वाली चीज़ें होती है, जहाँ पे आप थोड़े समय के लिए थोड़े से बेचैन हो जाते हो या आप काम पे ध्यान नहीं दे पाते। और जैसे ही आपने विटामिन मिनरल्स को सही कर दिया, आपको दिक्कतें कम हो जाती है। जब आपको कोई मानसिक बीमारी है जो कि डायग्नोस्ड हो और डॉक्टर ने आपको उसका डायग्नोसिस दिया हुआ हो, तो डायग्नोसिस के बेसिस पे भी आपका आहार बदलता है।
1: जी
0: जैसे कि आपको ADHD है, डिप्रेशन है, MDD है, तो हर एक बीमारी के हिसाब से आपका आहार थोड़ा थोड़ा बदल जाता है।
1: जी
0: मानसिक चीज़ों के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो आपके खाने में क्या ज़्यादा होना चाहिए, तो उसमें ज़्यादातर यहाँ पे नट्स का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया जा सकता है, क्योंकि उनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं। प्रोटीन का बहुत महत्व बढ़ जाता है। इसके अलावा जैसे ADD है या ADHD है, इसमें पैकेट फूड में जो रंग आते हैं वो उनके सिम्टम्स को बहुत ज़्यादा एग्रेवेट करते हैं, तो वो अवॉइड करना या नहीं खाना, उनसे दूर रहना या शक्कर से दूर रहना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फल सब्जी जितने विविध रंग के आप अपने प्लेट में रख सको वो उतना अच्छा। WHO बताता है कि हफ्ते में आपके कम से कम 30 इंग्रेडिएंट होने चाहिए। आप अनाज, सब्जी, फल या कोई धान है, दाल है, इसको गिन के देखिए क्या आप हफ्ते भर में 30 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट खाते हैं। भारत ऐसा देश है जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स आसानी से मिल जाते हैं।
1: अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर फल जो लोग खा नहीं सकते हैं, सुबह बहुत जल्दी निकल जाते हैं, रात को देर से आते हैं, तो उनका ये सिद्धांत होता है कि शनिवार रविवार को बैठ के इकट्ठा फल खा लेते हैं और उस दिन खाना स्किप करते हैं या थोड़ा बहुत खाना खाते हैं अनाज, तो ये सही तरीका है क्या?
0: नहीं, हर चीज़ का एक रास्ता होता है। जैसे
1: बिल्कुल
0: ऑफिस जाने वाले लोग होते हैं जो सुबह 7 बजे निकलते हैं और 11 बजे 10 बजे आ जाते हैं, उनका एक सही उपाय है कि आप जहाँ काम करते हो ना, वहाँ आजू बाजू में जो फल वाला हो उसके साथ जाके थोड़ी सी गपशप कर लो और उनको बता देना कि देखो भाई, मुझे हर दिन का एक फल चाहिए। और ये मैंने किया हुआ है कि आप वो फल वाले से बात करो कि मैं हर दिन एक फल लेकर जाऊंगा, आपको वही सुबह मिल जाएगा और वो आपको याद दिलाएगा कि आपने फल लिया नहीं है।
1: जी बिल्कुल, और होता उल्टा है कि लोग फास्ट फूड की दुकान ढूंढ लेते हैं और जाके फटाक से पैक करके खा लेते हैं, अमूमन यही होता है, वहां पर समोसा मिलेगा, बर्गर मिलेगा, आइसक्रीम शॉप ढूंढ लेते हैं। तो भाई, खाने का असर सेहत पर होता है, गाने का असर भी बहुत अच्छा असर होता है। कौन सा गाना सुनवाए आपकी पसंद का?
0: आप भी बता दीजिए कोई खाने के ऊपर गाना।
1: ऐसा गाना सुनते हैं जिसमें कि आइसक्रीम भी है और चॉकलेट भी है।
0: बढ़िया,
1: तो चलिए यही गाना सुनते हैं। फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन।
2: चॉकलेट, लाइम जूस, आइसक्रीम पापड़िया, पहले जैसे अब मेरे शौक है कहाँ, गुड़िया खिलौना।

0: अदिति जी, अभी एक बड़ा ही जरूरी मुद्दा है बच्चों में, खास तौर से, वो चाहे बच्चे में चाहे बड़े भी, लेकिन बच्चों में ज्यादा है, इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो रहा है। बार बार किसी को सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, खांसी होती है, तो इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए क्या कुछ खाना अपने जीवन में जोड़ ले रोजमर्रा की जिंदगी में, कुछ बताइए।
1: सही बात बोलूं तो आपको इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए या मजबूत करने के लिए कोई अलग चीज़ करना ज़रूरी नहीं होता। अगर आप अपने खाने को थोड़ा ध्यान से देखें, आपका खाना कहाँ से आ रहा है, आप कैसे बना रहे हो और किस तरीके से खा रहे हो, तो आपकी समस्या की राह यही है।
0: जी जी।
1: अक्सर क्या हो जाता है, लोग, जैसे मैंने कहा, जो मौसम में आपको फल सब्जियां मिल रही है वो नहीं खाते, बच्चे दूध नहीं पीते हैं या उनको खट्टी चीजें पसंद ही नहीं होती है। इसमें क्या हो जाता है कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए या मजबूत करने के लिए आपको विटामिन सी चाहिए, तो ना नींबू जा रहा है यहाँ पे, ना संतरा जा रहा है, ना आप कोई विटामिन सी पेरू जा रहा है, तो इसमें आपको दिक्कतें आ जाती है। जैसे मैंने कहा, जितना हम आगे बढ़ रहे हैं हमारी थालियां ना छोटी छोटी छोटी होती जा रही है, वही चार सब्जियां, वही दाल चावल, वही रोटी, हम अलग कुछ करने ही नहीं जाते, जिसके वजह से आप वो ही चार सब्जियों के गुण पाओगे, आपको उसके आगे कुछ मिलेगा ही नहीं। जैसे बारिश के मौसम में आपको सज्जन फली की पत्ते मिलते हैं, मुरिंगा जिसे कहा जाता है, वो इतना आयरन रिच होता है, फाइबर रिच होता है, मगर कितने लोग जानते हैं। मुझे अक्सर पूछा जाता है इसे बनाया कैसे जाए, पर ये छोटी छोटी चीजें जो आप अपने बच्चों के खाने में भी डाल सकते हैं, रोटी में थोड़ा सा डाल दिया, दाल में थोड़ा सा डाल दिया, जैसे मैंने कहा कि आप ये चीज पे ध्यान दो कि आपकी थाली में कितने रंग है, कितनी तरीके के इंग्रेडिएंट्स आप यूज कर रहे हो, और आप अपनी इम्यूनिटी को आराम से संभाल पाओगे। आपको कोई भी काढ़े की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई भी अलग से दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर हम क्या करते हैं, हमें सबको ना शॉर्टकट बहुत पसंद होता है, तो चलो इम्यूनिटी बढ़ानी है, सर्दी खांसी होती है तो हल्दी का पानी बना देंगे, बट हम भूल जाते हैं हम भारतवासी हैं, हम हल्दी वैसे भी खाने में बहुत इस्तेमाल करते हैं।
0: जी जी जी।
1: और हम जब हल्दी का पानी बनाते हैं, हम अकेले हल्दी का इस्तेमाल नहीं करते, उसमें थोड़ी सी दालचीनी भी डालेंगे, थोड़ा काली मिर्च भी डाल देंगे, वो एकदम गर्म मसाले का पानी हो जाता है।
0: बिल्कुल। क्या कुछ ऐसे फूड भी हैं, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो हमें रोज मिलते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिससे मेटाबॉलिज्म तेज होता है?
1: ज्यादातर अगर आप सब्जी और फलों के ऊपर ध्यान दें तो आपकी मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि वही चीज है जो हम कम खाते हैं। जैसे दिन में आपको कम से कम 200 से 300 ग्राम सब्जी खानी चाहिए, हम यहाँ पे 200-300 ग्राम चार लोगों के परिवार के लिए खाते हैं।
0: बिल्कुल। एक पाव सब्जी लेके बस मसाला डाल,
1: हाँ, और उसमें ढेर सारा आलू, ढेर सारा प्याज और सब्जी बन गई, वहां पे दिक्कत आ जाती है।
0: जी बिल्कुल।
1: आप मेटाबॉलिज्म की बात करें तो आपको बेसिकली आपके खाने के संतुलन पे ध्यान देना जरूरी है, आप उसको कम ज्यादा करने नहीं जा सकते, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं।
0: अदिति जी, आजकल एक फैशन हुआ है कि अपने वजन को कम करना है, कंट्रोल रखना है, लड़कियों में तो ये प्रवृत्ति बहुत देखी जा रही है कि दुबली पतली रखना, फिगर, जीरो फिगर, लड़के भी आजकल कम नहीं है, होड़ में शामिल है, और उसमें जिम संस्कृति आ गई है, हर तीसरा लड़का या तीसरा व्यक्ति जिम जाएगा, तो ये जो वर्कआउट है, वर्कआउट के पहले कितना आहार लेना चाहिए, वर्कआउट के बाद कितना आहार लेना चाहिए?
1: जी, वजन के पीछे भागना अच्छी बात है, बहुत ज्यादा भागना थोड़ी सी गलत बात हो जाती है। सिर्फ वजन के ऊपर हम ये

0: नहीं कह सकते कि ये इंसान सही में तंदुरुस्त है या नहीं। कभी कभी लोग वजन में थोड़े से हैवी होते हैं, मगर उनके बॉडी में मसल की मात्रा ज्यादा होती है और फैट परसेंटेज कम होता है।
1: जी।
0: कई बार ऐसे होते हैं कि दुबले पतले होते हैं लोग, मगर उनका फैट परसेंटेज जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है।
1: जी।
0: इसके लिए हम कहते हैं कि सिर्फ वजन के आधार पे या बीएमआई के आधार पे किसी की भी तंदुरुस्ती के ऊपर हम कुछ नहीं बोल सकते।
1: जी बिल्कुल।
0: जब हम बात करते हैं वर्कआउट की, आज क्योंकि हम ऐसे दौर पे रहते हैं जहाँ बाहर की खेल कूद, ट्रैवल, ये सब थोड़ा सा कम हो गया है। जहाँ हम पहले चल के जाया करते थे, अभी एस्केलेटर्स हैं, बस है, रिक्शा है, बाइक है। तो हमारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम कदम इस्तेमाल करते हैं वही कम है। लोग 1,000-2,000 पैदल इतना ही चल लेते हैं, उसके ऊपर वो चलते ही नहीं है। और इसके लिए जिम्स बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई तरीके का शारीरिक व्यायाम भी उतना ही ज़रूरी है। तो जब आप जिम करते हो, जिम में आप क्या करते हो बहुत महत्वपूर्ण है। आपका एक रूटीन होना ज़रूरी है। बस अखाड़े चले गए और आपको जो पसंद आया आपने कर लिया, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। एक ही समय या एक समय जो होता है, जिसे ये नहीं कहते कि 9 बजे तो 9 बजे जाओ, मगर सुबह के समय पे जाके वर्कआउट करो, तो एक वो टाइम फिक्स करना ज़रूरी है। जब भी आप वर्कआउट करने जाए तो वर्कआउट के पहले थोड़ा सा तो खाना ज़रूरी है। जैसे कोई भी फल खा लीजिए, या अगर आप नाश्ता कर रहे हैं या लंच कर रहे हैं या डिनर कर रहे हैं, आइडियली डिनर के बाद तो वर्कआउट हम मना कर देते हैं, बट लंच या नाश्ते के बाद जो हम करते हैं वर्कआउट, तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे का आपका गैप होना चाहिए। उससे क्या हो जाएगा कि आपको कभी भी वर्कआउट करने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। और जब भी वर्कआउट किया जाता है तब मसल टूटते हैं, उनको रीबिल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वर्कआउट के बाद आप कितने समय में क्या खाते हो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो वर्कआउट के बाद आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा सही में होनी चाहिए, कि जो भी आप प्रोटीन इस्तेमाल करें, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो चीला बना दीजिए, या कोई दाल एक कटोरी खा लीजिए, या थोड़ा सा पनीर ले लीजिए, या आप नॉन वेजिटेरियन है तो अंडा ले लीजिए, तो आपका प्रोटीन थोड़ा सा संभल जाता है। मगर प्रोटीन के साथ थोड़ी मात्रा में आपको कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत पड़ती है। कार्बोहाइड्रेट मतलब आप फल इस्तेमाल करो या कोई भी धान इस्तेमाल करो, ये बहुत आसान कर देता है। और वर्कआउट के बाद 1 से 1.5 घंटे के बीच में आपका खाना ये हो जाना चाहिए।
1: जी, एक गाना सुने।
0: जी,
1: कौन सा
0: आप ही बता दीजिए कोई गाना।
1: सुनते हैं ये गाना।

0: अदिति जी, अक्सर हम ये देखते हैं कि जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, पित्त की समस्या है, आईबीएस की समस्या है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उन्हें मना करते हैं कि खट्टी चीज़ें मत खाओ, और नींबू तो खट्टा ही होता है, और नींबू लोगों को पसंद भी है, और ये कहते हैं कि नींबू के बहुत सारे फायदे हैं, उसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है, तो क्या करना चाहिए? मतलब अगर नींबू खाओ तो एसिडिटी बढ़ती है, नहीं खाओ तो दिक्कतें होती है, जिसमें संतरा, नींबू और बहुत सारे साइट्रस फ्रूट हैं शामिल।
1: मुझे ऐसे लगता है कि हर इंसान को देखना चाहिए कि उनको क्या सूट कर रहा है क्या नहीं। जैसे आपने कहा, किसी किसी को नींबू से तकलीफ होती है, किसी को बिल्कुल भी नहीं होती। अगर आपको नहीं होती, आराम से खा सकते हो। अगर आप सिर्फ नींबू की बात करें या विटामिन सी की बात करें, आपको वो चाहिए आपके लाइफ में या तबीयत के लिए, तो सिर्फ नींबू एक चीज़ नहीं है जहाँ से विटामिन सी मिल सकता है। अगर मैं बोलूँ तो नींबू तो अक्सर गलत ही इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बार नींबू काट के फ्रिज में रख देते हैं आधा, या नींबू काट के बहुत घंटे खुला रहता है। अगर विटामिन सी ऐसे खुला रख दिया तो वो खराब हो जाता है, निकल जाता है उसमें से, तो आप सिर्फ खटास के लिए उसको खा रहे हो, विटामिन सी के लिए तो खा ही नहीं रहे हो।
0: जी,
1: वैसे ही नींबू आप एकदम गरम उबलते हुए पानी में डालोगे तब भी आपका नींबू का फायदा नहीं होगा। नींबू सिर्फ खटास करेगा, वो विटामिन सी आपको नहीं देने वाला है। तो आपको नींबू किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये भी समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए खाना बनने के बाद ऊपर से नींबू देते हैं। आप विटामिन सी की अगर बात करें तो नींबू छोड़ के भी आपके पास बहुत सारे उपाय हैं। आप जैसे कीवी इस्तेमाल करें या संतरा इस्तेमाल करें। आपको अगर खट्टी चीज़ें मना की है तो आप पेरू का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होता। आप मीठा वाला कर लें,
0: अमरूद,
1: तो उसमें आपको अच्छा खासा विटामिन सी मिल जाएगा। जो बेल पेपर्स होते हैं, कैप्सिकम, वो भी आपको बहुत ज़्यादा विटामिन सी भी दे सकते हैं। नींबू तो एक ही चीज़ है, आप संतरा, कीवी, ये सारी चीज़ें भी आराम से ले सकते हैं। कीवी देसी फल नहीं है, बट वो बहुत रिच सोर्स है विटामिन सी का। हमारे देसी ऑप्शंस में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे
0: आंवला
1: एक चीज़ है, उसके अलावा पपनस, पोमेलो बोलते हैं इंग्लिश में इसको, हिंदी का मुझे वर्ड नहीं पता है, बट वो भी ग्रेप फ्रूट बेसिकली, उसका भी इस्तेमाल हो सकता है। अमरूद का मैंने आपको बता दिया।
0: करौंदा,
1: करौंदा भी विटामिन सी है, बट करौंदा भी दो तीन तरीके के हैं। जैसे नॉर्थ में फालसा है, उसको भी करौंदा बोलते हैं, और महाराष्ट्र का भी करौंदा अलग है, तो उसमें थोड़े थोड़े अंतर है। आपको आंवले की तरह छोटे आंवले भी आते हैं, जो भी विटामिन सी युक्त होते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, या जिसको स्टार ये बोलते हैं, स्टार आंवला, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो।
0: आंवले के भी तो बहुत सारे रूप हैं। आंवला लोग उबाल के खाते हैं, चटनी बना के खाते हैं, और अचार कहते हैं, वो भी फायदेमंद है। तो इसमें फायदे वाले तत्व किसमें होते हैं, बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: जितने हो सके आप कम से कम उसको प्रोसेस करके खाए, उसमें सबसे ज़्यादा फायदा है। मगर मैं समझती हूँ कि कच्चा आंवला खाना सबके लिए नहीं पॉसिबल है, तो आप जिस भी रूप से खा सकते हो थोड़ा बहुत खा लीजिए। उसको मुरम्बा बना के या मीठा करके वो अवॉइड कीजिए।

0: चल जाएगी, अचार चल जाएंगे, बिना तेल के या कम तेल में बने हुए अचार चल सकते हैं। बट आंवले का जो सीजन है उसमें आप चटनी के रूप में उसको आराम से खा सकते हो।
1: जी जी एक बात और अदिति जी, फलों के साथ कुछ लोग नमक का प्रयोग करते हैं, मसाला नमक आजकल प्रचलित है, या फिर काला नमक खास तौर से संतरे में नींबू के साथ भी, या और भी फलों के साथ खाते हैं, अनार में भी लोग नमक डाल के खाते हैं, तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है, सही है या गलत है?
0: लोग अक्सर इसे स्वाद के लिए खाते हैं, ठीक है। हम अभी इस दौर

0: के साथ खाते हैं, अनार में भी लोग नमक डाल के खाते हैं, तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है, सही है या गलत
1: वो
0: है?
1: लोग अक्सर इसे स्वाद के लिए खाते हैं, ठीक है। हम अभी इस दौर में जी रहे हैं जहाँ हम खाने में बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये नमक की मात्रा जो बहुत ज़्यादा है वो हमें बीपी, हाइपरटेंशन, हार्ट इश्यूज की प्रॉब्लम बढ़ा रहा है। लोग सफ़ेद नमक से मुड़ के अभी डेजर्ट सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, मतलब हिमालय का नमक या काला नमक, सेंधा नमक और अलग अलग तरीके के नमक यूज़ कर रहे हैं। इसकी दिक्कत ये है ना कि इन नमक को टेस्ट नहीं किया जाता बहुत बार, इनमें क्या मिनरल्स है, विटामिन्स है, पता नहीं रहते। अगर आपको किडनी रिलेटेड इश्यूज है या कोई मेडिकल इश्यूज है तो ये नमक आपको तकलीफ दे सकता है। जो सफ़ेद नमक है हमें पता है कि वो जानकार दुश्मन है, हमें पता है वो बुरा है, हमें पता है कि ज़रूरी है ज़िंदगी में, मगर हमें पता है कि कम खाना है। बट जैसे आप सेंधा नमक की बात करें या लूनी नमक या डेजर्ट सॉल्ट की बात करें या हिमालयन सॉल्ट की बात करें, वो नमकीन जो उसकी मात्रा होती है वो कम होती है, तो अक्सर वो हम
0: ज़्यादा
1: थाली में ज़्यादा डालते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत आती है और वो आपके इलेक्ट्रोलाइट इश्यूज या ब्लड रिपोर्ट्स को खराब कर सकता है, आपकी हेल्थ कंडीशन को एग्रेवेट कर सकता है। तो अगर आपको मेडिकल कंडीशन है, कम नमक, टेबल सॉल्ट बेस्ट। आपको ना सॉल्ट लाइट की ज़रूरत है, ना आपको काला नमक, पिंक नमक, सेंधा नमक की ज़रूरत है।
0: जी,
1: अगर आप सेहत में ठीक हो, आप अलग अलग नमक का इस्तेमाल कर सकते हो, मगर दिन के अंत में आपको ये देखना है पूरे दिन में नमक कितना खाया। अगेन WHO रेकमेंड करता है कि 3 से 5 ग्राम नमक होना चाहिए, जो कि होता है 1 चम्मच। हम कितना खाते हैं? कम से कम 4 से 5 चम्मच दिन के, तो आराम से
0: दाल में भी बिल्कुल।
1: तो आपको क्या अलग रूप से फलों के साथ नमक खाना जरूरी है? नहीं
0: जी, बिल्कुल। अदिति जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी कारगर बातें आपने बताई हमारे श्रोताओं को, बहुत सारी जानकारी मिली। हमें भी उम्मीद है, हमारे श्रोताओं को भी बहुत पसंद आएगा ये कार्यक्रम, क्योंकि इतनी सारी जानकारी साझा की है आपने।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में पोषण सप्ताह और पोषण माह के उपलक्ष्य में आप सुन रहे थे न्यूट्रिशन अर्थात पोषण। इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत की पहली कड़ी। इस बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी आप सुनेंगे आज ही के दिन अगले सप्ताह। इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग मिला मंगेश सांगले से। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: आने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यह समारोह तालेगांव स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच मजबूत और भरोसेमंद संबंध है। डॉक्टर जयशंकर ने ये बात आज नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के विदेश मंत्री जेवियर बैटल से मुलाकात के दौरान कही। विदेश मंत्री ने मुक्त व्यापार समझौते को दिए गए मजबूत समर्थन के लिए लग्जमबर्ग का आभार व्यक्त किया।
1: Ours is a very trusted relationship.
2: हमारा रिश्ता बहुत भरोसेमंद है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हमने बहुत कुछ किया है और हम आगे भी और अधिक करने का भरोसा करते हैं, खासकर आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, विविधता लाने और भविष्य में मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी मिलने की संभावना के संदर्भ में।
0: इस अवसर पर श्री जेवियर बैटल ने कहा कि लग्जमबर्ग का भारत के साथ विश्वासपूर्ण और ईमानदार संबंध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत सिंह के लिखे एक लेख को सोशल मीडिया पर साझा किया। श्री मोदी ने कहा कि शिक्षक शिक्षा के कलाकार शीर्षक वाले इस लेख में जयंत सिंह ने बताया है कि शिक्षण एक कला और रचनात्मक कार्य है। इसके लिए मानवीय जुड़ाव, शिक्षण पद्धति और विद्यार्थियों की क्षमताओं को पहचानने की क्षमता जरूरी है। लेख में श्री सिंह ने यह भी बताया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उल्लास, विद्यांजलि और कई अन्य पहले शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को मजबूत कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र की यात्रा पर रहेंगे। वडोदरा में प्रधानमंत्री 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट GFF 2026 का उद्घाटन करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबार मशरिक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 परिसरों में छापेमारी की है। निदेशालय ने बताया कि यह मामला सांप्रदायिकता को कथित तौर पर बढ़ावा देने संबंधी सामग्री के प्रकाशन तथा अवैध लेनदेन के आरोपों से जुड़ा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन अधिकारियों की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई है, उन्हें तुरंत निलंबित किया जाएगा।
3: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
0: इस बीच पुलिस ने इमारत के मालिक हरिराम गुप्ता को राजस्थान के भिवाड़ी से गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि दिल्ली में अवैध 5 मंजिला भवनों को तत्काल सील करने के निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। इस हादसे में कई लोगों की मौत हुई और कई अन्य घायल हुए हैं। न्यायालय की पीठ ने कहा कि इस त्रासदी के लिए केवल भवन मालिक ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विश्वविद्यालय भी जिम्मेदार है। न्यायालय ने कहा कि विश्वविद्यालय ने दूसरे राज्यों से आने वाले छात्रों के लिए पर्याप्त आवास की व्यवस्था नहीं की है। न्यायालय ने बचाव कार्य में तेजी लाने और अधिक प्रयास करने के निर्देश दिए ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। अहमदाबाद में शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज के महिला कंपाउंड व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। शीतल देवी ने आज सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान की एजादा सेडान से होगा। वहीं सरिता कांस्य पदक के मुकाबले में चीन की वांग हुई तिंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: FM 107.2 MHz पर हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत, जिसे पेश करेंगी रूही।

0: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। शाम के 5 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने कहा कि ये सम्मान गोवा पुलिस की समर्पित सेवा, अनुशासन और राज्य के लोगों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति का निशान भी कहा जाता है। ये किसी पुलिस बल को दिया

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: धीमी इंटरनेट और महंगे बिल से हैं परेशान, तो लगाइए BSNL फाइबर का 495 वाला 100 Mbps प्लान। पहला महीना बिल्कुल मुफ्त, अगले 3 महीने तक हर

0: बिल पर 100 रुपये की छूट, फ्री वाईफाई मॉडम और इंस्टॉलेशन। अभी कॉल करें या व्हाट्सएप पर हाय भेजें 1800444 पर।
1: श्रोताओं लीजिए, अब सुनिए फिल्म संकेत।

जो जीता वही सिकंदर फिल्म से ये डुएट गीत हम आपको सबसे पहले सुनवा रहे हैं। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं जतिन ललित का संगीत, आवाजें हैं साधना सरगम और उदित नारायण की।

शदाओ, ये अगला गीत हमने चुना है विरासत फिल्म से। कुमार सानू और चित्रा ने इसे गाया है। रचना जावेद अख्तर की है, तर्ज है अनु मलिक की।

श्रोताओं, जावेद अख्तर का ही लिखा एक और गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म है 1942 अ लव स्टोरी। इसे संगीत से सवारा आर डी बर्मन में, आवाज कुमार सानू की है।

लता मंगेशकर का गाया गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी 1942 अ लव स्टोरी, संगीत था आरडी बर्मन का। आकाशवाणी चंडीगढ़ से आप फिल्म संगीत इस वक्त सुन रहे हैं एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। अब रुक कर रहे हैं जख्म फिल्म के इस गीत की ओर। गायक कलाकार अलका याग्निक, धुन तैयार की एमएम करीम ने, गीतकार हैं आनंद बख्शी।

श्रोताओं, सावरिया फिल्म से शान का गाया गीत आप सुन रहे थे। आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। अब पेश है स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सबसे पहले सुनते हैं सुविचार। सफलता की राह में मुश्किलें तो आएंगी, पर जो इंसान हिम्मत नहीं हारता वही एक दिन अपनी मेहनत से परिस्थितियां बदल देता है। श्रोताओं, इसे हमें भेजा था सुंदरनगर हिसार हरियाणा से मोनिका खरलवा, पंकज, शिवम, नैन्सी, सुरेश खरलवा जी ने। आप सभी को उमंग कार्यक्रम की ओर से धन्यवाद। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने लिखा है, देश हमारा, शान हमारी, तिरंगा है हमारी पहचान। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू ने। उन्होंने लिखा है, नमस्कार, जब भी अगस्त का महीना आता है हमारा मन आज़ाद हिंदुस्तान के लिए अपना जीवन समर्पित कर देने वाले अनेकानेक स्वतंत्रता सेनानियों के चरणों में अनायास ही नतमस्तक हो जाने को लालायित हो जाता है। आपने 10 अगस्त से 14 अगस्त वाले सप्ताह में सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल सरीखे महान स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन वृत्तांत उमंग कार्यक्रम में शामिल करके मन को उत्साहित और जोश से भर दिया। समयानुकूल कार्यक्रम पेश करना उमंग की पुरानी परंपरा है, हम इसके कायल हैं। आपकी पूरी टीम को धन्यवाद और आभार। आपका भी बहुत बहुत आभार संदेश भेजने के लिए। अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया, करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए लिखा है, अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी तरफ से भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो आइए जानते हैं। हमारा पहला प्रश्न था, सम्राट अशोक किस वंश के सम्राट थे? इसका उत्तर है साथियों, सम्राट अशोक मौर्य वंश के सम्राट थे। हमारा अगला प्रश्न था, शहीद बालक बाजी राउत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। शहीद बालक बाजी राउत का जन्म 5 अक्टूबर 1926 को ओडिशा राज्य के ढेंकानाल जिले के नीलकंठपुर गांव में हुआ था। फिर हमने आपसे पूछा था कि जापान में पुरानी मशीनों को रिटायर करने की इस सामाजिक परंपरा से हमें क्या संदेश मिलता है? इसका उत्तर आप सबने अलग अलग ढंग से दिया था, लेकिन मूल उत्तर है, जापान में पुरानी मशीनों को रिटायर करने की सामाजिक परंपरा से हमें संदेश मिलता है कि हमें अपनी उपयोग की हुई पुरानी वस्तुओं के प्रति भी सम्मान और धन्यवाद का भाव रखना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न था, जापान के क्यू शिराता की रेलवे स्टेशन को कब बंद कर दिया, जहां से काना हराड़ा नाम की स्कूली बच्ची ट्रेन लेती थी? इसका उत्तर है साथियों, जापान की स्कूली छात्रा काना हराड़ा रोज क्यू शिराता के स्टेशन से स्कूल जाने के लिए ट्रेन लेती थी। ये स्टेशन मार्च सन 1918 को तब बंद कर दिया गया जब उस बालिका के स्कूल का अध्ययन पूरा हो गया। और हमारा अंतिम प्रश्न था, सेब की खेती करने वाले श्री सत्यानंद स्टोक्स किस देश के, किस राज्य के निवासी थे? सत्यानंद स्टोक्स संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के फिलाडेल्फिया शहर के निवासी थे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की और प्रस्तुत है उमंग प्रसारण का मासिक संस्करण श्रोता संवाद।
3: नमस्कार श्रोताओं, उमंग कार्यक्रम के विशेष संस्करण श्रोता संवाद में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपका मित्र अजीत। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रति माह हम आपके लिए लेकर आते हैं श्रोता संवाद, जिसमें हम करते हैं चर्चा शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और NCERT की संयुक्त पहलों के बारे में। हमें पता है कि आपकी उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा।

0: तो चलिए अब आपकी उत्सुकता शांत कर देते हैं। हमारी आज की चर्चा का विषय होगा शिक्षा में जेंडर समावेशन। तो श्रोताओं, इस क्रम में आज हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर श्वेता तंवर। तो आपके बारे बता दूं कि आप एनसीईआरटी के जेंडर अध्ययन विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं। तो डॉक्टर श्वेता, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो सबसे पहले करते हैं चर्चा की शुरुआत इस प्रश्न के साथ कि जेंडर समावेशन से आपका क्या अर्थ है। दूसरे शब्दों में पूछूंगा, जब हम जेंडर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका तात्पर्य क्या होता है?
1: जी, इससे पहले कि हम जेंडर का अर्थ समझें, हमें लिंग और जेंडर के बीच का मूलभूत अंतर को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। जहां लिंग जैविक विभिन्नताओं से संबंधित है, वहीं जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है। जेंडर जैसे कि पुरुषत्व एवं स्त्रीत्व से जुड़ी विशेषताएं और व्यवहारों को संदर्भित करता है। जैसे किसी विशेष समाज में लड़कों, लड़कियों, पुरुषों और महिलाओं के दृष्टिकोण, भूमिकाओं, उत्तरदायित्वों तथा व्यवहार को आकार देता है। जब हम जेंडर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि समाज में सभी जो लिंग हैं, जैसे कि स्त्री, पुरुष या फिर और भी जेंडर आइडेंटिटीज हैं,
0: बालक बालिका हो सकते हैं।
1: हाँ, बिल्कुल। और उसके अलावा हमारे ट्रांसजेंडर्स भी हैं। अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वो ट्रांसजेंडर्स को भी इंक्लूड करती है।
0: तो आज का जो हमारा विषय था वो था जेंडर समावेशन, वो भी शिक्षा में। इसकी व्याख्या आप किस प्रकार से करेंगी?
1: जी, पहले तो हम बात करेंगे जेंडर इक्वालिटी की, जेंडर समानता की।
0: जी।
1: और उसके बाद फिर हम आएंगे शिक्षा के क्षेत्र में। तो जेंडर इक्वालिटी या फिर जेंडर समावेशन का अर्थ है जितने भी हमारे समाज में स्त्री, पुरुष या फिर अलग तरह की जेंडर आइडेंटिटीज हैं, जैसे कि ट्रांसजेंडर, उन सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, समान अवसर मिलने चाहिए तथा सम्मान मिलना चाहिए।
0: जी।
1: और उनको जितने भी हमारे क्षेत्र हैं, उन सभी में उनका पार्टिसिपेशन हर तरह से बराबर हो,
0: यानी उनकी भागीदारी या उनकी प्रतिभागिता बनी रहे।
1: हाँ।
0: आप ये कहना चाहते
1: जी,
0: हैं? जी। तो आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये होने जा रहा है और मुझे आशा है कि हमारे श्रोता भी इस प्रश्न के उत्तर के द्वारा बहुत संतुष्ट होंगे। तो मेरा दूसरा प्रश्न आपसे है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में जेंडर समानता को बढ़ावा देने के लिए एनसीईआरटी की क्या भूमिका है?
1: जी अजीत जी, ये प्रश्न अपने आप में ही बहुत महत्व रखता है आज के स्थिति में। अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो कि 6 साल पहले आई थी, आज अपना 6ठा वर्ष पूरा कर चुकी है।
0: जी।
1: और इसी के चलते एनसीईआरटी भी इसके सालगिरह को मना रहा है।
0: जी।
1: जैसा कि हम देख सकते हैं, और जेंडर इक्वालिटी और समावेशन के जो शिक्षा के मूल आधार हैं, उनको इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के स्तंभों में रखा गया है।
0: जी।
1: ताकि हर वर्ग के छात्रों को समान अवसर मिल सके। और इस नीति का जो मुख्य उद्देश्य है, वो स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी हमारे जो बालिकाएं हैं, ट्रांसजेंडर समुदाय के जो लोग हैं, उन सब में बिना भेदभाव के सुरक्षित तरीके से तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है उसको सुनिश्चित किया जा सके।
0: तो डॉक्टर श्वेता, हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, इसके विषय में कुछ और आप कहना चाहेंगी? यानी मेरा कहना है कि क्या इस पर कुछ और विस्तार आप देना चाहेंगी?
1: जी अजीत जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जेंडर इक्वालिटी की बात करती है, बट उससे पहले जरूरी ये है कि जेंडर इक्वालिटी की बात करने की जरूरत क्यों पड़ी।
0: जी।
1: तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी ये जो नीति है 2020 में आई, इन्होंने एक टर्म दिया सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, जिसको भी हम ये भी कह सकते हैं सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो लोग,
0: या तो वंचित वर्ग भी कह सकते हैं,
1: वंचित लोग जो हैं।
0: जी।
1: तो इसमें उन्होंने जेंडर आइडेंटिटीज को रखा, जैसे कि महिलाएं और ट्रांसजेंडर। दूसरा उन्होंने रखा सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज, जो कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिसमें कि SC ST OBC और हमारे माइनॉरिटीज भी आते हैं। इसके अलावा दिव्यांगजन भी हो सकते हैं। कुछ जो हमारे वर्ग ऐसे भी हैं जो भारत के दूर दराज इलाकों से आते हैं, तो उन तक भी संसाधनों की हमेशा जो है पहुंच नहीं हो सकी है पूरी तरह से। तो जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उन सभी को इंक्लूड करती है अपने उसमें,
0: उन सबको शामिल
1: करती
0: जी,
1: है
0: जी।
1: तो इसमें कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो जितनी भी हमारी बालिकाएं हैं, लड़कियां हैं या फिर ट्रांसजेंडर हैं, उन सभी को इन वर्गों में देखा जा सकता है। हमारी जो लड़कियां हैं वो SC ST OBC और माइनॉरिटीज के सेक्शन से भी आती हैं, कहीं ना कहीं वो जो ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज हैं उनमें भी दूर से आती हैं, या दिव्यांगजनों में भी हमारी बहुत सारी लड़कियां।

0: होती हैं,
1: जी
0: तो कहीं ना कहीं ऐसी डीजीज की बात जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति करती है। अब प्रॉब्लम क्या थी या कंसर्न्स क्या थे, वो ये कि इन सभी के जो स्कूल छोड़ने की दर है हमारी, जो लड़कियां हैं या
1: ड्रॉप आउट्स हम जिसको
0: ड्रॉप आउट
1: कहते हैं
0: रेट्स
1: जी
0: जिसको हम बोलते हैं, तो उनमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई।
1: किन
0: इन
1: में लड़कों की संख्या में या लड़कियों की?
0: लड़कों के अगर हम कंपैरिजन में देखें तो लड़कियों के जो ड्रॉप आउट रेट्स में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है।
1: जी
0: उसके बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उन कारणों पर चर्चा की गई है, उनको इसमें शामिल किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, और किस तरह से इन कंसर्न्स को, इन गैप्स को हम भर सकें, इन पर काम कर सकें, उसके बारे में कुछ प्रावधान और रणनीतियां दी गई हैं।
1: तो हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। अब हम ये जानना चाहेंगे, विशेष करके श्रोताओं की ओर से मेरा प्रश्न ये होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसके लिए प्रावधान क्या-क्या हैं?
0: जी, सबसे पहला और सबसे जरूरी प्रावधान जो है वो है सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट, जिसे कि हम ये कह सकते
1: तो
0: हैं
1: सुरक्षित वातावरण।
0: सुरक्षित बुनियादी जो ढांचा है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है
1: जी,
0: वो सबको मिले।
1: तो आपने बात की फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, यानी बुनियादी ढांचे की। तो बुनियादी ढांचे से क्या तात्पर्य है आपका?
0: जी, जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे स्कूल परिसर या फिर कॉलेजों के परिसर में कई बार क्या होता है, महिलाओं के लिए अलग से शौचालय नहीं होते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से उनका जो ड्रॉप आउट रेट्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ पाया गया है।
1: महिलाओं का या बच्चियों का भी कह सकते
0: हाँ,
1: हैं।
0: बच्चियों का,
1: जी
0: लड़कियों का।
1: हाँ
0: और इसके अलावा अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं सुरक्षित छात्रावास, हॉस्टल फैसिलिटीज जिसको हम देखते हैं, कई बार ऐसी लड़कियां जो सामाजिक रूप से वंचित वर्गों से आती हैं,
1: जी
0: उनके लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो अपने घर के आसपास इसको पढ़ें या फिर अपने घर में या स्कूल्स में, अच्छे स्कूल्स में जा सकें,
1: आवास की सुविधाएं नहीं होती हैं।
0: आवास की सुविधाएं जो हैं वो नहीं होती हैं। तो इसी तरह से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उन्होंने छात्रावास की फैसिलिटीज को अवेलेबल कराया है।
1: यानी उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि ये बच्चे जब पढ़ने आए तो उनके लिए आवासीय सुविधाएं भी उपलब्ध हों,
0: उपलब्ध हों।
1: आप ये कहना चाहती
0: जी
1: हैं?
0: जी
1: जी
0: तो छात्रावास के अलावा अगर हम देखें तो स्वच्छता की सुविधाएं, जैसे कि बेसिक हाइजीन और सैनिटेशन की हम बात करते हैं, एक साफ सुथरा माहौल की हम बात करते हैं,
1: हाँ
0: तो उसका निर्माण सुनिश्चित किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम ये भी उठाया जा रहा है कि जैसे कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जिसको हम KGBVs भी कहते हैं, तो उसमें उन लड़कियों को स्कूली शिक्षा पूरी करने में सहायता दी जाती है जो कि सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आती हैं, ताकि वो 12वीं तक अपनी शिक्षा को पूरा कर सकें और उनको वो सारी सुविधाएं मिल सकें। और नीति में ये भी कहा गया है कि जितने भी हमारे KGBVs हैं उनको पूरे देश में विस्तारित किया जाएगा।
1: जी
0: और इसी के साथ साथ कुछ ऐसी छात्रवृत्तियां भी हैं जिसे में स्कॉलरशिप हो गई, सो दैट हर लड़की को, हर ट्रांसजेंडर जो हमारा बच्चा है, विद्यार्थी है, उसको समान रूप से शिक्षा दी जाए। छात्रवृत्ति के साथ साथ मुफ्त साइकिल, स्कूटी या फिर वित्तीय प्रोत्साहन भी देने का प्रावधान है।
1: जी
0: और इसके साथ साथ एक बहुत ही जरूरी चीज है जो कि भेदभाव रहित पाठ्यक्रम, ये एक ऐसी बातें जो है इसमें की गई है कि पाठ्य पुस्तक या फिर शिक्षा पद्धति, उसमें सभी में जेंडर स्टीरियोटाइप्स और बायस को हटाना चाहिए। तो जो नीति है वो पाठ्य पुस्तक और शिक्षा पद्धतियों में भेदभाव रहित पाठ्यक्रम की बात करती है।
1: डॉक्टर श्वेता, हमने पाठ्यक्रम की बात तो सुनी, भेदभाव रहित पाठ्यक्रम ये क्या होता है, इसके बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे।
0: जी, ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही गहराई वाला प्रश्न है, क्योंकि देखा जाए तो पाठ्यक्रम हम सभी ने सुना है,
1: जी
0: लेकिन आज के जो हमारी स्थिति है, हम बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की, जेंडर समानता की,
1: जी
0: और खाली जेंडर समानता ही नहीं, हम बात करते हैं सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आने वाले सभी उन लोगों की,
1: जी
0: जैसे कि हमारे ट्राइबल, जैसे कि हमारे SC/ST,
1: आदिवासी
0: OBC,
1: लोग, जनजातीय
0: माइनॉरिटी,
1: लोग।
0: जनजातीय लोग, है ना? तो इन सभी का जो है समान रूप से रिप्रेजेंटेशन हो, हमारी टेक्स्ट बुक में इनके जीवन को शामिल किया जा सके, इनकी जो स्थिति है उसको दर्शाया जा सके।
1: तो जो मुझे समझ में आया वो कुछ ऐसा आया कि जेंडर इक्वेलिटी या जेंडर इश्यूज की जब हम बात करते हैं तो इसका अर्थ सिर्फ स्त्री और पुरुष या बच्चे और बच्चियां नहीं होता है,
0: जी
1: इसका अर्थ शायद ये है।
0: नहीं, मैं इसमें आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जेंडर का असली मतलब क्या है। जो हम ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स जो हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे समाज में आपने देखा होगा हम स्त्री की बात करते हैं, पुरुष की बात करते हैं, बट अभी ये एक पहला कदम जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने लिया

0: है वो ये है कि उन्होंने इस जेंडर आइडेंटिटी के कैटेगरी में ट्रांसजेंडर्स को भी रखा है.
1: जी
0: स्त्री और पुरुष ट्रांसजेंडर्स भी उनके साथ साथ समाज का हिस्सा बन सके.
1: जी
0: जिस तरह से पहले हमारे पाठ्यक्रम में या फिर हमारे सामाजिक ढांचे में स्त्री का काम अलग होता था, पुरुषों का काम अलग होता था, और किताबों में या पाठ्यक्रम में उनको उसी तरह से दर्शाया जाता था, तो इस बार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति
1: जी
0: है
1: जी
0: उन स्टीरियोटाइप्स को, उन बायसेस को तोड़ने की कोशिश करती है.
1: हाँ, कुछ उदाहरण जैसे कि समाज
0: और
1: में मिलते हैं कि जैसे अगर लड़का है तो क्योंकि वो शारीरिक श्रम अधिक कर रहा है
0: जी
1: तो ये माना जाता था कि लड़की का काम है नहीं ज्यादा,
0: जी
1: तो
0: हाँ
1: उसको आहार की जो सुविधा है ज्यादा मिले, इसको
0: जी
1: कम मिले,
0: जी
1: इस तरह की बातें होती थी पहले।
0: या हाँ, बहुत बार प्रोत्साहित किया जाता है या फिर वो उसी में भागीदारी उनकी होती है.
1: जी
0: लेकिन लड़कों की भागीदारी देखी जाए तो कोई भी भारी सामान या भारी वस्तु उठानी होती है
1: हाँ
0: तो ज्यादातर जो शिक्षक होते हैं वो लड़कों को ही उस चीज में बुलाते हैं.
1: जी
0: तो कहीं ना कहीं ये जितने भी हमारे स्टीरियोटाइप्स हैं, ये तो सिर्फ एक उदाहरण जो मैंने आपको दिया है, बट इसके अलावा बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर आपको लड़कों और लड़कियों में एक भेदभाव नजर आता है. तो कहीं ना कहीं शिक्षा नीति जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अपने पाठ्यक्रम के द्वारा, अपनी पाठ्य पुस्तकों के द्वारा इन स्टीरियोटाइप्स को हटाकर समानता की भावना को विकसित करने की दिशा देती है.
1: ये आपने बड़ी उपयोगी बात बताई और इसके द्वारा मुझे लगता है हमारे श्रोता भी बहुत लाभान्वित होंगे।
0: जी
1: तो अब आते हैं एनसीईआरटी पर। हम ये विशेष रूप से जानना चाहेंगे कि एनसीईआरटी के जेंडर विभाग का, जिस विभाग से आप हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और ये विद्यालयी शिक्षा को और अधिक समावेशी बनाने में किस प्रकार से योगदान दे रहा है आपका विभाग।
0: जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज, जेंडर अध्ययन विभाग जो है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसका जो नाम था वो था विमेन स्टडीज, डिपार्टमेंट ऑफ विमेन स्टडीज.
1: जी
0: बट क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट के बाद इसका नाम जो है डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज रखा गया.
1: जी
0: इसके पीछे ये कारण रहा कि विमेन स्टडीज जो है उनको हम खाली विमेन तक सीमित ना रखें.
1: जी
0: जो जेंडर का अर्थ था वो
1: बिल्कुल
0: सिर्फ विमेन तक सीमित रहता था, महिलाओं तक सीमित था. लेकिन उसके बाद इसमें हम ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ लड़कियों को हमें आगे बढ़ाना
1: जबकि
0: है.
1: जेंडर से अर्थ आपका दोनों का होता है।
0: जेंडर से अर्थ, बिल्कुल सही कहा आपने, जेंडर से अर्थ हमारा सभी, जो हमारी लड़कियां हैं, जो हमारे लड़के हैं और हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं, उन सभी को समान रूप से आगे बढ़ाना,
1: जी
0: किसी के साथ भी भेदभाव ना हो और सभी को समानता से आगे बढ़ाया जा सके. तो इसके लिए हमारा जो जेंडर अध्ययन विभाग है वो स्कूली शिक्षा में जेंडर इक्वालिटी, जेंडर समानता और संवेदनशीलता लाने के लिए एक समर्पित विभाग है. और पहले इसे, जैसे मैंने आपको बताया था, एक महिला अध्ययन विभाग कहा जाता था, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इसके दायरे को और बढ़ाया गया है. इसमें बालिकाओं के साथ साथ ट्रांसजेंडर छात्रों और जितने भी हमारे जो सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर समूह हैं उनको भी शामिल किया गया है.
1: तो इसमें आप लोग क्या क्या करते हैं, आप लोगों की गतिविधियां क्या हैं?
0: जी, सबसे पहला हमारा है कि हम नीतिगत क्रियान्वयन की हम बात करते हैं कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उसके तहत नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसमें कि दो हमारे फ्रेमवर्क्स हैं, पहला है फाउंडेशनल स्टेज के लिए और दूसरा है स्कूल एजुकेशन के लिए. तो इसको हम ये भी कह सकते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है उसमें जेंडर समानता के जो लक्ष्य हैं उनको जमीनी स्तर पर लागू करना.
1: जी
0: ये सबसे पहला हमारा जो मुख्य भूमिका है वो ये है. दूसरा है जितनी भी रूढ़िवादिता है उनका हम जो है उन्मूलन कर सकें.
1: रूढ़िवादिता, जैसे कुछ उदाहरण आप देना चाहेंगे?
0: जी हाँ, जैसे कि मैंने अभी आपसे बात की थी, हमारे समाज में बहुत सारे इस तरह के जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं जो कि महिलाओं और पुरुषों को अलग तरह से देखते हैं. महिलाओं का रोल अलग दिखाते हैं और पुरुषों का रोल अलग दिखाते हैं.
1: जी
0: तो उसी तरह की जो रूढ़िवादिताएं हैं उनको स्कूली शिक्षा के माहौल में, पाठ्यक्रम में तथा जो शिक्षण पद्धति है उनमें इन तरह की जो भेदभाव है उसको पूरी तरह से समाप्त करना.
1: जी
0: उसके अलावा जो हमारा हमारा जो विभाग है वो ये भी काम करता है कि जो समाज के सबसे पिछड़े, ग्रामीण इलाकों से आने वाले या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लड़कियां या जो ट्रांसजेंडर बच्चे हैं उनकी शिक्षा के अधिकारों की हम बात करते हैं.
1: तो ये जानकारी आपने बड़े विस्तार से हमें दी। अब हम ये जानना चाहते हैं ये कार्य आप किस प्रकार से करते हैं।
0: जी, ये जानना बहुत जरूरी है कि हम किस तरह के काम करते हैं. जितनी किताबें उनकी समीक्षा हम करते हैं ताकि उनमें से किसी भी प्रकार की जेंडर स्टीरियोटाइप्स या जेंडर बायसेस को या फिर भेदभाव को हटाया जा सके और एक सकारात्मक प्रतिनिधित्व को हम उसमें शामिल कर सकें. जैसे कि किताबों के चित्र हो,

0: फिर कहानियां हो जिसमें महिलाएं व ट्रांसजेंडर जो हैं हमारे, उनको वैज्ञानिकों के रूप में, नेताओं के रूप में, खिलाड़ियों के रूप में और विभिन्न पेशेवर भूमिकाओं में दिखाना सुनिश्चित हो सके।
1: हाँ,
0: हाँ
1: पायलट्स के रूप में इत्यादि, है ना?
0: जी
1: जी
0: जी
1: जी
0: तो आज हमारे श्रोता भी जानते होंगे इस चीज़ को, जिस तरह से चंद्रयान में हमारी बहुत सारी जो महिला वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस चीज़ में लीड ली,
1: उनकी प्रतिभागिता बहुत बड़ी
0: उनकी
1: रही,
0: बहुत ज़्यादा
1: सारे राष्ट्र
0: प्रतिभागिता
1: में इसकी
0: रही।
1: चर्चा है।
0: हाँ
1: जी
0: तो उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया और पूरे राष्ट्र में महिलाओं की एक अलग भूमिका को,
1: एक अलग छवि बनी
0: अलग
1: बल्कि।
0: छवि जो है
1: जी
0: उनकी
1: जी
0: बनी। तो इसी तरह से एक जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज की भी हम बात करते हैं, जिसको कि भाषा के रूप में अगर हम शिक्षण सामग्री में जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज की बात करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल चेयरमैन एक ऐसा शब्द है जहां पर एक एक ऐसी इमेज बनती है कि एक चेयरमैन एक पुरुष है,
1: हाँ, ऐसा लगता है कि वो एक पुरुष है।
0: एक
1: जी हाँ।
0: पुरुष है, तो उसकी बजाय हम बात कर सकते हैं चेयरपर्सन,
1: चेयरपर्सन।
0: विच इज अ
1: जी हाँ।
0: न्यूट्रल वर्ड। तो उसके लिए हम इस तरह की और भी बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिनको हम जेंडर न्यूट्रल उसमें देखते हैं।
1: ऐसे और कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, हम जानना चाहेंगे, ये बड़ा दिलचस्प हो रहा है।
0: जी
1: जी
0: बहुत जरूरी है ये देखना, जैसे कि फॉर एग्जांपल पुलिसमैन या पोस्टमैन, ज्यादातर हमने अपनी डेली लाइफ में,
1: जी
0: अपने जो रोज की जिंदगी में इसी तरह के शब्द सुने हैं। तो पुलिसमैन की जगह पुलिस पर्सन हो सकता
1: जी
0: है, ऐसे ही पोस्टमैन की जगह पोस्ट पर्सन भी हो
1: हो
0: सकता
1: सकता है, बिल्कुल हो
0: है
1: सकता
0: ना।
1: है। जी
0: तो अब जैसे कि एक्टर है, एक्टर वर्ड अपने आप में न्यूट्रल वर्ड है,
1: न्यूट्रल वर्ड
0: बट
1: है। जी
0: एक्ट्रेस जो है दैट शोज दैट इट्स अ फीमेल। तो इसी तरह से पुरुषों के लिए एक अलग शब्द भी होता है या फिर महिलाओं के लिए एक अलग शब्द भी हो सकता है, लेकिन ये ऐसे शब्द हैं जो कि सिर्फ पुरुष को दिखाया जाता है इन शब्दों में।
1: तो अब हम आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न में, और आपसे हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर श्वेता, कि शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों के लिए ऐसी कौन सी व्यावहारिक सलाह आप देना चाहते हैं, या प्रैक्टिकल एडवाइस आप कौन सी देना चाहते हैं, जिससे विद्यालय और घर दोनों स्थानों में, दोनों स्थानों पर जेंडर संवेदनशील वातावरण बनाया जा सके।
0: जी ये भी मैं कहना चाहूँगी कि हम सारा जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ एक शिक्षक को ना देते हुए, इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो अभिभावक हैं और हमारे छात्र जो हैं खुद, वो तीनों ही चीज़ें मिलकर जो है प्रयास करने चाहिए, जिसमें कि हमारे शिक्षक, अभिभावक और छात्र, इसके लिए हमें पुरानी जो रूढ़िवादी सोच है उसको छोड़कर आपसी सम्मान की संस्कृति को सबसे पहले अपनाना होगा। तो उनके लिए कुछ व्यवहारिक और सुझाव जो है वो मैं देना चाहूंगी
1: जी
0: इसके भीतर। सबसे पहले अगर हमने देखा होगा कि हमारी जो क्लासरूम की सेटिंग्स हैं, जो हमारा बैठने का जो व्यवस्था है, उसमें कहीं ना कहीं लड़के और लड़कियों को अलग बिठाया जाता है। आज भी जब हम कहीं दूर दराज इलाकों में जाते हैं तो लड़के और लड़कियों को अलग बिठाया जाता है, जबकि इस चीज़ को तोड़ते हुए हमें कक्षा में लड़कों और लड़कियों को एक साथ बिठाना चाहिए
1: जी
0: और एक मिश्रित रूप में, ताकि वो एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ सकें और टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में एक साथ भाग ले
1: और
0: सकें।
1: दोनों के बीच में एक समानता का भाव हो कि हम एक साथ
0: समानता
1: बैठ सकते हैं।
0: जी।
1: जी
0: और इसी तरह जैसे हमने अभी बहुत सारे उदाहरण की बात की थी, तो जो हमारा कामों का बंटवारा है, जिस तरह के काम हम रूढ़िवादी तरीके से बंटवारा करते हैं, ऐसा ना करें कि भारी सामान उठाने के लिए या फिर खेल के लिए हम लड़कों को प्रोत्साहन करें
1: और खाना
0: और
1: बनाने के लिए
0: खाना
1: महिला।
0: बनाने के लिए लड़कियों को करें,
1: जी
0: या सजावट का काम करने के लिए हम लड़कियों को आगे बढ़ाएं। तो सभी जिम्मेदारियों को बारी बारी से बदला जाए।
1: जी
0: और इसके अलावा जो हमारी जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज है उसको हम बहुत ज़्यादा प्रमोट करें
1: जी
0: और उन सभी को प्रोत्साहित करें कि लड़के या लड़कियों जो हैं उनको हम एक न्यूट्रल शब्द का इस्तेमाल कर सकें, जैसे कि जेंडर न्यूट्रल भाषा।
1: जेंडर न्यूट्रल भाषा, यानी कि जो तटस्थ भाषा है।
0: जी हाँ,
1: जी हाँ।
0: तो कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर कई बार हमने जो अपने कक्षा में देखा है, कुछ शिक्षक ऐसे जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर वो कहते हैं बच्चों या बच्चे। तो कहीं ना कहीं इस तरह से ये प्रोजेक्ट होता है कि लड़कियों को उस चीज में शामिल नहीं किया गया है। तो इसकी बजाय हम कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि विद्यार्थी या क्लास या फिर आप सभी लोग, इस तरह के सामूहिक शब्दों का प्रयोग करें, ना कि सिर्फ लड़के या लड़कियां।
1: हाँ, क्योंकि यदि बच्चों कहा जाए तो लगता है कि लड़कों को बोला जा रहा है।
0: जी हाँ, तो इसी तरह से हम विद्यार्थियों कह सकते
1: हाँ,
0: हैं, जो
1: विद्यार्थियों
0: कि
1: कह
0: एक
1: सकते
0: न्यूट्रल
1: हैं,
0: शब्द भी है,
1: शिक्षार्थियों कह सकते हैं।
0: शिक्षार्थियों भी कह
1: जी
0: सकते
1: हाँ,
0: हैं।
1: जी हाँ।
0: जी, कई बार क्या होता है ऐसे अनकॉन्शियस बायस होते हैं जिसको भी अनजाने में हम अपने बिहेवियर में ले आते हैं,
1: जी
0: तो ऐसा करने से हमें बचना चाहिए।

0: जहां लड़कियों की तारीफ सिर्फ शांत और साफ सुथरी होने के लिए करी जाती है, वहीं पर लड़कों की तारीफ बहादुर और बुद्धिमान होने के लिए की जाती है।
1: जी
0: तो बुद्धिमत्ता और मेहनत की तारीफ बिना जेंडर देखे की जानी चाहिए।
1: जी
0: और इसी के अलावा सकारात्मक जो भी रोल मॉडल्स हैं हमारे, उनके उदाहरण हमें देने चाहिए, जैसे कि महिला वैज्ञानिक या फिर पुरुष नर्स। कई बार आपने देखा
1: यस
0: होगा कि
1: जी
0: नर्स का जो, जैसे ही हम सुनते हैं इस
1: नर्स
0: प्रोफेशन
1: की
0: के
1: जो
0: बारे
1: छवि
0: में,
1: है
0: हाँ, वो जो छवि है उसमें हमें, हम सिर्फ महिलाओं को देखते हैं, या एयर हॉस्टेस की जो छवि है
1: जी
0: उसमें भी हम सिर्फ महिलाओं को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हीं स्टीरियोटाइप्स को हम जो है चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
1: हाँ, एयर होस्ट शब्द बहुत कम सुनाई पड़ता है
0: जी, एयर होस्ट आपको नहीं सुनाई
1: जी।
0: देता। उसके अलावा एक दूसरा शब्द होता है स्टीवर्ड, शायद, मुझे नहीं पता कि वो ठीक है,
1: दोनों यूज
0: बट
1: होते हैं जी
0: हाँ। तो हम उसकी जगह एक ऐसे रोल मॉडल्स को, सकारात्मक जो उदाहरण दे सकें लड़कियों को, महिलाओं को, उस तरह के उदाहरण को हमें शामिल करना चाहिए, ताकि हमारे सभी बच्चे हर क्षेत्र में अपने उस अस्तित्व को स्वीकार कर सकें।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंतिम प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूंगा, वो ये है कि यदि कोई शिक्षक या

0: मुझे नहीं पता कि वो ठीक है,
1: दोनों यूज
0: बट
1: होते हैं जी.
0: हाँ, तो हम उसकी जगह एक ऐसे रोल मॉडल्स को सकारात्मक जो उदाहरण दे सकें लड़कियों को, महिलाओं को, उस तरह के उदाहरण को हमें शामिल करना चाहिए, ताकि हमारे सभी बच्चे हर क्षेत्र में अपने उस अस्तित्व को स्वीकार कर सकें।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद. अब अंतिम प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूंगा, वो ये है कि यदि कोई शिक्षक या विद्यालय जेंडर संवेदनशील शिक्षण सामग्री या प्रशिक्षण या मार्गदर्शन आपके विभाग से प्राप्त करना चाहे, तो आप उन्हें किस प्रकार से सहायता प्रदान करेंगे?
0: जी, तो एनसीईआरटी के बहुत सारे डिजिटल पोर्टल्स हैं, जिसमें कि प्रकाशन और समर्पित विभागों के माध्यम से भी इसे पूरी तरह से मुफ्त व ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं हमारे श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि सबसे पहला, आपने अगर सुना होगा तो दीक्षा पोर्टल भी है
1: जी
0: और उसका एक मोबाइल ऐप भी है, वो आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। दूसरा हमारा ई पाठशाला पोर्टल है, उस पर भी जितनी भी हमारी वेबसाइट्स हैं, सभी तरह की जो सामग्री है उसको आप जाकर देख सकते हैं। तीसरा हमारा जो जेंडर अध्ययन विभाग, उसकी वेबसाइट पर भी हर तरह की जो सामग्री है और हर तरह की जो हमारे मॉड्यूल्स हैं उनको आप प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी
0: इसके अलावा जो है हमारा एनसीईआरटी का एक पब्लिकेशन डिवीजन, जहाँ पर किताबों की बिक्री भी होती है, तो यहाँ पर भी आप उस पोर्टल पे जाके ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, जो सीधे आपके स्कूल या घर पर डिलीवर हो जाएगी।
1: जी
0: मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी अजीत जी, एक बहुत जरूरी जो कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने लिया, वो ये कि लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए समान गुणवत्ता वाली शिक्षा, इसको प्रदान करने के लिए एक विशेष कोष बनाया गया है, जिसको हम जेंडर इंक्लूजन फंड भी बोलते हैं। इस नीति में विशेष रूप से लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों को शामिल करने का प्रावधान है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्वेता जी.
0: धन्यवाद अजीत जी।
1: हमें आशा है कि हमारे सभी श्रोताओं को आज की बातचीत से, हमारी चर्चा से सच में बहुत लाभ प्राप्त हुआ होगा, ऐसा हमारा विश्वास है. तो श्रोताओं, हमारी आशा है कि आज की बातचीत आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद रही, और यदि आपको अच्छी लगी तो ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया हमें लिख भेजिए. एक बार फिर से आप सबको हमारा नमस्कार.
0: नमस्कार।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्रोता संवाद। हमें आज के कार्यक्रमों के लिए आपसे प्रतिक्रिया की आशा रहेगी। हमारा टोल फ्री नंबर है 800-440-5559, और साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमें संदेश भेज सकते हैं। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग। FM 107.2 MHz ते ए आकाशवाणी है, ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। शाम दे 6 वजन वाले ने हुन तो कुछ ही पलां जैसी आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तो हिंदी विच समाचार रिले करांगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की दो दो विधानसभा सीट और पुदुचेरी की एक सीट पर उपचुनाव की भी घोषणा की गई। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मदुरंतकम और धर्मपुर सीट, पश्चिम बंगाल की रिजयनगर और नंदीग्राम सीट तथा पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना बुधवार को जारी की जाएगी। नामांकन इस महीने की 16 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 6 अक्टूबर को होगा और मतगणना 16 अक्टूबर को की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पदक पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृहमंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
1: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट

0: कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
1: गोवा के तले गांव में आयोजित समारोह में श्री शाह ने 1930 साइबर धोखाधड़ी हेल्पलाइन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वॉइस असिस्टेंट सेवा भी शुरू की। यह 12 भाषाओं में नागरिकों और पर्यटकों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के पूंजीगत प्रस्तावों को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 98% सामान भारतीय कंपनियों से खरीदे जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क से भेंट की। बैठक में भारत और कोष के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान कोष के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र को मजबूत करने में भारत की भूमिका की सराहना की गई। लग्जमबर्ग के ऊर्जा तथा पर्यटन मंत्री लेक्स डेल्स ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अंतरिक्ष क्षेत्र में मौजूदा सहयोग, भविष्य की संभावनाओं और संस्थागत तथा व्यावसायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। डॉक्टर सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों देशों की साझेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत सिंह का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा किया है। श्री मोदी ने कहा कि शिक्षक शिक्षा के कलाकार शीर्षक वाले इस लेख में जयंत सिंह ने बताया कि शिक्षण एक कला और रचनात्मक कार्य है। लेख में श्री सिंह ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उल्लास, विद्यांजलि और कई अन्य पहलें शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया मजबूत कर रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। नई दिल्ली में फार्मा मैक टेक और लैब नेक्स्ट एक्सपो 2026 के उद्घाटन समारोह में श्री गोयल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा का दायरा केवल इलाज तक सीमित नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्यों की भागीदारी बढ़ाकर कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत करने की कार्य योजना की समीक्षा की गई। श्री चौहान ने निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी और समय पर सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन अधिकारियों की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई है उन्हें तुरंत निलंबित किया जाएगा। इस बीच पुलिस ने इमारत के मालिक हरिराम गुप्ता को आज राजस्थान के भिवाड़ी से गिरफ्तार किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस दुर्घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। न्यायालय ने कहा कि इस त्रासदी के लिए केवल भवन मालिक के साथ दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विश्वविद्यालय भी जिम्मेदार है। अहमदाबाद में शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला के महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। शीतल देवी ने सेमीफाइनल में आज सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान की एजदा सेदान से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ए आकाशवाणी ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ ते।
3: अरे भाई, क्या तुम्हें पता है कि हमारे भट्टे पर जो नया मजदूर आया है उसके हाथ पैरों पर बहुत से दाग हैं। उसे इन पर चोट लगने से भी दर्द नहीं होता।
4: अरे ये तो कुष्ठ रोग का लक्षण है, तुम उसे अभी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाओ।
5: यदि आपके आसपास किसी भी व्यक्ति में कुष्ठ रोग का कोई भी लक्षण नजर आए तो उसे तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं। यदि संदिग्ध व्यक्ति में कुष्ठ रोग पाया गया तो सरकार द्वारा सूचित करने वाले व्यक्ति को 250 रुपए दिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: धीमी इंटरनेट और महंगे बिल से हैं परेशान, तो लगाइए BSNL फाइबर का 495 वाला 100 Mbps प्लान। पहला महीना बिल्कुल मुफ्त, अगले 3 महीने तक हर बिल पर 100 रुपए की छूट, फ्री वाईफाई मॉडम और इंस्टॉलेशन। अभी कॉल करें या व्हाट्सएप पर हाई भेजें 1800444 पर।
2: अरोड़ा प्लाईवुड
3: यहाँ है PVC, WPC, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और HDHMR प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
2: घर के

0: मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाई वर्ल्ड एट SU 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
1: हे चंडीगढ़, मैं विवेक ठाकुर अंतर्राष्ट्रीय जूडो कोच। अगर आपकी सिटी में भी कोई ऐसी जगह, कहानी, ट्रेडिशन या टैलेंट है जो इंडिया को पता होना चाहिए, देन दिस इज योर चांस। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज में अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो बनाइए और अपने शहर की यूनिक पहचान को देश के सामने लाइए। बस माई वेव्स पर लॉग इन कीजिए, जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनिए और अपनी वीडियो को 31 अगस्त 2026 तक अपलोड कर दीजिए। सो डोंट जस्ट विजिट योर सिटी, डिस्कवर इट्स जेम्स।
2: श्रोतियों, गैर फिल्मी गीत असीं तुहानू सुनवा रहे हैं अकाशा ते आसा सिंह की आवाज़

0: ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਕਾਸਾ ਦਾ ਗਾਇਆ ਇਹ ਗੈਰ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਐਫਐਮ 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਤੇ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਸਮਾਚਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ 6:10 ਤੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ 6:20 ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने स्वच्छ वायु के लिए समर्पित प्रयासों, उचित योजना और जमीनी स्तर पर प्रभावी काम करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ाने की घोषणा की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों संबंधी अटकलों को खारिज किया। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 10वीं से 12वीं कक्षा के 5,00,000 विद्यार्थियों को टैबलेट और डेटा सिम देने का फैसला किया और हरियाणा को जल्द ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा है कि स्वच्छ वायु पर्यावरणीय विलासिता के बजाय एक मूलभूत आवश्यकता है। नई दिल्ली में आज स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में न्यायमूर्ति श्रीवास्तव ने कहा कि स्वच्छ वायु जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
2: ये उन प्रयासों को पहचानने के लिए है जो पूरे देश में विभिन्न शहरों और वार्डों द्वारा ये सुनिश्चित कर

0: के लिए किए गए हैं कि हवा की गुणवत्ता बनी रहे और प्रदूषक तत्व PM10 तथा PM2.5 का स्तर उन सीमाओं तक नीचे लाया जाए जो नियामकों द्वारा तय की गई है। स्वच्छ हवा सिर्फ एक आकांक्षा नहीं है बल्कि ये एक व्यवहारिक लक्ष्य है जिसे समर्पित प्रयासों, उचित योजना और जमीनी स्तर पर प्रभावी काम के माध्यम से हासिल किया जा सका है।
1: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत में चिकित्सा पर्यटन में आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की बड़ी क्षमता है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा और कल्याण एक्सपो संजीवनी 2026 में श्री गोयल ने कहा कि भारत अपनी मजबूत चिकित्सा व्यवस्था के जरिए दुनिया की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत को उच्च गुणवत्ता, पारदर्शिता और मरीजों की जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए वैश्विक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए मानक स्थापित करने चाहिए। श्री गोयल ने बताया कि पिछले 7 वर्ष में 35 लाख अंतर्राष्ट्रीय मरीजों ने भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ाने की घोषणा की है। योजना के तहत अब पारिवारिक आय की वार्षिक सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1,80,000 रुपए कर दी गई है ताकि अधिक से अधिक महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेने या पंजीकरण कराने से किसी भी महिला को अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ या पेंशन उनकी बंद नहीं होगी। पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए जल्द ही रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोला जाएगा। वर्तमान में राज्य के लगभग 10 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि न तो उसका निजीकरण और न ही उसका महत्व कम किया जाएगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का उद्देश्य अंतरिक्ष कार्यक्रम को सक्षम बनाना है। इसरो ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। इसलिए इन सुधारों को निजीकरण के बजाय पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार और क्षमता वृद्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। इसरो ने कहा कि परिपक्व और विस्तार योग्य तकनीकी क्षमताओं को भारतीय उद्योग द्वारा तेजी से विकसित किया जा सकता है। इससे बड़े पैमाने पर उत्पादन, व्यावसायीकरण, नवाचार और वैश्विक बाजारों तक पहुंच संभव होगी, जबकि इसरो के वैज्ञानिक और तकनीकी मानव संसाधन को उन्नत अनुसंधान, अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों और जटिल राष्ट्रीय मिशनों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलेगी। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 10वीं से 12वीं कक्षा के 5 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट और डेटा सिम देने का फैसला किया है ताकि उन्हें आधुनिक व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में हुई उच्च अधिकार प्राप्त समिति की बैठक के बाद यह जानकारी दी गई। बैठक में इसके लिए 5 लाख डेटा सिम की खरीद सहित 90 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों को मंजूरी दी गई। बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 59 नई एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, असंध चीनी मिल के रखरखाव और बिजली निगम के लिए बैटरियों की खरीद को भी स्वीकृति दी गई। हरियाणा को जल्द ही एक प्रमुख कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि इस दिशा में लगातार काम हो रहा है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा ई शासन को मजबूत करने के लिए राज्य में 25,201 अटल सेवा केंद्र पंजीकृत किए गए हैं और अंत्योदय सरल पोर्टल के जरिए 75 विभागों की 946 सेवाएं ऑनलाइन दी जा रही हैं। इसके अलावा डिजी लॉकर अपनाने में हरियाणा देश में अग्रणी राज्य बना है, जहां 228 प्रकार के दस्तावेज डिजिटल रूप में उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क के लिए 8,468 वाईफाई हॉटस्पॉट लगाए गए हैं और प्रशासनिक कार्यों के लिए 44 विभागों में ई

ऑफिस प्रणाली लागू की गई है। वहीं मुख्यमंत्री शिकायत निवारण पोर्टल के माध्यम से अब तक 15,32,000 से अधिक शिकायतों का समाधान किया जा चुका है और सोशल मीडिया की शिकायतों के लिए सोशल मीडिया शिकायत ट्रैकिंग प्रणाली भी शुरू की गई है। हरियाणा भाजपा की अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक पूरे देश में सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। आज चंडीगढ़ में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन, सेवा और त्याग के 25 वर्षों के कार्यकाल को समर्पित है। अर्चना गुप्ता ने कहा कि सेवा ही संगठन के विचार के साथ पार्टी कार्यकर्ता इस अभियान के जरिए प्रधानमंत्री के 25 वर्षों के सेवा कार्य और जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पंचकुला जिले में विशेष गहन पुनर्मूल्यांकन के दूसरे चरण की प्रक्रिया चल रही है। काम में तेजी लाने के लिए जिले में 12, 13, 26 और 27 सितंबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सतपाल शर्मा ने युवाओं से 30 सितंबर तक फॉर्म 6 भरकर मतदाता पहचान पत्र बनवाने की अपील की है। अधूरी जानकारी के कारण नोटिस पाने वाले मतदाता संबंधित बीएलओ के पास दस्तावेज जमा कराकर अपना वोटर कार्ड अपडेट करा सकते हैं। इसके अलावा मतदाता सूची में नाम न होने पर भी बीएलओ से संपर्क किया जा सकता है। फरीदाबाद के ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में आज निशुल्क योग शिविर का शुभारंभ किया गया। पतंजलि योगपीठ के सहयोग से आयोजित इस शिविर में डॉक्टरों, अस्पताल स्टाफ, विद्यार्थियों, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर कालिदास चौहान ने कहा कि योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य का माध्यम नहीं बल्कि मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और संतुलित जीवन शैली का महत्वपूर्ण आधार है। नियमित योगाभ्यास से लोगों को स्वस्थ एवं तनावमुक्त जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने समाज के अधिक से अधिक लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर हेमंत अत्री ने बताया कि यह शिविर 13 सितंबर तक प्रतिदिन प्रातः 5:30 बजे से योगाभ्यास के जरिए कराया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने स्वच्छ वायु के लिए समर्पित प्रयासों, उचित योजना और जमीनी स्तर पर प्रभावी काम करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ाने की घोषणा की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों संबंधी अटकलों को खारिज किया। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 10वीं से 12वीं कक्षा के 5 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट और डेटा सिम देने का फैसला किया और हरियाणा को जल्द ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: वो किथे है तीदा नवा खाता ते मेरी KYC अपडेट। ये तो चटपट वाला काम है। किवें जे KYC दे वेरवे विच बदलाव ने जा सिर्फ पता बदलिया है ता रजिस्टर्ड ईमेल मोबाइल ऑनलाइन जा चिट्ठी राही सेल्फ डिक्लेरेशन दे दियो अते बाकी बदलाव घर बैठे वीडियो KYC आधार OTP ते आधार आत eKYC नाल सिर्फ बैंक दे अधिकृत चैनला रही।
3: ये तां नूडल बनान जिन्ना सोखा है। RBI कहंदा है
4: KYC सुरक्षित बैंकिंग वल पहला कदम।
5: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। पहला बुलेटिन दियां खास खबरां। केंद्र दी मार्च 2027 तक 300 कृषि विज्ञान केंद्रां दे बुनियादी ढांचे अते लॉजिस्टिक्स नूं अपग्रेड करन दी योजना। पंजाब दे राज्यपाल अते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ दे प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड दे 11 KV दे ओवरहेड बिजली वंड नेटवर्क नूं जमींदोज केबल सिस्टम

0: ऐसे समय में हरियाणा में ठोस कचरा प्रबंधन, वेस्ट टू एनर्जी, वायु प्रदूषण नियंत्रण और सीवेज ट्रीटमेंट के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास विशेष महत्व रखते हैं। हरियाणा में प्रतिदिन लगभग 5,600 टन नगर पालिका ठोस कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें से लगभग 70% के निपटान की बात कही गई है। लक्ष्य 100% वैज्ञानिक निपटान का है। इसके लिए राज्य में 13 इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट स्थापित करने की योजना है। पुराने डंपिंग ग्राउंड में वर्षों से जमा कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान भी महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में क्लस्टर आधारित एकीकृत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार की है। फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, गुरुग्राम, अंबाला, करनाल, हिसार और पंचकूला सहित विभिन्न शहरों को अलग अलग क्लस्टरों में शामिल किया गया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य केवल कचरे को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना नहीं, बल्कि उसका वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण करना है। कचरे से खाद, बायोगैस और बिजली तैयार करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इससे एक ओर शहरों में कचरे के ढेर कम होंगे, वहीं दूसरी ओर कचरे को आर्थिक संसाधन में बदलने की संभावना भी बढ़ेगी। कचरा संग्रहण, वाहनों की लाइव ट्रैकिंग और नागरिकों की शिकायतों के समाधान के लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय ई समाधान पोर्टल और ऐप जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। तकनीक के उपयोग से कचरा संग्रहण व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाई जा सकती है। हरियाणा में शहरी कचरा प्रबंधन को नई दिशा देने के लिए 4 इंटीग्रेटेड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इन संयंत्रों के माध्यम से हिसार, अंबाला, फरीदाबाद और गुरुग्राम क्लस्टर में प्रतिदिन कुल लगभग 5,000 टन कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण किया जाएगा। मुख्यमंत्री का मानना है कि सभी को यह समझना जरूरी है कि आधुनिक कचरा प्रबंधन का उद्देश्य केवल कचरे को जलाकर बिजली पैदा करना नहीं होना चाहिए। प्राथमिकता कचरे को कम करना, पुनः उपयोग करना और अधिकतम रिसाइकल करना होनी चाहिए। ई वेस्ट भी तेजी से बढ़ती चुनौती है। प्रदेश में 42 ई वेस्ट रिसाइक्लर हैं और प्रत्येक जिले में ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर स्थापित करने की योजना है। इससे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से निकलने वाले खतरनाक कचरे को सामान्य कचरे से अलग रखने और उसका सुरक्षित पुनर्चक्रण करने में मदद मिलेगी। स्वच्छ शहर की पहचान केवल साफ सड़कों से नहीं होती, सीवेज का वैज्ञानिक प्रबंधन भी उतना ही आवश्यक है। हरियाणा में कुल सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता लगभग 2,343 MLG है, जिसमें से लगभग 74% क्षमता का उपयोग हो रहा है। राज्य का लक्ष्य सभी डिस्चार्ज पॉइंट्स को सीवरेज नेटवर्क से जोड़कर उपलब्ध क्षमता का 100% उपयोग करना है। उपचारित सीवेज के पानी को दोबारा उपयोग में लाने के लिए सिंचाई संबंधी 27 योजनाएं तैयार की गई हैं, जिनमें से 11 पूरी हो चुकी हैं। मसानी बैराज को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। यदि उपचारित पानी का बड़े पैमाने पर कृषि और अन्य गैर पेय उपयोगों में सुरक्षित इस्तेमाल बढ़ाया जाता है, तो इससे भूजल और ताजे पानी के स्रोतों पर दबाव कम किया जा सकता है। स्वच्छता ही सेवा जैसे अभियान तभी सफल हो सकते हैं जब सरकार के प्रयासों के साथ नागरिकों की भागीदारी भी हो। शहरों में कचरा पैदा होने के बाद उसका प्रबंधन करना जरूरी है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि कचरा पैदा ही कम हो। घर से ही गीले और सूखे कचरे को अलग करना, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना, ई वेस्ट को अलग जमा करना, सार्वजनिक स्थानों पर कचरा न डालना और स्थानीय निकायों की कचरा संग्रहण व्यवस्था का सहयोग करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। 17 सितंबर से शुरू होने वाला स्वच्छता अभियान हमें केवल एक दिन या एक पखवाड़े के लिए सफाई करने की प्रेरणा न दे, बल्कि पूरे वर्ष स्वच्छता को अपनी जीवन शैली बनाने का संकल्प दे। जब नागरिक जिम्मेदारी, आधुनिक तकनीक और प्रभावी सरकारी व्यवस्था एक साथ काम करेंगे, तभी हरियाणा वास्तव में स्वच्छ, स्वस्थ, प्रदूषण मुक्त और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार प्रदेश बनने की दिशा में आगे बढ़ सकेगा। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।
1: FM 107.2 MHz से आकाशवाणी का चंडीगढ़ केंद्र है। आओ हुण सुनदे हां कुछ पंजाबी गीत। पंजाबी गीतां दे इस प्रोग्राम विच पहला गीत है शहरी मान दी आवाज़ दे विच, जिसनूं संगीत दित्ता है निक तमू ने।

0: che ruina.
1: कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
2: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
1: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार का।

0: टाइम्स ऑफ इंडिया चैलेंज,
1: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं, माई वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें,
0: मोबाइल पर आए ओटीपी को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
1: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप माई वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो कहिए अपने शहर, अपने गाँव की कहानी अपनी जुबानी।
0: Gems of India Challenge।
2: ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੀਤ ਦਿਲ ਸਭ ਦੇ ਵੱਖਰੇ।

0: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी धमाका जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी 1000 प्लस विनर्स 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन 25 सितंबर नु लकी ड्रॉ होवेगा आज ही खरीदो TNC अप्लाई
1: जो स्टील देश के रेलवेज ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार मजबूत लचीला भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़ सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल

0: फौजी साथियों, ये गीत आपने सुना फिल्म राजी से, आवाज़ सुनिधि चौहान की थी। गीत के बोल गुलजार और अलामा इकबाल के, और संगीत शंकर एहसान लॉय का।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीय

फौज जी साथियों, ये गीत आपने सुना फिल्म सिलसिला से, आवाज़ें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की थी। गीत के बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने और संगीत शिवहरी का।

फौजी साथियों, ये गीत आपने सुना फिल्म शराबी से, आवाज़ें किशोर कुमार और आशा भोसले की थी। गीत के बोल लिखे थे अनजान और प्रकाश मेहरा ने, संगीत बप्पी लहरी का।

0: उसका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध

फौजी साथियों, गीत आपने सुना फिल्म मैंने प्यार किया से, आवाज़ एसपी बाला सुब्रमण्यम की। गीत के बोल लिखे थे असद भोपाली ने और संगीत राम लक्ष्मण का। समय एक छोटे से अंतराल का, शेष कार्यक्रम इस अंतराल के बाद।

0: हो जी साथियों, ये गीत आपने सुना फिल्म आशिकी से, आवाज़ें कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की थी। गीत के बोल रानी मलिक के और संगीत नदीम श्रवण का।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना।

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरा होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

फौजी साथियों, गीत सुन रहे हैं आप फिल्म सिलसिला से, आवाज़ें अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर की, गीत के बोल जावेद अख्तर के और संगीत शिव हरी का। इसी के साथ जयमाला कार्यक्रम समाप्त होता है। जय हिंद।

0: ये नहीं नहीं यहाँ से नहीं, ये हाँ इस जगह से ठीक रहेगी, ये मुंह ऐसा कर लूँ थोड़ा सा, ये हाँ ये हो गई पूरी 70। वाह क्या फोटो आई है, अब डिफरेंट एंगल्स 30 फोटो और हो जाएं तो पूरी हो जाएगी 100। वाह
1: अजी सुनते हो, कहाँ
0: आई शर्ट एंड,
1: हो इतनी देर से? चाय ठंडी हो रही है
0: अरे
1: आपकी?
0: हाँ आ रहा हूँ बस आ रहा हूँ आ ही रहा हूँ, ये बस एक बार शर्ट चेंज कर लूँ, एक फोटो और खींच लूँ ये इस तरफ से, नहीं नहीं यार ये तो पहले भी हो चुकी है,
1: अरे
0: ऐसे
1: कर क्या रहे हो आप?
0: अरे आ रहा हूँ भाई आ रहा हूँ, 1 मिनट आ ही रहा हूँ बस एक फोटो और खींच लूँ, अरे
1: चाय नहीं पीनी क्या आपको?
0: आ रहा हूँ भाई बस आ ही गया। आइडिया यार, क्यों ना चाय का कप हाथ में लेकर सेल्फी खींची जाए। हाँ चलो चलता हूँ,
1: हे भगवान, अब आओगे भी?
0: अरे आ रहा हूँ भाई आ गया ही है आ गया, लाओ पिलाओ मुझे गर्मा गर्म चाय।
1: काहे की गरम, ठंडी बर्फ हो रही है इतनी देर से।

0: ठीक है तो कोई बात नहीं डार्लिंग, आज मूड चेंज करते हैं, इतनी गर्मी है, आइस टी पियेंगे।
1: अब ये क्या कर रहे हो?
0: एक मिनट डार्लिंग, एक फोटो खींच लूँ बस, ये एक सेल्फी, एक सेल्फी खींच लूँ चाय के साथ।
1: सेल्फी सेल्फी क्या सेल्फी?
0: अरे तुम चुप रहो यार, तुम पुराने जमाने की क्या जानो सेल्फी क्या होती है। ये बस ये खिंच गई, देखो ये
1: खिंच
0: खिंच
1: गई खिंच गई, क्या खिंच गई?
0: सेल्फी।
1: क्या है ये सेल्फी? भगवान जाने,
0: और
1: बताओ।
0: सेल्फी का मतलब मेरी खुद की फोटो, ये देखो डार्लिंग मेरी फोटो। ये देखो डार्लिंग मेरी फोटो। हाँ
1: सिर्फ चाय और आपका हाथ नजर आ रहा है इस फोटो में।
0: बच्चा, वो जरा एंगल के चक्कर में मतलब वो एंगल गलत हो
1: अच्छा
0: गया।
1: सुनो, अब ज्यादा नहीं, अब चाय पी लो
0: अरे
1: पहले।
0: मतलब एक फोटो तो और खींच लूँ पहले, एक मिनट बस, ये फोटो खिंच जाएगी, ये दोबारा बस खिंच रही है ये।
1: संभाल के संभाल के, चाय मेरे ऊपर गिरेगी
0: अरे
1: भाई।
0: नहीं गिरेगी यार, तुम थोड़ा इस साइड खड़ी हो, ये खींच रहा हूँ मैं, ये खींची ये। वो सॉरी डार्लिंग,
1: उन्हें दी ना
0: वो
1: चाय मेरे ऊपर, पूरी साड़ी खराब कर दी आप।
0: गलती हो गई डार्लिंग, वो जरा सा एंगल के चक्कर में वो चाय थोड़ी सी छलक गई
1: भाड़ में गई तुम्हारी सेल्फी। दिन भर
0: सेल्फी।
1: मोबाइल लेकर के अजीब अजीब समूह बनाते रहते हो, कभी बंदर की तरह कभी भेड़िए की तरह। हाँ,
0: ये तो सेल्फी लेने की स्टाइल है डार्लिंग।
1: जिससे दूसरे के कपड़े खराब किए जाएं।
0: नहीं डार्लिंग वो तो सॉरी, वो गलती हो गई, वो एंगल लेने के चक्कर में क्या चाय थोड़ी सी छलक गई।
1: देखो जी, अब मैं आपको कह देती हूँ, बता रहे हो क्या ये सेल्फी है क्या भला?
0: अरे भाई ये सेल्फी वो तकनीक है जिसपे आदमी अपने आप को खुद ही तस्वीर में उतार सकता है, अपने आप को सामने देखकर ठीक कर सकता है वो किस एंगल से ज्यादा अच्छा लग रहा है ये देख सकता है।
1: लेकिन ये सब करने की सेल्फी की जरूरत कहां से आई? ये सब
0: हाँ?
1: तो वैसे भी हो सकता है।
0: वैसे भी हो सकता है, वैसे कैसे हो सकता है।
1: आप इधर आओ, आप इधर आओ मेरे
0: हाँ हाँ
1: सामने।
0: एक मिनट एक मिनट, हाँ बताओ आ गया।
1: देखो, आईने के सामने खड़े हो जाओ।
0: आईने के सामने। हाँ हो गया अब।
1: अब देखो, आईने के सामने खड़े होकर
0: हाँ?
1: आप वही नजर आओगे जैसे आप बंदर करता है ना, जैसे
0: हाँ?
1: तालाब के अंदर अपनी तस्वीर देखता है, फिर छपाक से पानी मारता है।
0: है? अरे तो मैं कोई बंदर हो गया यार, और ये आईना क्या फोटो खींच सकता है। सेल्फी की बात अलग है डार्लिंग, सेल्फी में अलग फोटो आती है, आदमी की स्पेशल फोटो।
1: ये फोटो तो कैमरे से भी खींची जा सकती है। आप भी ना, तुम्हारी वो फोटो याद है जब आपने प्रपोजल के वक्त भेजी थी मेरे घर वालों को, कितने हैंडसम लग रहे थे आप उसमें।
0: हाँ वही तो गलती कर दी मैंने फोटो भेज के तुमको।
1: क्या
0: नहीं
1: क्या कह
0: नहीं
1: रहे
0: कुछ नहीं, मैं कह रहा था हाँ उस फोटो में तो मैं हैंडसम लग ही रहा था, लेकिन इन सेल्फीज में भी तो मैं कितना हैंडसम लगता
1: हो?
0: हूँ।
1: छोड़ो जी, काहे के हैंडसम, किसी में बंदर जैसा चेहरा बना लेते हो, किसी में आंखें निकाल करके दिखाते हो।
0: अरे मैंने कहा ना ये सब सेल्फी खींचने की स्टाइल है डार्लिंग।
1: छोड़ो, मैं जा रही हूं।
0: अरे सुनो तो
2: हेलो,
0: अरे कौन भाई, अरे
2: हेलो,
0: कौन है।
2: अरे भाई, श्री श्री श्री 1008 सेल्फी महाराज, घर में है क्या?
0: अरे हाँ हूँ भाई, आजा आजा आजा।
2: और प्यारे, क्या हाल है?
0: बस मस्त यार, बढ़िया फर्स्ट क्लास,
2: और काम कैसा चल रहा है?
0: एकदम बढ़िया, अब तक 70 सेल्फीज दे चुका हूँ।
2: 70?
0: हाँ
2: वेरी फास्ट यार, मैं तो 40 तक ही पहुंचाऊंगा अभी।
0: अबे 40, अबे 70 में से 50 तो मैंने उस FB के पेज पर अपलोड भी कर दिए है।
2: यार लगता है इस बार ये इनाम है ना, तू ही लेके जाएगा।
0: और क्या, मैं ही लेके जाऊंगा।
1: अजी सुनते हो?
2: हाँ वो सुनते तो वो है,
1: काहे का इनाम भैया?
2: ओ भाभी देखो ना, वो क्या है कि हम दोनों ने एक सेल्फी कंपटीशन में भाग लिया है।
1: सेल्फी कंपटीशन?
2: अरे हाँ भाभी, देखो क्या है, एक कंपनी इस शहर में सेल्फी कंपटीशन करा रही है। इसमें क्या होगा कि 2 दिन में अलग अलग ड्रेस और अलग अलग लोकेशन पर खुद की 100 फोटो खींचकर उस कंपनी के फेसबुक अकाउंट पर डाली है। जिसकी सेल्फी यूनिक होगी उसे मिलेगा एक नया लेटेस्ट मोबाइल।
1: तभी अब समझ में आई मेरी सारी गणित, तभी कल से मोबाइल के चिपके हुए हैं।
0: और क्या, अरे भैया बीमारी का बहाना बनाकर बॉस से ऑफिस से छुट्टी ली है।
2: हाँ, और वैसे भी शादी के इतने साल बाद पत्नी से।
1: क्या?
2: नहीं नहीं नहीं भाभी, कुछ नहीं कुछ नहीं। अब देखो भाभी, बड़ा क्रेज है इस कंपटीशन का, लड़के लड़कियां धड़ाधड़ सेल्फी खींच रही हैं।
0: हाँ और क्या,
1: लड़कियां भी?
0: और क्या,
2: अरे लड़कियां तो ज्यादा खींचती हैं, बड़ी स्टाइल से वो मुंह तिरछा करके ऐसे पाउच बना लेती हैं, उससे सेल्फी लेती हैं।
1: ये पाउच कैसे बनता है?
2: वेरी सिंपल, अपने दोनों होठों को ऐसे कर लो ऐसे, और फिर गालों को पिचका लो, बस हो गया पाउच।
1: हे भगवान, आजकल के लोग और ये दुनिया पता नहीं कहाँ जा रही है।
0: अरे अरे अब तुम क्या सोचने लगी।
1: मैं सोच रही हूँ कि अगर सेल्फी के साथ आदमी के अंदर क्या चल रहा है उसकी इमेज भी आ जाए तो कैसा रहे जनाब?
0: अरे अरे क्या बात कर रही हो यार, उसकी इमेज कैसे आ सकती है भाई, आदमी के अंदर क्या चल रहा है उसे वो बाहर थोड़ी दिखाता है।
2: हाँ, और फिर सेल्फी सिर्फ जो है ना ऊपर की इमेज लेती है।
0: हाँ
1: भैया, फिर काहे की सेल्फी हुई? सेल्फी तो तब हो

0: वो जब अंदर की इमेज दिखाई दे, मतलब भाभी कुछ
1: अब
0: नहीं, आप बैठिए मैं चाय लेकर के आती हूँ।
1: यार वैसे ये भाभी कह तो बहुत बढ़िया रही है, मतलब इनकी बात में दम है यार। अगर मन की बात सेल्फी में आ जाए तो यार तो मजा ही आ जाए।
2: मजा तो आ जाए लेकिन बेटा हंगामा हो जाए। अबे न जाने किसकी सेल्फी किस पर भारी पड़ जाए।
1: और हमारे कर्णधार वो तो कभी सेल्फी खींचे ही नहीं।
2: वो क्यों यार?
1: अरे भैया उनके अंदर की बात बाहर आ जाएगी ना। हाँ, और अगर खींचे तो उसको अपलोड कभी ना करें।
2: ये बात तो बिल्कुल सही है यार। अबे पता है तेरे को, फिर कंपटीशन होंगे अलग अलग तरीके के।
1: कैसा?
2: ऐसे कंपटीशन होंगे, लोग कहेंगे है कोई माइका लाल, अगर है तो सामने आए, जिसके अंदर और बाहर एक सा हो, और वो अपनी सेल्फी खींचे और दिखाए और अपलोड करे हमारे पेज पर। सेल्फी खींचे और अपलोड करे हमारे पेज पर www.jaisatanvaisamann.com पर।
1: हाँ, और तो और यार कंपनियां नए तरीके के मोबाइल भी बनाए।
2: अच्छा वो कैसे?
1: अरे भाई जिसमें मन जैसा हो वैसा ही सेल्फी में साफ दिखे उसका विज्ञापन आए। क्या आपके मन में मैल है? क्या आप अपने मन की बात दूसरों से छुपाना चाहते हैं? तो लीजिए फला कंपनी का ढीम का सेल्फी मोबाइल और खींचिए अपने अंदर की और बाहर की स्वच्छ और साफ सेल्फी। अबे यार फिर तो एक काम हो,
2: क्या?
1: कंपनियां नए नए तरीके के मोबाइल बनाए
2: अच्छा
1: जिसमें मन तो कैसा भी हो
2: हाँ
1: लेकिन सेल्फी में साफ ही दिखे।
2: और हाँ
1: उसका विज्ञापन पता है कैसा आएगा?
2: कैसा है?
1: क्या आपके मन में मैल है
2: हाँ
1: लेकिन क्या आप अपने मन की बात दूसरों से छुपाना चाहते हैं? तो लीजिए फला कंपनी का ढीम का मोबाइल और खींचिए अपने अंदर और बाहर से स्वच्छ और साफ सेल्फी।
2: क्या बात है यार, मजा आ जाए। अबे फिर तो इन सोशल नेटवर्किंग साइट पर सोशल दिखने वाले लोगों की असली सोशल लाइफ सामने आ जाए।
1: और क्या, देखो तो आजकल लोगों ने रियल लाइफ में 4-5 दोस्त बना रखे हैं और फेसबुक में देखो तो 1000 से ज्यादा दोस्त।
2: और क्या, अबे रियल लाइफ के दोस्तों से तो महीनों में एक आध बार मिलते हैं, लेकिन ये वो दोस्त जिन्हें जानते नहीं है, जिन्हें आज तक देखा नहीं है, उनसे रोज बात करते हैं।
1: लेकिन यार मैं तो तेरा रियल लाइफ का दोस्त हूं ना,
2: हाँ, तो रोज।
1: मैं तो रोज मिलता हूँ तेरे से।
2: अरे अपनी बात तो अलग है यार।
1: वैसे मैं एक बात बताऊं यार,
2: क्या
1: इलेक्ट्रॉनिक युग में यार दोस्त भी इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं।
2: वो कैसे?
1: ईमेल, ई टिकट, ई मैरिज, ई फ्रेंड। देखना थोड़ी दिन में पता है डेथ भी इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगी। ई डेथ।
2: अबे वो तो होगी जब होगी, लेकिन अभी मेरी सेल्फी 70 पर अटक गई है। अगर हम इसी तरह बकवास करते रहे ना, ये 100 कैसे होगी?
1: हाँ यार, हाँ यार, सेल्फी तो मेरे को भी लेनी है, मैं तो 40 में अटका हूँ। अच्छा एक बात बता,
2: क्या
1: तेरे पास कुछ कपड़े जोड़ी है क्या यार?
2: अरे बहुत सारे हैं यार।
1: अरे तो मेरे को दे यार, कमबख्त मेरे पास 40 जोड़ियां थी, सारी सेल्फी में खत्म हो गई।
2: अरे यार गुड आइडिया, थोड़े कपड़े तो मेरे ले जा, और ऐसा कर थोड़े तेरे कपड़े मुझे दे दे।
1: हाँ बिल्कुल, एक्सचेंज ऑफर।
2: यस सही बात है।
0: ये लीजिए गर्मा गर्म चाय।
1: यार पत्नी कितनी अच्छी है,
2: है?
1: मतलब तेरी पत्नी मेरी भाभी चाय कितनी बार बनाती है यार।
2: साफ साफ बोल, सेल्फी की तरह मत बोल।
1: मैं तो अपनी पत्नी से चाय बनाने को कहता हूँ तो मुंह बना लेती है। भाभी जी आपकी क्या बात है, क्या बात है, बस अब इस चाय के साथ एक सेल्फी हो जाए।
0: खबरदार भैया खबरदार, प्लीज अब कोई सेल्फी नहीं होगी।
1: क्यों?
0: एक साड़ी खराब हो चुकी है ना मेरी।
2: यार वो एक मिनट, मोबाइल बज रहा है। अबे ये मोबाइल किसका आ गया? एक मिनट, ये फोन किसका आया? अरे बॉस का फोन है। एक मिनट चुप रहना, बॉस से बहाना किया हुआ है मैंने ऑफिस से कि बीमार हूँ, छुट्टी पर हूँ। एक मिनट, हेलो सर। यस सर, हाँ ठीक हूँ सर, मैं बीमार हूँ सर।
1: देखा भाभी कितना नाटक करता है।
2: हाँ सर, दवाई ले रहा हूँ सर।
0: तो समझा समझा के हार गई।
2: हाँ सर, है सर।
0: किसी दिन पकड़ा गया ना इनका झूठ तो?
2: नहीं तो सर। अच्छा सर, नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, सॉरी सर।
1: क्या हो गया?
2: गलती हो गई सर, अब नहीं होगी सर। सर
1: अबे क्या हुआ?
2: सर सर
1: अबे
2: सुनो तो सही सर।
0: सुनिए सुनिए सुनिए, क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको?
1: अबे क्या हो गया?
2: अबे मैं बर्बाद हो गया।
0: अजी हुआ क्या बताओगे?
2: अरे बेड़ा गर्क हो गया।
1: अबे कुछ बताएगा भी या रोए जाएगा?
2: अबे जिस सेल्फी कॉम्पिटिशन में हम हिस्सा ले रहे हैं ना,
1: हाँ
2: उसमें बॉस की बीवी ने भी हिस्सा लिया है। तो कल वो अपनी सेल्फी खींच कर उस कंपनी के FB पेज पर अपलोड कर रही थी।
1: अच्छा
2: तो उसने वो मेरी सेल्फीज भी देख ली।
0: तो फिर?
2: और बॉस को दिखा दी। बॉस को समझ में आ गया कि मैंने बीमारी का झूठा बहाना बनाया है।
1: तो बॉस ने क्या किया?
2: उन्होंने मुझे नौकरी से निकाला।

0: अरे कमाल हो गया। अब मतलब ये कमाल हो गया यार कि तेरी सेल्फी ने वो कर दिखाया जो भाभी कह रही थी।
1: क्या मतलब?
0: अरे तेरे मन की बात मतलब तेरा झूठ बॉस के सामने आ गया सेल्फी के साथ।
1: अरे मैं बर्बाद हो गया रे, मेरी
0: कहते
1: नौकरी
0: हैं ना, कहते हैं ना सरस्वती पूरे दिन भर में एक बार जुबान पर जरूर पे। भाभी भाभी देखो ना कितना बढ़िया पोज है दोस्त का, क्यों ना इस पोज में एक सेल्फी हो जाए।

अभी आप सुन रहे थे झलकी सेल्फी। लेखक और निर्देशक थे H.S. व्यास। आकाशवाणी जयपुर की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम चित्रलोक।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म एक दिन से, आवाज़ मेघना मिश्रा की थी। गीत के बोल इरशाद कामिल के और संगीत राम संपत का।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
2: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोता, ये गीत आपने सुना फिल्म मेट्रो इन दिनों से। आवाज़ विशाल मिश्रा की थी, गीत के बोल नीलेश मिश्रा के और संगीत प्रीतम का।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

0: समय एक छोटे से अंतराल का शेष कार्यक्रम इस अंतराल के बाद।
1: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका, जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी और 1000+ विनर्स, 2 लीटर एमिस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। आज ही खरीदे, 25 सितंबर को लकी ड्रॉ है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
4: सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म तनु वेड्स मनु से। आवाज़ें पूरन चंद बड़ाली और प्यारे लाल बड़ाली की थी। गीत के बोल राजशेखर के और संगीत कृष्णा का।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

0: श्रोता, ये गीत आप सुन रहे हैं फिल्म रॉकस्टार से, आवाज़ है मोहित चौहान और साथियों की। गीत के बोल इरशाद कामिल के और संगीत ए आर रहमान का। थोड़ी देर में समाचार होंगे, कृपया।
1: FM 107.2 MHz ते ए आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। रात दे 8:45 होने वाले ने हुंदे कुछ बला जैसी आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तो हिंदी विच समाचार रिले करांगे।
2: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, क्षेत्रीय परिषदें विकास और जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए LPG रिफिल बुकिंग का 25 दिन का अंतराल समान रहेगा। नई दिल्ली में सत्य निकेतन इमारत ढहने की घटना में नगर निगम के 5 अधिकारी निलंबित। दिल्ली उच्च न्यायालय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीट तथा पुदुचेरी में 1 सीट पर भी उपचुनाव। और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची, भारत का पदक पक्का। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये मंजूरी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई।
3: परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। नौसेना के लिए अरुद्रा रडार की भी खरीद तथा मरीन गैस टरबाइन के डिजाइन और विकास के बाद उनकी खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। वायुसेना की युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा ग्राउंड बेस्ड मल्टीपर्पज जैमर और डिफेंस फोर्सेस सिक्योर एक्सेस कार्ड प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 98% खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी। CBRN टोही वाहन क्षेत्रों की पहचान, निगरानी और उन्हें चिन्हित करने में सक्षम होंगे। रिशु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात

0: रात यात्रा पर रहेंगे श्री मोदी। राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी कल राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया और अब कंप्लीट हुआ।
0: प्रधानमंत्री कल शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
2: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला, वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
0: इससे पहले गृहमंत्री ने आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। उन्होंने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया। श्री शाह ने कहा कि क्षेत्रीय परिषदें अब केवल विवादों के समाधान का मंच नहीं रह गई हैं, बल्कि जन कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
3: गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हुए। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज समारोह में श्री शाह ने गोवा पुलिस की सेवा और साहस की सराहना की। उन्होंने 1930 हेल्पलाइन के लिए AI आधारित वॉयस असिस्टेंट शुरू किया। श्री शाह ने 112 हेल्पलाइन पर कम हुए प्रतिक्रिया समय का उल्लेख किया और गोवा पुलिस से 2029 तक नशीले पदार्थों की समस्या खत्म करने में नेतृत्व करने का आह्वान किया। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू रसोई गैस LPG रिफिल बुकिंग के नियमों में बड़ी छूट देने का निर्देश दिया है। अब देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सभी घरेलू LPG उपभोक्ता 25 दिन के अंतराल पर सिलेंडर बुक करा सकेंगे। श्री गोपी ने कहा कि देश में LPG आपूर्ति में सुधार और बैकलॉग में आई भारी कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये पाबंदी हटाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क से भेंट की। बैठक में भारत और कोष के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान कोष ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र को मजबूत करने में भारत की भूमिका की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। नई दिल्ली में फार्मा मैक टेक और

0: लैब नेक्स्ट एक्सपो 2026 के उद्घाटन समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही।
1: मेक श्योर वी आर वेरी हाई क्वालिटी,
2: ये सुनिश्चित करें कि गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो और हमारी सेवाएं उच्च मानकों वाली हो। न केवल हर भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा मिले, बल्कि हम दुनिया को स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान करें। सभी मशीनें और उपकरण भारतीय हो, भारतीय दवाओं और फार्मेसी का इस्तेमाल हो और भारतीय डॉक्टर मरीजों की देखभाल करें।
0: निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की दो दो विधानसभा सीट और पुदुचेरी की एक सीट पर उपचुनाव की घोषणा भी की गई है। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मधुरंतकम और धरपुरम सीट, पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट तथा पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना बुधवार को जारी की जाएगी। नामांकन इस महीने की 16 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सत्य निकेतन इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में नगर निगम के 5 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरी दिल्ली में 5वीं मंजिल वाली इमारतों को तुरंत सील करने के आदेश दिए हैं। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: न्यायालय ने कहा कि जांच में ये देखा जाए कि इमारत के लिए सभी जरूरी मंजूरियां ली गई थी या नहीं, किसी भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ की गई या प्रस्तावित कार्रवाई की जानकारी दी जाए। न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास निजी पीजी और छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई। न्यायालय ने नगर निगम को सभी पीजी आवासों का निरीक्षण कर ये सुनिश्चित करने को कहा है कि उनका संचालन जरूरी मंजूरियों और भवन उपनियमों के अनुसार हो रहा है। केंद्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और नगर निगम की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को भरोसा दिलाया कि घटना से निपटने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उच्च न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को 10 दिन के भीतर जवाब और हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है।
4: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
6: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRNews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष वी नारायणन ने इसरो के निजीकरण से जुड़ी खबरों को खारिज कर दिया है। बेंगलुरु में आज उन्होंने कहा कि इसरो एक सरकारी संगठन है और इसके निजीकरण का कोई सवाल ही नहीं है।
7: इसरो इज नॉट प्राइवेट।
8: इसरो एक सरकारी संस्था है और हम सरकारी निवेश के अंतर्गत काम कर रहे हैं। इसरो और NCS के मुख्य लक्ष्यों में से एक बजट के अनुरूप अंतरिक्ष उपकरणों की लागत कम करना है। इसरो को हर साल सरकार आवश्यकता के अनुसार बजट देती है, बजट की कोई कमी नहीं है।
0: चीन में भारतीय दूतावास ने पिछले महीने हुए भीषण भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में लापता भारतीय नागरिकों के परिजनों से पहचान प्रक्रिया में सहायता के लिए DNA नमूने उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। दूतावास ने कहा कि जो परिवार DNA संबंधी जानकारी देना चाहते हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त CODIS प्रारूप में संबंधित जानकारी भारतीय दूतावास को उपलब्ध कराएं। दूतावास इस जानकारी को

चीनी अधिकारियों को भेजेगा। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में आज सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान की एजादा सिदान से होगा। कांस्य पदक के मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुई तिंग से खेलेंगी। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रसारित होने वाले पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आज का विषय है लोक अदालत, त्वरित, किफायती और सुलभ न्याय। आज रात 9:30 बजे इस फोन इन कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में हमारे

0: प्रभाग से प्रसारित होने वाले पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आज का विषय है लोक अदालत, त्वरित, किफायती और सुलभ न्याय। आज रात 9:30 बजे इस फोन इन कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञों से इस विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं। सवाल #AskAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट किए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, क्षेत्रीय परिषदें विकास और जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए LPG रिफिल बुकिंग का 25 दिन का अंतराल समान रहेगा। नई दिल्ली में सत्य निकेतन इमारत ढहने की घटना में नगर निगम के 5 अधिकारी निलंबित। दिल्ली उच्च न्यायालय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीट तथा पुदुचेरी में 1 सीट पर भी उपचुनाव। और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 107.2 MHz ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म मीनाक्षी से, आवाज़ सुखविंदर सिंह और साथियों की थी। गीत के बोल सुखविंदर सिंह के और संगीत ए आर रहमान का।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म लगान से। आवाज़ें उदित नारायण, वैशाली, आशा भोसले और साथियों की थी। गीत के बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने और संगीत एआर रहमान का।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
4: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
4: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
4: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का क्या था ना, पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है
0: जी।
1: सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता
0: जी,
1: वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, हाँ, बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: हाँ, सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म जीन से, आवाज़ कविता कृष्णमूर्ति की थी। गीत के बोल जावेद अख्तर के और संगीत AR रहमान का।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। हम

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म हाईवे से, आवाज़ एआर रहमान की थी। गीत के बोल इरशाद कामिल के और संगीत एआर रहमान का। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपके लिए।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। हाँ।

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही क्षणों में होगा कार्यक्रम आज के फनकार।

0: धरती के पास है।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
3: गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया। कहने लगे, बरखुरदार, अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
4: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

आज के फनकार कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्यारे लाल संतोषी की, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर में 7 अगस्त 1916 को हुआ। एक निर्देशक के रूप में आपने 21 फिल्में निर्देशित की, कई गीत लिखे, स्क्रीन प्ले, आइडिया, संवाद, अतिरिक्त संवाद जैसे रचनात्मक कार्यों के साथ आपने फिल्मी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। निर्देशित फिल्मों में 1963 की फिल्म दिल ही तो है के इस गीत के साथ आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।

0: नजर।
1: हम एक हैं, ये वही फिल्म है जिसके माध्यम से पीएल संतोषी ने पहले पहल अपने निर्देशकीय गुण का परिचय फिल्म इंडस्ट्री को दिया, दर्शकों को दिया। इस फिल्म में दुर्गा खोटे, कमला कोटनिस, रहमान और देवानंद ने अभिनय किया था। गुरुदत्त ने इस फिल्म में पीएल संतोषी को असिस्ट किया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा तो नहीं कर पाई थी, लेकिन पीएल संतोषी के निर्देशन में 1947 में बनी उन्हीं की लिखी रेहाना, इंदुमती, नासिर खान, दुलारी और मुमताज अली अभिनीत शहनाई ने उस वर्ष बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बनी।

0: चंदन घुमाऊं, तुझे ब्रांडी पिलाऊं, विस्की पिलाऊं और खिलाऊं खिलाऊं मुर्गी के अंडे अंडे खाना मेरे जान अंडे के अंडे।
1: प्यारे लाल श्रीवास्तव, यही पीएल संतोषी का पूरा नाम था। जबलपुर से मुंबई कह सकते हैं एक संयोग की वजह से पहुंचे थे आप। हुआ यूं कि इनके गृह नगर में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी और फिल्म यूनिट को संवाद असिस्टेंट की जरूरत थी और प्यारे लाल जी चूंकि एक बेहतरीन लेखक थे वो फिल्म यूनिट से जुड़ गए, शूट से जुड़ गए। बात आई और यूं ही नहीं गई। मैट्रिकुलेशन की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इनकी अपनी लेखनी पर विश्वास और लोगों के प्रोत्साहन की वजह से सन 1930 के दशक के मध्य में आप एक लेखक और गीतकार बनने की प्रबल इच्छा के साथ बॉम्बे शिफ्ट हो गए। आइए राज कपूर अभिनीत, पीएल संतोषी निर्देशित 1950 की सरगम के इस गीत को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। वो हमसे

जी हाँ, हम बात कर रहे थे सन 1930 के मध्य में बॉम्बे पहुंचे पीएल संतोष जी की, जिन्हें फिल्मी दुनिया ने एक निर्माता, निर्देशक, गीतकार और लेखक के रूप में इनकी कला को सराहा और इन्हें प्यार से अपनाया भी। 1937 में इन्हें जद्दनबाई की फिल्म मोती का हार के लिए कुछ एक गाने लिखने का अवसर प्राप्त हुआ था। यही इनकी फिल्मों में एक पहली पहल सफल एंट्री थी। इसी फिल्म में इन्होंने एक छोटी सी भूमिका भी अदा की थी। चर्चा जारी है, आइए सुनते हैं फिल्म नादान का ये गाना।

जद्दन बाई के पर्सनल सेक्रेटरी भी रहे हैं पीएल संतोषी। इसी साल यानी 1937 में जीवन यापन में भी चार गाने आपने लिखे। यही वो समय था जब पीएल संतोषी एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो की छलांग लगाते रहे, रंजीत स्टूडियो से बॉम्बे स्टूडियो और फिर प्रभात फिल्म्स। जब वो प्रभात फिल्म्स में थे तब 1946 में हम एक हैं फिल्म के निर्देशक का सौभाग्य इन्हें मिला। इनके द्वारा निर्देशित ये इनकी डेब्यू फिल्म थी। ये गीत है इसी फिल्म का, आवाज़ अमीर बाई कर्नाटकी की है, संगीत हुसन लाल भगतराम का है।

सन 1950 की फिल्म सरगम को दर्शकों ने बहुत प्यार दिया। फिर तो 1950 की ही अपनी छाया 1952 की शिनशिना की बुबलाबू, 1952 की छमछमा छम शिनशिना की बुबलाबू संतोषी प्रोडक्शंस के बैनर तली बनी फिल्म थी। लता मंगेशकर के स्वर में आइए सुनते हैं सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में पीएल संतोषी का लिखा हुआ ये गीत।

पीएल संतोषी द्वारा निर्देशित अन्य फिल्मों में हैं 1953 की 40 बाबा एक चोर, 1955 की सबसे बड़ा रुपया और हम पंछी एक डाल के सन 1957 की फिल्म।

57 की ही फिल्म गर्मा गर्म और सन 1959 की फिल्म पहली रात पीएल संतोषी की करियर की फिल्में थीं जिनकी बदौलत आपने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक विशेष पहचान बनाई थी। ये गाना है फिल्म दिल्ली जंक्शन का, स्वर लता मंगेशकर का है।

निर्देशन पीएल संतोषी ने किया और इस फिल्म का निर्माण किया था आर चंद्रा ने। रोमांटिक संगीतमय फिल्म के रूप में ये एक बेमिसाल फिल्म है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी।

बरसात की रात एक बेहद सफल फिल्म थी। इस फिल्म की सफलता फिर पीएल संतोषी अपने आगे आने वाले वर्षों में दोहरा नहीं पाए। प्यार की दास्तान, सबसे बड़ा रुपया, हॉलीडे इन बॉम्बे और फिर नूतन राज कपूर अभिनीत फिल्म दिल ही तो है, इनकी असफलता पर मरहम नहीं लगा पाई। सन 1968 में जगदीप और जयमाला काले को लेकर पीएल संतोषी की आखिरी निर्देशित फिल्म आई थी रूप रुपया। ये गीत है फिल्म तीन बत्ती चार रास्ता का, आइए सुनते हैं।

बाजीगर, बन की चिड़िया, रिक्शा वाला, आपकी मर्जी, पति पत्नी, ठोकर, अछूत, परदेसी जैसी फिल्मों में इनके गीत थे। ज्ञानदत्त और खेमचंद प्रकाश ने इनके गीतों को मौसीकी प्रदान की।

बॉम्बे टॉकीज में जब पीएल संतोषी थे तब इन्होंने अनजान और बसंत में गीतकार के रूप में गीत लिखे, जिनका संगीत निर्देशन पन्नालाल घोष ने किया था। यह है फिल्म बसंत का गाना पारुल घोष की आवाज में।

सीएल संतोषी और सी रामचंद्र के मिलाप से फिल्मों को ऐसे गाने मिले जो कर्णप्रिय तो थे ही, अपने समय से आगे के भी साबित हुए, जिनके साथ चल के कई गीतकारों संगीतकारों ने उस मार्ग को अपनाया और सफलताएं पाई। संतोषी के गानों में सिर्फ शब्द की जादूगरी ही नहीं थी, बल्कि मनोरंजन का पुट भी था जो गीत को रोचक बनाता था। जैसे सरगम के गीत इसका सीधा सरल उदाहरण है।

0: हैं।
1: सन 1941 की अकेला, 1942 की स्टेशन मास्टर, 1951 की सौदागर, 1951 की ही घायल, 52 की अनहोनी, 1958 की दुल्हन और 1966 की अगलमन जैसी फिल्मों में आपने कई गीत लिखे। पीएल संतोषी ने लगभग 350 गीत 100 फिल्मों के लिए लिखे। एक निर्देशक और गीतकार के अलावा आप स्क्रीन प्ले राइटर और संवाद लेखक के रूप में भी जाने पहचाने जाते हैं। 1941 की झूला, स्टेशन मास्टर और निराला, 1950 की, 1958 की पोस्ट बॉक्स नंबर 999 और 1970 की मन की आंखें जैसी फिल्मों में रचनात्मक योगदान आपका रहा है।

तमिल फिल्मों और तेलुगु फिल्मों के लिए भी आपका फिल्मी योगदान रहा है। सन 1950 और 1960 के दशक में पीएल संतोषी ने फिल्म को सजाया, संवारा और मनमोहक बनाया। पीएल संतोषी के बेटे प्रसिद्ध फिल्मकार राजकुमार संतोषी ने इस बात को माना था कि अपने आखिरी दिनों में इनके पिता पीएल संतोषी ने तेलुगु डब फिल्मों के लिए घोस्ट राइटिंग भी की थी। 7 सितंबर 1978 को बॉम्बे में आपका देहावसान हुआ। शहनाई, बरसात की रात, दिल ही तो है जैसी फिल्मों को बनाने वाले और कई गीतों की रचना करने वाले पीएल संतोषी की बातें, गीतों और फिल्मों की यादों के साथ आज के फनकार का ये संगीतमय सफर हमने तय किया।

0: आलेख और स्वर जी शाम का, प्रस्तुतकर्ता थे रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: आरती से आप सुनेंगे छाया गीत बस कुछ ही लम्हों बाद।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ, मेरा नाम है सलमा। छाया गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दिल मेरा मिस्र का बाजार भी हो सकता है, कोई धड़कन का खरीदार भी हो सकता है, कोई हो सकता है कातिल भी सफे यारा में, कोई हमदर्द दिलदार भी हो सकता है। अब तलक अश्क गिरा करते थे तन्हाई में, ये तमाशा सरे बाजार भी हो सकता है। मुझ पे ताना ना कसो, मुझको ना पागल समझो, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी प्यार हो सकता है। उसकी चौखट पे जाना, जरा थाम के दिल अपना, वहाँ इकरार भी इनकार भी हो सकता है। आज

दिल का खोना बहुत ज़रूरी है, इश्क होना बहुत ज़रूरी है, इतना आसान नहीं है उनको पा लेना। पहले दिल का खोना बहुत ज़रूरी है, जिसके सीने में दर्द ठहरा हो उसका रोना बहुत ज़रूरी है। उनसे होती हैं ख्वाब में मुलाकातें, मेरा सोना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ यादों से घर नहीं बनता, ज़िंदगी में तेरा होना बहुत ज़रूरी है।

सुबह लिखूं या शाम लिखूं, हर खुशी को तेरे नाम लिखूं, तेरा जिक्र लिखूं, फिर तेरी फिक्र और हर दुआ में तेरा नाम लिखूं, ख्वाब लिखूं या ताबीर लिखूं, तेरे इश्क को अपनी तकदीर लिखूं, लिख कर खुद को हीर तेरी, तुझको अपना राजा लिखूं, फिर सोचा तुझे याद करना छोड़ दूं, सोचा तेरा इंतजार करना छोड़ दूं, दिल को समझाया बहुत, भूल जा उसे, दिल ने मेरे मुझसे कहा क्या चाहती हो, मैं धड़कना छोड़।

इतनी मिलती है मेरे गजलों से सूरत तेरी, लोग तुझको मेरा महबूब समझते होंगे। छाया गीत कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। तुझे देखने को ये दिल तरसता है, एक तेरे ही इंतजार में ये तड़पता है। कैसे समझाऊं इस दिले नादा को जो मेरा होकर भी तेरे लिए धड़कता है, कि मेरी सुबह का पहला ख्याल हो तुम, मेरे हर सवाल का जवाब हो तुम, चांद हो तुम मेरी हर रात का, मेरी जिंदगी का हंसी ख्वाब हो तुम, मुझको कुछ इस तरह याद हो तुम जैसे मोहब्बत की कोई किताब हो तुम। बर्बाद हैं हम तेरी मोहब्बत में और हमारे अंदर आबाद हो तुम।

यूं ही ना मिला करो हमें मंजिल की राह में, हम रास्ते भूल जाते हैं तुम्हारी आंखों को देखकर। तुम मेरी दुआओं का वो हिस्सा हो जिसे मांगते वक्त लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी मुस्कुराहट मेरा सुकून, तुम्हें खोना खुद को खोना, तुम्हारा होना मेरी जिंदगी, तुम्हारी खामोशी मेरी सजा, तुम्हारी आवाज मेरी जरूरत, तुम्हारी मोहब्बत मेरी राहत, तुम्हारी खुशी मेरी जिंदगी। तुम्हें चाहने में हमने हद की भी हद कर दी, वरना यूं ही कोई दिलो दिमाग पर हुकूमत नहीं करता। मुझे

आँखों को समंदर कहूँ तो कम है, तेरी बातों को सुकून कहूँ तो कम है, तेरी मुस्कुराहट को गुलाब कहूँ तो कम है, तुझे क्या कहूँ दुनिया जहाँ कहूँ तो भी कम है, कि रूह की प्यास बुझा दी है तेरी कुर्बत ने, तू कोई झील है, झरना है, घटा है, क्या है, नाम होठों पे तेरा आए तो राहत सी मिले, तू तसल्ली है, दिलासा है, दुआ है, क्या है, शिद्दत और भी शदीद होती जा रही है, आपसे मोहब्बत और भी मजीद होती जा रही है, दिल तो था ही आपका दीवाना जाने जा, अब तो रूह भी आपकी दीवानी होती जा रही है।

0: मोहब्बत एक खुशबू है, हमेशा साथ चलती है। कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता। साथियों, अब वक्त आ गया है छाया गीत कार्यक्रम से रुखसत हो जाने का। तो आज की मुलाकात बस इतनी। अब दीजिए सलमा को इजाजत। शुक्रिया, नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: FM 107.2 MHz से ए आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। पेश ने मुख प्रदेशक खबरां। नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दे चेयरमैन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ने साफ हवा लई जिमनी पद्धर ते समर्पित यतना सही योजनाबंदी ते प्रभावशाली काम दी लोड़ ते जोर दिता। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना दे विस्थार दा ऐलान किया। भारतीय पुलाड़ खोज संगठन इसरो दा निजीकरण करन जा इस दी भूमिका घटाउण दीआं कोशिशां बारे अटकलां नूं खारज कर दिता। हरियाणा सरकार ने राज विच 10वीं तो 12वीं जमात दे 5 लाख विद्यार्थियों नूं टैबलेट अते डाटा सिम कार्ड प्रदान करन दा फैसला किया। हरियाणा दी सेहत मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि हरियाणा नूं जल्द ही आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस दे हब वजों विकसित किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने हिसार विच एकीकृत हवाबाजी हब के विकास नूं तेज़ करन लई 132 किलोवाट डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइना दे भूमिगत करन दी मंजूरी दे दित्ती। भाजपा युवा मोर्चा दे नवनियुक्त सूबा प्रधान अक्षित दहिया ने अज पंचकुला विच अहुदा संभाल लिया। हरियाणा सरकार ने हरियाणा कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी सेवा सुरक्षा एक्ट 2024 अते नियम 2025 दे तहत योग कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों दी रजिस्ट्रेशन दी आखिरी मिति 30 सितंबर तक अते तस्दीक दी आखिरी मिति 15 अक्तूबर तक वधा दित्ती है। चंडीगढ़ विच सरोवर पथ ते सैक्टर 50 अते सैक्टर 51 वाले पासे रीकारपेंटिंग दा काम 14 सितंबर तक जारी रहेगा। इस दौरान सड़क दा एक पासा बंद रहेगा। इह सन मुख प्रदेशक खबरां ते हुण तों कुछ देर बाद तुसी सुणोगे पंजाबी गीतां दा प्रोग्राम सुरसांझ। बने रहो आकाशवाणी दे नाल।
2: अरे भाई, क्या तुम्हें पता है कि हमारे भट्टे पर जो नया मजदूर आया है उसके हाथ पैरों पर बहुत से दाग हैं। उसे इन पर चोट लगने से भी दर्द नहीं होता।
3: अरे ये तो कुष्ठ रोग का लक्षण है, तुम उसे अभी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाओ।
4: यदि आपके आसपास किसी भी व्यक्ति में कुष्ठ रोग का कोई भी लक्षण नजर आए तो उसे तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं। यदि संदिग्ध व्यक्ति में कुष्ठ रोग पाया गया तो सरकार द्वारा सूचित करने वाले व्यक्ति को 250 रुपए दिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
1: FM 107.2 MHz से विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र है ते हुण तुसी सुनोगे प्रोग्राम सुरसांझ, जिस विच असी तुहानू सुनावांगे कुछ कमाल दे पंजाबी गीत। पंजाबी गीतां दे इस प्रोग्राम विच पहला गीत सुनो रोशन प्रिंस अते गुरलेज अख्तर दीआं आवाज़ां दे विच।

0: मैनू मेरी ना परवाह यारा, मैनू तेरी खुशी प्यारी है। हुण रख लवी तू सांभ इहनू, तेरे तो जिंदगी वारी है। तेनू उदास कदे नहीं देखना मैं, मेथों जो होया मैं कर जाना। तेरा ना सोचा जिस दिन मैं, उस दिन तो पहला मर जाना, उस दिन तो पहला मर जाना।
1: ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਰਸਾਂਝ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
2: आज फिर लेट हो गए।
3: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
2: क्यों बैठे थे बाहर?
3: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
2: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूं। बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते।
3: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं, हमारे साथ ही जरूरत है। इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
4: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
5: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
1: दोस्तों सुरसांझ दे विच असी अगला गीत सरवण करांगे अमरिंदर गिल दी आवाज दे विच।

0: Attention, national recognition for your hard work, for those making outstanding contributions to the animal husbandry and dairy sector and embracing innovative practices. The Department of Animal Husbandry and Dairy, Government of India, invites nominations for the prestigious National Gopal Ratna Awards 2026. The awards recognize excellence in three categories: Best Dairy Farmer, Best Dairy Cooperative Society, Best Artificial Insemination Technician. And there is more. Special provisions have been made for the Northeastern region and Himalayan states. Nomination period 10th August to 10th September 2026. So what are you waiting for? Apply today at www.awards.gov.in or visit your nearest CSC center to submit your nomination. National Gopal Ratna Awards 2026. Issued in public interest by the Department of Animal Husbandry and Dairy, Government of India.
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 डी या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।
3: प्रोग्राम सुरसांझ दे विच आखिर दे विच

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई। परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 98% खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पूर्वी और पश्चिम समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी कल राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया और अब कंप्लीट हुआ।
0: प्रधानमंत्री कल शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
2: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला, वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
0: इससे पहले गृह मंत्री ने आज गोवा के पणजी में पश्चिम क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू रसोई गैस एलपीजी रिफिल बुकिंग के नियमों में बड़ी ढील देने का निर्देश दिया है। अब देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ता 25 दिनों के अंतराल पर सिलेंडर बुक करा सकेंगे। श्री गोपी ने कहा कि देश में एलपीजी आपूर्ति में सुधार और बैकलॉग में आई भारी कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये पाबंदी हटाई है। निर्वाचन आयोग ने असम की नागांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा की है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीटों और पुदुचेरी की 1 सीट पर उपचुनाव की घोषणा की गई है। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मदुरंतकम और धर्मपुर सीट, पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटें तथा पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सत्य निकेतन इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में नगर निगम के 5 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरी दिल्ली में 5वीं मंजिल वाली इमारतों को तुरंत सील करने के आदेश दिए हैं।

0: दक्षिण लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 12 लोगों की मौत हो गई है। कफर रोमाने गांव में एक रिहायशी इमारत पर हुए हमले में 11 लोग मारे गए, जिनमें 2 बच्चे और 4 महिलाएं शामिल हैं। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। कांस्य पदक के मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुई तिंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 MHz ते ए आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। रात दे 11:05 होए ने। हुण साडे केंद्र तों अज दे प्रोग्रामां दा प्रसारण समाप्त हुंदा है। कल सवेरे 5:55 ते तुहाडी सेवा विच फेर हाजिर होवांगे। तद तक लई सानूं इजाजत दिओ। जय हिंद।